0: तो दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया तो उन पर उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं और वो अपने बदनों पर बहिश्त के पत्ते चिपकाने लगे और आदम ने अपने परवरदिगार के हुक्म के खिलाफ किया तो वो अपने मतलूब से बेराह हो गए। फिर उनके परवरदिगार ने उनको नवाजा तो उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाई और सीधी राह बताई।
1: بعضكم لبعض عدو

बस जो कुछ ये बकवास करते हैं उस पर सब्र करो और सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपनी परवरदिगार की तस्बीह तहमीद किया करो और रात की साआत अव्वलीन में भी उसकी तस्बीह किया करो और दिन की अतराफ यानी दोपहर के करीब जोहर के वक्त भी ताकि तुम खुश हो जाओ।

0: उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: रब्बुल नश

0: आसमान।
1: फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
0: यू

हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल, अपने प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अमान दे दे, हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे। तू रहमान है, तू रहीम है, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। ऐ हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाएं, उन पर गिरफ्त न कर मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस बार को उठाने की ताकत हम में नहीं है, वो हम पर न रख, हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर। तू हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। ए करीम, हमें माफ फरमा, तू रहमान है, तू रहीम है, हमारी दुआएं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।

0: थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और मेरा मीडिया यहाँ पे मौजूद है, इनको सलाम है कि इतना टाइम दिया, सारे मीडिया की सलाम। ओवरसीज पाकिस्तानी, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा आपसे, ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए एक सरमाया है, आपकी वजह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। हमेशा पाकिस्तान की मदद कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक सो मच।
1: Thank you so much for being here. Congratulations once again.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: A-level with zero tuition fee. 100% future. Bagat International College, Twin Cities top A-level institute. Built on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: 101 FM. सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात.
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए.
4: 101 FM.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात. सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें. बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम.
5: दिस इज FM 101.
6: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
5: This is FM 101.
7: Yeah. Now this one's dedicated to that one love in your life. Bohemia.

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: FM 101.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: This is FM 101.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: And now you are tuned into
3: FM 101.
4: FM 101.

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और मुलाकात में कौमी अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान और फ्रांस ने दो तरफा तआवुन मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। नीदरलैंड में हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान का मुकाबला आज रात इंग्लैंड से होगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈ
1: Okay.

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: This is FM 101.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

91 FM。

0: सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले खबरों का खुलासा। सदर सवाल किया है मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज भारत का यौम आजादी यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। नेदरलैंड्स में मुख्य वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मुकाबला आज रात इंग्लैंड से होगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

Saving all.

Assalamualaikum and Assalamualaikum FM 101 101 Hits FM ka Lahore Station aur FM 101 ke Lahore Station se main hoon aapki host, aapki dost, aapki RJ aur aapki presenter Nimra Aruj. Well, जी क्या हाल चाल है आप लोगों के. उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, जिंदगी को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होंगे. और अगर आप मेरा पूछते हैं तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह. एक दफा फिर से आप लोगों के साथ आज हो गई है जी अगस्त की 15 तारीख और सन है जी 2026. टाइम हो चुका है 11:07. मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 1 बजे तक इस प्रोग्राम में, जिसको हम कहते हैं लेडीज लाउंज. अभी कल ही मेरी आप लोगों से मुलाकात हुई थी. कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह जश्न आज़ादी सेलिब्रेट किया है, आज़ादी का जश्न मनाया है आप लोगों के साथ. ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा दिन कल हमने स्पेंड किया, बड़ा मज़ा आया. आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी कल की ट्रांसमिशन को इंजॉय किया होगा. इसीलिए मैंने सोचा कि अभी तो जश्न आज़ादी गुजरा है, प्रोग्राम का आगाज़ जो है ना एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ करना चाहिए. तो इंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, इसके बाद वापस आऊंगी, फिर आप लोगों के साथ मज़ीद बातें करेंगे, शेयर करेंगे किस किस तरीके से आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ है मेरे पास आप लोगों के लिए. आज है दिन जनाब हफ्ते का, सैटरडे है, वीकेंड है, क्या प्लान्स हैं आप लोगों के, क्या सोच रखा है आपने, कौन कौन से प्लान्स अमल करके कामयाब होंगे और कौन से नहीं होंगे, ये सारी बातें आप लोगों के साथ करेंगे हम. फिलहाल इंजॉय कीजिएगा इस ट्रैक को, इसके बाद वापस आते हैं. स्टिक अराउंड टू एफएम 101, मुझे कहते हैं निमरा अरूज. चले तो रास्ते इनके यू पीछे.

right. मुझे कहते हैं निमरा अरूज, और जिन्होंने अभी अभी एफएम 101 ट्यून किया है उनको हम कहेंगे वेलकम, वेलकम टू माय शो एंड वेलकम टू एफएम 101. मेरा और आपका साथ रहता है एवरी सैटरडे 11 टू 1. लेडीज लाउंज लेकर आती हूँ आप लोगों

0: जनाब, बहुत सारी बातें करेंगे आप लोगों से, बहुत कुछ है मेरे पास। और अभी क्या है, अभी ये है कि हम ऐसा करते हैं कि एक छोटू सा नन्ना मुन्ना सा कमर्शियल ब्रेक है हमारे पास, उस तरफ बढ़ते हैं और कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आप लोगों के साथ मज़ीद बातें करेंगे। आप लोगों को बताऊँगी किस तरह से आप लोग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या कुछ है मेरे पास। सो स्टिक अराउंड टू FM 101।
1: दिस इज FM 101।
2: शुक्रिया, आपने
3: FM 101 ट्यून
2: किया।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
0: जी हाँ जनाब, कीप स्माइलिंग एंड ड्राइव केयरफुली। ओके ओके, ये बड़ा क्यूट सा प्रोमो है। अब मुझे बच्चे का नाम नहीं पता किसने ये रिकॉर्डिंग की है, लेकिन बहुत अच्छी की और बहुत पुराना प्रोमो है हमारा। एनीवेज जी, आप लोग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन के लिए क्या करना है जी, एक तो आप हमें SMS कर सकते हैं 4471 पर, और इसके अलावा जी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, हमारा ऑफिशियल पेज, वहां पर हमारी पोस्ट जो है ना वो अपडेट हो चुकी है। FM 101 लाहौर का ऑफिशियल पेज है जी फेसबुक पर, वहां पर जाइएगा और कमेंट कीजिएगा, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिएगा। इसके अलावा जी आप लोग किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं SMS के थ्रू। SMS किस तरह से करना है जी, आपने जाना है अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे, वहां जाकर आप लिखेंगे 101L, एक अदद देंगे स्पेस, अपना नाम लिखेंगे, अपना मैसेज 101L नहीं लिखना, आपने लिखना है 101, एक अदद देनी है स्पेस, अपना नाम लिखना है, मैसेज लिखना है और उसको सेंड कर देना है 4471 पर, ठीक है। अच्छा जी, आज है सैटरडे और बहुत सारी चीज़ें जो है ना लाइनअप की होती हैं लोगों ने, और चूंकि अब स्कूल भी खुलने वाले हैं, जश्न आज़ादी भी हमने सेलिब्रेट कर लिया है, उसके बाद जो है ना अब अगली तैयारी, अगला मरहला जो है ना वो मेरा ख्याल है कि बच्चों के स्कूल का ही होगा, हर एक के माइंड में बच्चों का स्कूल होगा और प्लानिंग चल रही होगी। अच्छा जी, बच्चों की चीज़ें पूरी करनी है, बैग्स देखने हैं, जूते, ख़ास तौर पर जो है ना बच्चों के जूते बड़ी जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है मेरी जैसी और बहुत सारी माएँ होंगी जिनकी प्लानिंग ये होती है कि जी बच्चों को जो जूते लेके देने हैं ना वो छुट्टियों के बाद ही लेके देने हैं। छुट्टियों से पहले जब सेशन स्टार्ट होता है, न्यू सेशन स्टार्ट होता है, तो बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हमें ना हर चीज़ नई मिले, तो उस टाइम पर बच्चे बड़ी फरमाइशें कर रहे होते हैं कि नहीं जी हमने तो जो है ना साथ ही ले लेना है, जूता भी हमें नया चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे समझ भी जाते हैं कि अच्छा ठीक है, ओके, अभी हम इसी पे गुजारा कर लेते हैं जो ऑलरेडी पहना हुआ होता है, लेकिन छुट्टियों के बाद जो है ना हमने हर हाल में नया लेना है, और वो लेने की ज़रूरत भी पड़ जाती है क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली ग्रोइंग एज होती है, तो बच्चों का पाँव जो है ना वो बहुत जल्दी बढ़ता है, तो अक्ल का तकाजा भी यही है कि छुट्टियों के बाद ही जूता लिया जाए, क्योंकि बंद जूते वैसे पड़े रहते हैं तो वो ख़राब भी हो जाते हैं, और इसके अलावा जो है वो वैसे ही बच्चों के पाँव बढ़ जाते हैं तो वो इरीटेट करते हैं, काटने लग जाते हैं, और मतलब जो भी काटने का मतलब है वो रैश डाल देता है, इचिंग डाल देता है, ख़राब कर देता है पाँव को, तो छुट्टियों के बाद लेना ही अक्लमंदी होती है। तो जी मैंने भी और बहुत सारी माओं की तरह जो है ना आज की मेरी प्लानिंग यही है कि जी बच्चों के यूनिफॉर्म पूरे करने हैं, बच्चों के जूते पूरे करने हैं, उसके बाद जो अगला मरहला है ना वो क्या है, खवातीन के काम कभी भी खत्म ही होते, कहने को छुट्टी वाला दिन है लेकिन छुट्टी वाले दिन मेरा ख्याल है डबल काम होता है। बिना नी दिल रजदा मोहल्ले, तो मेरी तरह और बहुत सारी खवातीन जो है ना वो आज प्लान करी होंगी, एक तो खाने पकाने का, भाई आज कुछ अच्छा बनना चाहिए, फ्रीजर साफ करना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर चुकी हूँ, मैंने मेरा ख्याल है परसों किया है, सारा फ्रीजर साफ किया है, अब जो है ना अगला मेरा माइंड जो है ना वो चल रहा है कि अच्छा जी बच्चों के लिए स्कूल चूंकि खुलने वाले हैं तो लंच का क्या बंदोबस्त किया जाए, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम फ्रीज कर सकते हैं, बना के रख सकते हैं। आप लोग भी जरूर मेरे साथ अपने आइडियाज शेयर कीजिएगा, आपके घर में किस तरह से जो है वो प्लानिंग की जाती है या नहीं की जाती है, ऑन द स्पॉट डिसाइड किया जाता है कि आज बच्चे को ये लंच देना है या रात में डिसाइड किया जाता है कि जी बच्चा ये लेके जाएगा। बहुत सारी खवातीन अपनी आसानी के लिए ना पहले से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लेती हैं कि एकदम से जो है ना वो बर्डन ना पड़े, आपने जस्ट फ्रीज़र से निकाला और यूज़ कर लिया। और अब तो बड़ी सारी रेसिपीज़ आ गई हैं फ्रोज़न पराठे के हवाले से भी। पहले रेडीमेड शुरू हुआ था, रेडीमेड में बस मुझे ये लगता है कि उसमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आपने कोई पराठा रोल बनाना है, कोई भी इस तरह की चीज़ बनानी है, तो वो मिठास जो है ना उसका सारा टेस्ट ख़राब कर देती है। तो अब जो है ना बहुत सारी मैंने रेसिपीज़ देखी हैं जिसमें आप होममेड पराठा भी फ्रीज़ कर सकते हैं, जिस तरह बाजार से मिलते हैं ना वैसे ही आप घर में बना के फ्रीज कर सकते हैं। इस तरह की और बहुत सारी बातें हैं। लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं आउटिंग के लिए जाना है, मौसम के क्या हालात हैं, वो सबको मालूम है, सारी बातें करते हैं आप लोगों के साथ। मेरा साथ दीजिएगा अगर आप लोग इस टाइम रोड पर हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो ड्राइव केयरफुली बिकॉज आप और आपकी जान उन तमाम लोगों के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं और उन तमाम लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं बहुत प्यारी है, बहुत कीमती है। इंजॉय कीजिएगा मेरे साथ खूबसूरत सा ट्रैक इन द वॉइस ऑफ नबील शौकत अली, मुझे कहते हैं नमरारूज, स्टे विद मी।

Alrighty, welcome back. Once again, आपको खुश आमदीद कहते हैं, मुझे कहते हैं निमरा अरूज. 11 बज के हो चुके हैं 26 मिनट. अच्छा, कल ना मैं वैसे ही रील्स कुछ स्क्रॉल कर रही थी तो एकदम मेरी नजरों के सामने से ना एक बहुत पुराना सॉन्ग गुजरा और वो गाना था जी तेरी चूड़ियों की आवाज़ सुन के मेरा लंदन जाना छूट गया. कुछ इसी तरह का गाना था, लकी अली का ट्रैक था. और आपको पता है कि आजकल जो पुराने सॉन्ग्स हैं उनको कितना मज़े का जो है वो एआई के थ्रू जो है वो रीमेक किया गया है. बड़ा मज़ा आता है उसको सुन के और एकदम से वो पुरानी वाली वाइब्स आ जाती हैं एक नए अंदाज से. एमी थोड़ा सा मैं उसको जो है ना, नॉर्मली मैं इस तरह के सॉन्ग्स जो हैं पसंद नहीं करती, लेकिन चूंकि वो एक पुराना ट्रैक है और वो एकदम से आपको पुरानी वाइब्स में लेके जाता है तो मैं वो ज़रूर शामिल करूंगी थोड़ा सा. ठीक है, अभी मेरे पास जी 4471 पर कौन मौजूद है, लेट्स सी. एहसन हैं जी लाहौर से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम निमरा मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं. वेलकम टू द शो. आपका शो बहुत ज़बरदस्त है और आपकी वॉइस बहुत स्वीट है और आपकी शख्सियत तो सुपर से भी ऊपर है. अच्छा, आपको कैसे पता वैसे? हाउ डू यू नो? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा. शख्सियत का कैसे पता लगता है वैसे? ये सवाल हो सकता है ना, टॉपिक हो सकता है कि किसी की शख्सियत का अंदाज़ा किस तरह से होता है. चलें नेक्स्ट किसी शो में ना इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे. आज तो मैंने कुछ और सोच के रखा हुआ था, बट ये आपने मुझे बताना ज़रूर है कि शख्सियत किसी की जो है ना वो किस तरह से उसको मतलब फील किया जाता है या उसका अंदाज़ा किया जाता है. यार ये इसकी शख्सियत जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है. कौन सी चीज़ें जो है ना वो मैटर करती हैं, आउटलुक हो गई, ड्रेसिंग हो गई, बातचीत हो गई, क्या होता है आपके लिए? क्योंकि हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर बंदे के लिए अपनी अपनी हर बंदे की अपनी सोच है, अपना एक क्राइटेरिया बनाया होता है बंदे ने कि अच्छा जी हमने अगर किसी से मिलना है तो ये चीज़ें हमने उसकी जो है ना वो नोटिस करनी है, या ऑटोमेटिकली होता है कि वो नोटिस हो जाता है. आपके लिए जो है ना वो शख्सियत किस तरह से आप उसको नोटिस करते हैं, किस तरह से उसको जो है ना आइडियलाइज करते हैं या जज करते हैं, वट एवर. खैर जनाब एहसन, बहुत शुक्रिया आपका और आपने बड़ी प्यारी सी दुआ की है. अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे और अल्लाह पाक आपको ढेरों ढेर कामयाबियां दे. आमीन सुम्मा आमीन. थैंक यू सो मच जी. आप भी खुश रहें, आबाद रहें. आमीन. जजाकल्ला जी. और ये जी हमारे पास फेसबुक पर कौन कौन शामिल हो रहा है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलती हूँ. बहुत सारे कल भी मेरा ख्याल है कि रह गए थे कमेंट्स आप लोगों के, ये तो मैं चाह रही हूँ कि आज मैं ना साथ साथ शामिल करूँ, फिर मैं आपको अपना टॉपिक बताती हूँ कि जी हमारे पास टॉपिक में क्या है. नज़ीर खोसो साहब हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका. फरहाद मेमन साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम. हाल चाल पूछा है जी, बहुत शुक्रिया आपका. ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिल्कुल ठीक गुजर रही है. और इन्होंने कुछ मिठाइयाँ सेंड की हैं जी, ग्रीन और वाइट कलर की जलेबियाँ भी ग्रीन और वाइट कलर की हैं. वाह जी वाह. और इसके अलावा जश्न आज़ादी मुबारक बोल रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका. चाय है, मिठाई है, ढेर सारी, बहुत शुक्रिया. रजा चौधरी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका भी. और फरहाद मेमन साहब कह रहे हैं जी, हम जैसे हैं वैसे ही काफ़ी हैं, खामोश रहते हैं मगर हर बात समझते हैं. गुड वन. वैसे आपस की बात है, ऐसे लोगों को घुन्ना मीसना भी कहा जाता है.

माजरत के साथ। कहते हैं ना बंदा खामोश बैठा हुआ है, इसकी नजरें सारी जगह होती हैं, इसके कान सब जगह होते हैं, इसको सुनाई सब कुछ दे रहा होता है, इसको पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन ये बंदा बोलता नहीं है, बड़ा ही घुन्ना है। खैर जी, होते हैं जी ऐसे लोग भी होते हैं। हमदुल्ला मला खेल है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा वो जो ट्रैक मैंने कहा था ना, नहीं दोबारा से प्ले करेंगे, सबर करें यार। हम उस टाइम पे ये इस तरह के ट्रैक्स कितने शौक से सुनते थे, उस टाइम ट्रेंड ही इस तरह की ट्रैक्स का था। नहीं, जर्मन जाना छूट गया, मैं लंदन समझ रही थी, माजरत माजरत लकी अली भाई, पता नहीं अब ये कहाँ होंगे इस टाइम। मेरा ख्याल है ये भी वकार अली की ही फैमिली से हैं, आई एम नॉट श्योर, अगर किसी को मालूम है तो ज़रूर बताइएगा। वैसे तो अब तो इतना नया ट्रेंड है जी, जल्दी से गूगल करें सब कुछ आ जाता है आपके सामने, लेकिन इस टाइम मेरा गूगल करने का कोई मूड नहीं है।

Diva जबरदस्त जी हाँ बिल्कुल, ये सज्जाद अली के भाई ही हैं, क्योंकि नीचे जो है ना इनकी और बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं वो आ रहे हैं और उसमें इनकी शक्ल हूबहू वकार अली से मिलती भी है। तो ठीक है जी, एक पुराना टाइम था, पुराना ऑरा था, बहुत ज़बरदस्त था, याद रखना चाहिए हमें। मैं चूंकि वीडियो देख रही हूँ ना साथ साथ, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अरबाज़ खान हैं वीडियो में, टोटली चेंज हो गए हैं।

0: और जी 11 बज के हो चुके हैं 35 मिनट, घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि जल्दी से बढ़ जाएं कमर्शियल ब्रेक की जानिब। सो हियर वी गो,
1: दिस इज एफएम
2: 101.1। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
2: सोना स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
4: Keep smiling and drive carefully, okay?
5: Okay.
0: पुराने सॉन्ग्स की बात हो रही है तो क्यों ना दो चार जो है ना वो वाकई पुराने सॉन्ग्स चलाए जाएं। शिराज उपल का है जी। अच्छा, टॉपिक भी आप लोगों को साथ साथ बताती चलती हूँ। आप लोगों के ख्याल में तो बहुत दफा कहते हैं ना कि बहुत दफ़ा बड़े जो हैं वो भी गलतियां कर देते हैं, कुछ फैसले ऐसे कर देते हैं जो लगता ही नहीं है कि किसी बड़े इंसान ने किए हैं, कोई समझदार किसी बंदे ने किए हैं। और बाज़ औक़ात बच्चे भी जो हैं वो बहुत समझदारी की बातें कर जाते हैं। तो इसलिए आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि मैच्योरिटी का ताल्लुक जो है वो एज से है या एक्सपीरियंस से है? मैच्योरिटी जो है वो एज से आती है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आप मैच्योर होते जाते हैं, या फिर एक्सपीरियंस काफी होता है, एक्सपीरियंस बोलता है? आपकी क्या ओपिनियन है, शेयर कीजिएगा मेरे साथ। हाल गाना इंजॉय कीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। मुझे कहते हैं इमरा रूज। 04211110101 हमारा टेलीफोन नंबर है, इस पर हम आप लोगों की कॉल्स लेंगे 12 बजे के बाद। फिलहाल आप हमारे साथ फेसबुक के थ्रू शामिल हो सकते हैं और 4471 के थ्रू शामिल हो सकते हैं। 4471 पर आप लोग हमें SMS करेंगे, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाएंगे, वहां जाकर आप लिखेंगे 101, एक अदद देंगे स्पेस, अपना नाम लिखेंगे, अपना मैसेज लिखेंगे और उसको सेंड कर देंगे 4471 पर। इसके अलावा फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है FM 101 लाहौर का, वहां पर जाएंगे और प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। स्टिक अराउंड।

अरे जी, ये तो थे शरासू पल हमारे साथ। अच्छा, बात हो रही थी बच्चों के हवाले से, बच्चों के स्कूल्स जो हैं वो खुलने वाले हैं। इसी हवाले से जो है ना, एक दो चीज़ें मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बच्चे चूँकि आपको पता है कि वो उनको पसंद होता है कि जी हमें लंच में पिज़्ज़ा दिया जाए, कोई शवारमा बना के दे दिया जाए, कोई इस तरह की चीज़ें, तो ख़वातीन जो हैं वो मिनी पिज़्ज़ाज और इस तरह की चीज़ें बनाती हैं। एक ना अभी कुछ दिन पहले एक रेसिपी मेरी नज़र से गुजरी थी, उसमें उन्होंने विदाउट डो पिज़्ज़ा बनाया था, और वो जिस तरह हम बेकरी स्टाइल लेते हैं ना, किसी भी बेकरी से मिलता है वो, मतलब सारा कुछ उसके अंदर होता है, ऊपर टॉपिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही होती, उसे नॉर्मली बेकरी पिज़्ज़ा ही बोलते हैं। तो वो वाली चीज़ मुझे लग रही थी, लेकिन वो देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी मैं भी ट्राई करूँगी, फिर मैं आप लोगों को उसके रिजल्ट्स भी ज़रूर बताऊँगी। लेकिन वो बेसिकली था क्या कि उन्होंने अंडे बीट करके तो उसी के अंदर मैदा डाल दिया था, उसी के अंदर चिकन, लेकिन उन्होंने चिकन कच्चा रखा था। अब चिकन कच्चा मेरे माइंड में ये आ रहा था कि 20 मिनट्स उन्होंने कहा था एक तरफ से दिए हैं, फिर फ्राइंग पैन में उसको पलटना था। मतलब पहला जो स्टार्ट था ना, वो इस तरह से था कि उसमें अंडे बीट करने के बाद उन्होंने उसके अंदर ही नमक, थोड़ी सी मिर्च वगैरह डाल के, और मैदा, इसके अलावा चीज़, मतलब कुछ अंदर चीज़ डाली थी, श्रेडेड चीज़ डाली थी, और उसके अलावा जो है टॉपिंग्स जो हम ऊपर से डालते हैं उसमें जो है ना, उन्होंने चिकन ऐसे ही क्यूब्स करके, छोटा छोटा क्यूब करके उन्होंने उसके अंदर ही डाल दिया था, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया था, और उसको एज़ इट इज़ जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं वैसे ही उन्होंने फ्राइंग पैन में हल्का सा ग्रीस करके तो उसके अंदर डाल के, नॉन स्टिक, मेक श्योर कीजिएगा नॉन स्टिक लें, उसके अंदर ग्रीस करने के बाद उसको ढक दिया था। और फिर उनके बकौल उनके कि 20 मिनट्स एक तरफ से पकेगा, और फिर उसके बाद जब एक तरफ से पक जाएगा तो आपने उसको प्लेट ऊपर रख के, बड़ी प्लेट रख के उसको जो है पलटना है, एंड देन उसको दूसरी साइड से 20 मिनट के लिए पकाना है, फिर लास्ट में ऊपर से जब पक जाएगा ना, फिर ऊपर से उन्होंने दोबारा चीज़ डाल के, थोड़े से ऑरिगैनोज़ वगैरह डाल के, ऑलिव्स डाल के उसको हल्का सा हीट दे लिया था। तो उससे ये हुआ था कि वो बिल्कुल पिज़्ज़े वाली लुक आई थी, और टेस्ट भी उन्होंने बकौल उनके, ठीक है। अब मैंने उसको ट्राई नहीं किया, बट मुझे वो इस तरह से अच्छा लगा कि हम जो इतनी मेहनत करते हैं डो बनाते हैं, बहुत दफ़ा जो है वो डो राइज हो जाती है, बाज़ुकात नहीं भी होती। इसकी भी मैंने टिप मेरा ख्याल एक दफ़ा पहले भी शेयर की है कि डो, मैं एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि हम जब भी किसी भी चीज़ के लिए हम जब डो बना रहे होते हैं, ये मेरी एक्सपीरियंस की हुई है, ये मैं अपने जो रेगुलर काम करती हूँ, कोई भी मैंने इस तरह की चीज़ बनानी है, चिकन ब्रेड बनानी है, चिकन बंस बनाने हैं, पिज़्ज़ा बनाना है, तो उसके लिए डो मैं इसी रेसिपी से बनाती हूँ कि मैं सबसे पहले जो है ना वो इंस्टेंट ईस्ट लेकर ना, उसको पहले अलग थोड़े से पानी में, मतलब ग्लास में आप दो घूंट पानी डाल लें, और उसके बाद उसको हल्का सा नीम गर्म करें, उसमें थोड़ी सी चीनी डालें, थोड़ा सा नमक डालें, और ईस्ट को ना उसके अंदर मिक्स करके कोई 10 मिनट के लिए उसको छोड़ दें ऊपर से ढक के, तो वो राइस अगर होनी होगी तो उसी में अच्छी खासी राइस हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप अपना जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स करें और आटे की तरह उसको गूंद लें, ठीक है। बट बाज़ुकात ये होता है कि हम बीच में डाल देते हैं, उसका मतलब बेनिफिट यही था ना कि अगर डो आपकी, जो आपकी ईस्ट है वो ठीक होगी तो वहीं पर राइज हो जाएगी और आपके जो है मटेरियल अच्छा बन जाएगा, लेकिन अगर वो राइज नहीं होगी तो आप उस इतना सही ज़ाया होगा, बजाय इसके कि आप पूरे आटे में जो है वो गूंद लें और उसके बाद जो आपकी डो राइज ना हो और फिर उसके बाद आपका सारा जो मटेरियल है वो ज़ाया हो। तो उसमें जो मुझे बेनिफिट लगा था वो यही लगा था कि आपकी सारी चीज़ ज़ाया नहीं होती, क्योंकि मेरे साथ भी पहले यही होता था कि मैं जब सारा कुछ मिक्स करके गूंद लेती थी ना, तो अगर कभी डो राइस नहीं हुई है तो ऑब्वियसली वो सारा कुछ ख़राब हो जाता है। फिर तो फिर मैंने ना ये वाली चीज़ रेसिपी ट्रिक जो है वो अडॉप्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मेरी डो बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी, कभी मेरी डो में ख़राबी नहीं आई। तो इसी तरह ना मैंने अभी ये वाली रेसिपी भी ट्राई करनी है, क्योंकि अब मैं वेट कर रही थी कि बच्चों के स्कूल खुलेंगे तब मैं जो है ना उनके लिए पहले से एक हफ़्ता पहले, क्योंकि अभी ये लास्ट वीक चल रहा है, 24 से मैंने सुना था कि स्कूल खुल रहे हैं, तो उससे पहले पहले जो है ना मेरी कोशिश है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बना के रख लूँ जो कि बच्चों के काम आए। उसमें ना एक ये चीज़ मैंने, क्योंकि मैंने पहले भी पिज़्ज़ा बना के तो उसको स्लाइस कट करके फ्रीज़र में जिप लॉक बैग में रख दिया था, और जब बच्चों को देना होता था तो मैं उसको निकालती थी, पहले से निकाल के प्लेट में रख दिया, और जाते जाते जो है ना बच्चों के ओवन में उसको गर्म करके देन आप उनको बच्चों के लंच बॉक्स में रखें, आपका लंच जो है बच्चों का तैयार हो जाता था, और बच्चे बड़े शौक से ये चीज़ें खा लेते हैं। तो एक ये मैंने ये ट्राई करके देखना है, और अगर किसी ने ट्राई किया है तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि इस तरह जो है हम जब कुछ बनाते हैं तो वो कामयाब होता है कि नहीं होता है।
लेकिन इसमें जो मैंने वेरिएशन करनी है ना, अपनी जो वेरिएशन डालनी है वो ये डालनी है कि मैंने उसमें चिकन कुक डालना है, मैंने कच्चा चिकन नहीं डालना, मैंने चिकन को मैरिनेट करके और उसके बाद इसमें ऐड करना है। ऐड मैं इसी तरह से करूँगी, लिक्विड में ही सारा कुछ मतलब डालूंगी। मेरे माइंड में ये था कि अगर हम वैसे डालेंगे तो शायद कहीं कोई चांस रह जाता है कचाहट का, तो अगर हम इस तरह कर लेंगे तो फिर कोई किसी किस्म की जो है ना वो हमें डाउट नहीं होगा कि यार हमारी चीज़ जो है ना वो चिकन हमारा जो है वो कच्चा रह जाएगा। एक ये चीज़, और एक जो फ्रोज़न पराठे होते हैं जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं, वो मैंने घर में ज़रूर ट्राई करने हैं। बहुत दफ़ा सोचा है लेकिन सिर्फ मैं ना खड़े होने के काम से भाग जाती हूँ कि काफ़ी देर खड़े होना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर आप ये चीज़ें पहले से लाइनअप कर लेते हैं, पहले से रेडी करके रख लेते हैं ना, तो बहुत आसानी हो जाती है सुबह सुबह। क्योंकि नॉर्मली फिर ये होता है कि सुबह जहां आपको घंटा पहले उठना है, आपको 2 घंटे पहले 1.5 घंटा पहले उठना पड़ता है, और फिर बच्चों के लिए हर चीज़ अगर आपने फ्रेश बनानी है उस टाइम पे, बहुत दफ़ा उस टाइम पे इतना टाइम ही नहीं मिलता, मतलब बच्चों का नाश्ता भी आपने बना के रखना है, फिर उसके बाद अगर आप लंच कुछ बड़ा बना रहे हैं, जैसे अगर आप कोई शवारमा कोई पराठा रोल बना रहे हैं, तो अगर आप प्रॉपरली उस टाइम पर पराठा बेलेंगे बनाएंगे या कोई शवारमा बना रहे हैं, तो हर चीज़ अगर आप उस टाइम पर कटिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, पका रहे हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो अक्सर बच्चे लेट भी हो जाते हैं या फिर वो अच्छा नहीं बनता। तो बेहतर होता है कि ये चीज़ें, लाइक अगर आपने शॉर्मा बनाना है तो आप पहले से जो है ना चिकन को मैरिनेट करके, ये मैं नॉर्मल भी करती हूँ, अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मैं सैलड वगैरह खाती हूँ तो उसमें भी मैं बीच में डालती हूँ, तो मैं चिकन के चंक्स करके उसको मैरिनेट करके, वो आपकी मर्ज़ी है, आपने बारबेक्यू फ्लेवर आपको पसंद है, टिक्का फ्लेवर पसंद है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको मैरिनेट करें, उसको पकाएं, और उसके बाद ना उसको छोटे छोटे बॉक्सेस जो वो जार्स मिलते हैं प्लास्टिक के डब्बे जिन्हें नॉर्मली हर घर में होते हैं और जिस पे जो है ना वो हर एक की नज़र होती है, किसी के घर भेजना है ना उसके बाद वापस ज़रूर मांगना है या मेरा डब्बा वापस करो और बहुत दफ़ा किसी एक के घर जो है ना ढेर सारे डब्बे इकट्ठे हुए होते हैं और वो बंदा बोल भी नहीं रहा होता कि भाई हमारे पास हैं आपके डब्बे, लेकिन अफसोस बड़ा होता है, अम्मियों को बड़ा याद होता है कि यार हमारा फलाना डब्बा जो है ना वो किसी के घर गया हुआ है। डब्बों की बड़ी अहमियत है भाई, जो लोग किचन में काम करते हैं, जो खवातीन किचन में काम करती है, उनको बड़ा अच्छी तरह से पता है कि ये डब्बे जो है ना वो कितनी अहमियत रखते हैं। बाहर वाले छोटे छोटे से कंटेनर मिल जाते हैं, वो छोटे छोटे से कंटेनर मिले क्योंकि वो आइडिया, देखें आप डेली रूटीन में जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए है, तो अगर आप ये चीज़ें पहले से करके रख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आपको जो है सिर्फ एक शॉर्मा ब्रेड जो है ना वो चाहें तो बाज़ार से रेडीमेड ले लें, अदरवाइज़ जो ये मैंने आपको डो वाला तरीका बताया है, इससे आप घर में भी शॉर्मा ब्रेड बना सकते हैं, मैंने घर में बनाई है, बहुत अच्छी होती है, वो भी आप फ्रीज तो मैंने नहीं करके देखी लेकिन फ्रिज में ज़रूर मैंने रखी है, वो आराम से जो है ना 2 वीक्स निकाल जाती है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है हफ्ते में एक दफ़ा ही देना होता है ना, कौन सा रोज़ देना होता है, तो वो इतनी बना के रख लें कि वो आपके 2 दफ़ा इस्तेमाल हो जाए, नहीं तो आप बाज़ार से रेडीमेड मंगवा लें, और बाकी चीज़ें जो हैं सैलड बना के रख ली है उसमें सिरका डाल के रखें, फ्रिज में रखें, वो जल्दी ख़राब नहीं होता, सिरके के अंदर जो सैलड होती है जैसे बाज़ार में मिलती है। इसके अलावा एक सॉस बनती है, ताहिनी सॉस बोलते हैं उसको, वो वाइट तिल के साथ बनती है, बहुत मज़े की होती है। ये चीज़ें ना पहले से करके रख लें, अब तो बाज़ार में रेडीमेड सॉसेज आ गई हैं, अगर आप बाज़ार की कोई रेडीमेड यूज़ करते हैं, अपना कम्फर्ट लेवल है, ठीक है। मैं ये वाली जो डो है ना ये मैं घर में बनाती हूँ, हाय इतनी सारी रेसिपीज़ दे दी हैं मैंने आपको, तो बस यही बात है कि अगर आप पहले से चीज़ें मैनेज कर लें तो यकीन माने ज़िंदगी ना बहुत आसान हो जाती है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे मैनेज कर लेते हैं कि पता भी नहीं लगता, और ये डबल गाना हो गया है सो जनाब इसी तरह यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पहले से प्रेस करके रखें, रेडी करके रखें, और एक आधा जो सूट है ना वो साइड पर ज़रूर होना चाहिए। यूनिफॉर्म की बात कर रही हूँ मैं, बच्चों का जो रेगुलर आप पहनाते हैं ना वो तो रख ही रखें, मतलब वो डेली बेसिस पे जो बच्चों ने पहनना है, लेकिन एक ड्रेस एक यूनिफॉर्म बच्चों का साइड पर होना चाहिए, और वो इसलिए होना चाहिए कि वो जो स्कूल में डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट कोई
जैसे अभी आज़ादी 14 अगस्त गुजरा है तो यकीनन स्कूल्स में छुट्टियों के बाद जो है ना छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं, तो आप वो उनके लिए रखें कि उसमें बच्चा जो है ना मज़ीद नीट, वैसे भी डेली बेसिस पे बच्चे का ख्याल रखें कि नीट जाए। बहुत दफ़ा मतलब मेरे अपने बच्चे आके ना बताते हैं, बच्चे ना ये चीज़ें बहुत नोट करते हैं, लाइक मैं अपने बच्चे बेटे के पीछे पड़ी हूँ कि जी कटिंग कराओ कटिंग कराओ, उसको होता है कि मम्मा स्कूल में फलाने बच्चे ने मतलब मेरी क्लास के बच्चों ने कटिंग नहीं कराई हुई थी, उनको तो टीचर कुछ भी नहीं कह रही थी, या यूँ कह लें कि उसको तो कोई फिक्र नहीं थी, वो इस तरह की बच्चे बातें करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएं, बच्चों की कटिंग का ख्याल रखें, नेल्स का ख्याल रखें, वैसे सर साफ़ करते रहें, बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चों के जुएं पड़ जाते हैं उनको साफ़ करते रहें। तो ये रेगुलर रूटीन की चीज़ें हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, अपनी आसानी ज़रूर करें, अपने आप को रेस्ट ज़रूर दें। गाना वैसे मैं ऐसा करते हैं ये वाला चलाते हैं, इधर से चलाते हैं और उसके बाद जो है ना मैं फ़ख्र का कोई गाना चलाती हूँ। बहरहाल जी ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जिन पर हम अमल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने ऊपर से बोझ कम करें, अपने कंधों से बोझ कम करें। खवातीन जल्दी बीमार इसीलिए हो जाती हैं कि उन्होंने अपनी हिम्मत से ज़्यादा अपने ऊपर बोझ लिया होता है, मेंटली भी फिजिकली भी इमोशनली भी। तो अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दें, अपने लिए जो लोग कहते हैं जी शॉर्टकट्स हैं, ये शॉर्टकट्स बिल्कुल नहीं है। देखिए जो पहले एक दिन पहले हमने प्रिपरेशन करनी है पूरे वीक की करनी है, वो भी तो उसी खातून ने करनी है ना, वो कोई बाहर से आके कोई थोड़ी करेगा। तो एक दिन अपने आप को थका के उसके बाद पूरा वीक बड़े आराम से मैनेज हो सकती हैं चीज़ें। एक्स्ट्रा बर्डन से जो है ना बहुत जल्दी औरत बीमार हो जाती है, थक जाती है। तो बस रेस्ट करें और काम करें, टाइम से करें, जो चीज़ आज होनी है उसको आज ही करें, साथ साथ करते रहेंगे तो इतना पता नहीं लगता। जब हम चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं ना तो वो एकदम से बर्डन लगने लगता है, और फिर बर्डन ऑब्वियसली हर बंदे को जो है वो डिसाइड ही करेगा। है जनाब ये खूबसूरत सा गाना एआई बेस्ड है वैसे तो, लेकिन ओरिजिनली यासिर अख्तर की का है। इंजॉय कीजिएगा इसको, मेरा साथ दीजिएगा एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान, एफएम 101 लाहौर का ऑफिशियल पेज है, उस पेज पर जाइए, हमारी पोस्ट पर कमेंट कीजिए, प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। इसके अलावा 4471 पर एसएमएस करें, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहां जाकर एफएम 101 लिखें और उसको सेंड कर दें 4471 पर। सिर्फ 101 नहीं लिख कर सेंड करना, आगे अपना मैसेज भी लिखना है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको उसका फॉर्मेट बता रही हूँ। खैर जनाब इंजॉय कीजिएगा ट्रैक को, इसके बाद वापस आती हूँ, बल्कि हम 12 बजे के बाद वापस आएंगे, स्टिक अराउंड।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी हंगामी इमदादी इदारे को सैलाब से मुतासिरा अफराद को इमदाद की फराहमी के लिए मौसर कोशिशें जारी रखने की हिदायत की है। सदर मुमलिकत ने जनूबी कोरिया के साथ बाहमी दिलचस्पी के शोबों में तआवुन को वसअत देने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कौमी आज़म और इस्तेकामत के लिए पाक फौज के साबिक फौजियों के मौसर किरदार को सराहा। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासिर इलाकों में आवाम को हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ फ्राहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल ब्रोहेकार लाने की हिदायत की है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: only. Okay?
1: Okay.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
0: आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आपको खुश आमदीद कहते हैं. लेट्स सी हमारे साथ लकी कॉलर कौन है. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो.
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. मोहम्मद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं. शहजाद साहब कैसे हैं आप.
1: और जी आपकी दुआएं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं जी.
0: बहुत शुक्रिया.
1: तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका शोर और बहुत प्यारी आवाज. अल्लाह जी की तंदुरुस्ती रखे जी.
0: बहुत शुक्रिया जी. आमीन सुम्मा आमीन. अच्छा मुझे ये बताएं टॉपिक के हवाले से क्या बात करेंगे.
1: देखे जी ये तो कुछ देन की बात होती है. देन जो इंसान का अच्छा काम करता होता है वो चेती सीख जाता है.
0: अच्छा.
1: लेकिन थोड़ा सा उम्र का होना जरूरी है. तो जो जो आदमी की उम्र ज्यादा होती है वो सबक लेता है वो समझ जाता है जी.
0: सही.
1: इसके साथ जो कुछ बातें ऐसी होती है जो उम्र गुजरे तो फिर समझ लगती है जी.
0: ठीक.
1: हम बड़ों को बात मानते हैं ना. बड़े की जो हम कहते हैं ना बड़े की बात माननी चाहिए. वो जो बड़ा बोलता है ना वो अपने हिसाब से उसने सबक लिया होता है जिंदगी के साथ उसको मिला होता है वो इसलिए बोलता है. लेकिन आप हमने अपने जेन से सोचना है ये अच्छी बात है इसको मान लेना.
0: सही सही. ठीक हो गया. ठीक हो गया. लिख लिया मैंने आपका पॉइंट.
1: बड़ी मेहरबानी. अल्लाह खुश रखे सबको. मेरा सलाम.
0: थैंक यू सो मच जी. अपना ख्याल रखिएगा. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.
2: सारे भुला के तू.
0: और जी तो थे मोहम्मद शहजाद हमारे साथ. आप लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं. प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. 04211100101 हमारा टेलीफोन नंबर है. इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं. मैच्योरिटी का ताल्लुक एज से है या एक्सपीरियंस से है ये आज आप हमें बताएंगे. अस्सलामुअलैकुम. हेलो.
3: वालेकुम अस्सलाम.
0: कौन से बात कर रहे हैं और कहां से.
3: लाहौर डिफेंस से खान बाबा बोल रहा हूं.
0: जी खान बाबा क्या कहना चाहेंगे आप.
3: मैं ये कहना चाहता हूं कि आजकल के दौर में ना आपका एक्सपीरियंस काम आता है ना आपकी उम्र काम आती है.
0: अच्छा.
3: बेहतर तरीका ये है कि नकालों से होशियार रहो.
0: सही. ठीक हो गया.
3: आपने कुछ थोड़ा बहुत दे दिया तो उसे कहो कि मैं आपके पास आऊं तो डंडा लेकर मुझे भगाओ.
0: सही. ठीक हो गया.
3: ओके ओके.
0: ठीक हो गया. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा. हाफिज. और जी कोशिश किया करें टॉपिक पर ज़रूर बात करें. मैं नॉर्मली जो है ना टॉपिक बड़े लाइट लाइट से रखती हूँ. नहीं ज़्यादा कोई क्वेश्चन रख लिया कुछ उसमें आप लोगों के साथ गपशप हो जाती है. बट जब हम कोई टॉपिक सीरियस तरह का रखते हैं कोई इस तरह की चीज़ रखते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि आपने टॉपिक पर प्रॉपरली बात करनी है. कोशिश करें जो आपके माइंड में है जो आपके दिल में है वो आप ज़रूर बोलें ताकि किसी का भला हो सके किसी के साथ हम कोई अच्छी चीज़ शेयर कर सकें. और अदरवाइज तो देखें डेली रूटीन में ये सारा कुछ चल रहा होता है ऐसे ही है ना. लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर कौन है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो हेलो
4: हेलो
0: जी. अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रहे हैं.
4: हेलो
0: जी. जी बोलिएगा बोलिएगा. आपकी आवाज़ आ रही है. कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से.
4: भाई मैंने हेडफोन ली थी उसमें तो आवाज़ जा नहीं रही है. मैंने हेडफोन हटाई फिर आवाज़ आई.
0: चले ठीक है. मुझे बताएं अपना नाम बताइएगा सुनने वालों के लिए.
4: ये ना नाम है रहमान तेरा हम बड़े नादान है भूल हो जाते आखिर क्या करें इंसान है.
0: बिल्कुल
4: लाहौर का.
0: चले सर क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के हवाले से.
4: भाई देखो बात ये है कि मैंने 4 महीने बाद पहली कॉल की है. अभी वो शहजाद साहब आए थे टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे लेकिन मेरी समझ में नहीं आई फिर हैंड फ्री खराब थी तो आप बता टॉपिक क्या है.
0: चले आप ऐसा करें प्रोग्राम सुने और फिर कॉल कीजिएगा. ठीक है. थैंक यू सो मच. आई थिंक हमें एक ट्रैक की तरफ बढ़ना चाहिए है. एक दफ़ा फिर बता देती हूँ टॉपिक हमारा है कि मैच्योरिटी का ताल्लुक एज से है या एक्सपीरियंस से है. आपके ख्याल में क्या है मैच्योरिटी हमारे सदा के शेयर कीजिएगा 04211100101 पर. छोटी सी बात मैं जरूर करना चाहूंगी कि देखें एज बढ़ना जो है ना वो एक नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि मैच्योरिटी जो है वो मेरा ख्याल है कि एक चॉइस भी कह सकते हैं और लर्निंग का रिजल्ट भी होता है जो आप सीख रहे होते हैं जो आप कर रहे होते हैं. बाज़ुकात कोई 25 किसी की उम्र है तो जी वो बहुत सेंसिबल हो सकता है और बाज़ुकात जो है वो 50 की एज में भी कुछ डिसीजन इंसान ऐसे ले लेता है जो समझ नहीं आते फिर. तो इसलिए मैच्योरिटी का ताल्लुक मुझे लगता है कि आपकी एज से नहीं होता, कुछ बिहेवियर कुछ थिंकिंग इसमें बहुत इम्प्लीमेंट होती है। बाकी आप लोगों की राय क्या है वो भी जानते हैं साथ साथ। फिलहाल गाना इंजॉय कीजिएगा, इसके बाद वापस आती हूँ। स्टिक अराउंड है।

ऑलराइट जी, मुकाबे नु करके एतबार देनी। हाँ ये तो कह रहे थे सरमत कदीर। अच्छा जी, 4-4-7-1 पर हमारे साथ कोई मौजूद है, लेकिन यकीन माने कि मुझे चूंकि आपने नाम नहीं लिखा इसलिए मुझे आपका मैसेज समझ भी नहीं आ रहा। कुछ डिफरेंट पता नहीं कहाँ से आपने क्या मैसेज किया है, बट बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जिसने भी मैसेज किया है। MTCKL एंड पे कुछ लिखा हुआ है, आई डोंट नो क्या लिखा है, बट थैंक यू सो मच जी, आपने टाइम निकाला, आपने हमें

0: और है जी 04211100101 हमारा टेलीफोन नंबर है और ये है हमारे रेगुलर कॉलर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
1: जी वालेकुम सलाम.
0: कौन बात कर रहे हैं और कहां से?
1: बेटा जी आपको तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम. मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ, समनाबाद लाहौर से.
0: जी सलमान भट्ट कैसे हैं आप? ठीक है
1: अल्लाह का शुक्र. बेटा ये जो आपने पूछा है इसका तल्लुक मेरे हिसाब से सीखने से है. सारी जिंदगी इंसान जो सीखता है ना, फिर वो बाद में वो अपने तजर्बे जो उसने सारी जिंदगी से सीखा होता है सारी जिंदगी, वो फिर लोगों में बच्चों को अपने बच्चों को बताता है कि मुझे ये मुश्किल हुई थी तो आपने संभल के चलना है.
0: संभल के चलना है तो यानी आपके नजदीक मैच्योरिटी का ताल्लुक एक्सपीरियंस से है.
1: हाँ जी हाँ जी, जो सीखता है इंसान सारी जिंदगी सीखता ही.
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. मैं तो कहती हूँ एवरी डे इज अ न्यू डे, हर दिन आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं.
1: बिल्कुल
0: ठीक हो गया. चलें इसके अलावा कुछ? जी जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. वालेकुम अस्सलाम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह
2: हाफिज़.
0: और जी ये तो थे मोहम्मद उस्मान भट्ट हमारे साथ समनाबाद से, आई थिंक कॉल कर रहे थे. लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम.
0: कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से?
3: मैं दोबारा आया
0: हूं. जी बताएं टॉपिक सुन लिया अब आपने?
3: टॉपिक अगर उस टाइम आप बताते तो क्या हो जाता है इसमें? कोई
2: राश संगता दे रल्ले सत्य समाना दे थल्ले राश संगता दे रल्ले सत्य समाना.
0: हाय मैं क्या करूं अपने भोले लिसनर्स का.
2: जिंदवार देंदी हां.
0: देखिए मेरी बात सुने, जो हम गाने सुनते हैं, जो कुछ भी हम वैसे रेगुलर रूटीन में ये चीज़ें कर रहे होते हैं, ये हम बड़े आराम से यूट्यूब पे सुन सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे बैठने का, यहाँ पे बात करने का मकसद ये होता है कि हम कोई चीज़, कोई अच्छी चीज़ हम अपने लिसनर्स तक पहुँचा सकें. और गाने तो ऑब्वियसली चल रहे होते हैं, डेली रूटीन में चल रहे होते हैं, सुबह शाम चल रहे होते हैं, हमारा बैक टू बैक सेशन भी चल रहा होता है, आप वहाँ पर भी सुन सकते हैं. बैक टू बैक में बहुत अच्छे सॉन्ग्स चल रहे होते हैं. तो कोशिश होती है कि प्रोग्राम देखें, आप कॉल पे कॉल करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं, जैसे अभी हमारे पास उस्मान साहब आए थे, उन्होंने कितना टू द पॉइंट बात की, कितना अच्छा लगा उनसे बात करके. क्योंकि फिर नेक्स्ट हम किसी कॉलर को मौका दें जो इसी तरह को. तो कोशिश होती है कि प्रोग्राम देखें, आप कॉल पे कॉल करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं, जैसे अभी हमारे पास उस्मान साहब आए थे, उन्होंने कितना टू द पॉइंट बात की,

0: बात वही एक्सपीरियंस की बात आ जाती है ना, कि बाजू का छोटी एज में ही आपको बड़े सारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं।
1: हाँ ये भी बात है पर बात समझ में चाहे, तो आती है
0: चाहे आप किसी और के एक्सपीरियंस से सीखें, ठीक है।
1: हाँ ये भी है
0: बात, मतलब घूम घुमा के एक्सपीरियंस ही रह जाता है। ठीक हो गया। चलें जी बिस्मा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और जी बिस्मा की बात हमने बड़े ध्यान से, बड़ी विदाउट एनी इंटरप्शन मैंने सुनी, बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन आपस की बात है, समझदारी और मैच्योरिटी में फ़र्क क्या है वैसे? मेरा ख्याल है कि मैच्योरिटी है ही समझदारी ना, इंग्लिश और उर्दू का फ़र्क है मेरा ख्याल है, जितनी अकल मेरी काम करती है। और फिर घूम घुमा के बात आ जाती है एक्सपीरियंस की। अब आजकल के बच्चे जो है ना, वो दूसरों को देखकर बड़ा सीखते हैं, मतलब दूसरों के एक्सपीरियंसेस से बड़ा सीखते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, उसकी रीज़न ही यही है कि उनके पास बहुत कुछ है अपने इर्द गिर्द देखने के लिए, समझने के लिए। बास लोग तो ऐसे होते हैं जो जितने मर्जी बड़े हो जाएं उनको कुछ समझ नहीं आता, कभी भी समझ ही नहीं सकते। तो इसलिए जो है ना, जो मुझे भी लगता है वो यही है कि जी आपका एक्सपीरियंस जो है ना, वो बड़ा मैटर करता है। और अब वो एक्सपीरियंस चाहे किसी दूसरे को देखकर आए, किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से आए, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप खुद ही कोई चीज़ एक्सपीरियंस करें और उसके बाद आपको समझ में आए। ज़िंदगी के बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमें प्रैक्टिकल लेसन्स देते हैं, उसके अलावा हो सकता है कि बहुत सारी मिस्टेक्स जो हम 20 साल की उम्र में करते हैं, वो हम 35 साल की उम्र में वही सिचुएशन हम बहुत डिफरेंट अंदाज से हैंडल कर रहे हैं। इसके अलावा और आपका एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको समझा देता है, बता देता है कि भाई आपने कौन सी बात पर रिएक्ट करना है, कौन सी बात को आपने इग्नोर करना है। और एज के साथ साथ जो है ना, आपकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। बहुत दफ़ा ये होता है कि हम कुछ, हमारी एज जब हम छोटे होते हैं, यूं कह लें बिल्कुल यंग एज होती है ना, तो माइंड में ये चल रहा होता है कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये एक चीज़ ना ऑब्ज़र्व कीजिएगा, ये हर एक के साथ होता है कि एक टाइम पर हमें ये लगता है कि यार लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और या फिर मुझे सबको खुश करना है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देना, हर बंदा मुझसे खुश हो, हमारी ख्वाहिश होती है ना कि हर बंदा हमारी तारीफ़ करे, हमें तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। लेकिन फिर एक टाइम के बाद जाके, एक अरसे के बाद जाके हम कहते हैं नहीं, हमें अपना मेंटल पीस चाहिए। मेंटल पीस जो है वो सबसे पहले है, हर चीज़ से पहले है। हर आर्गुमेंट में जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, या हर किसी को खुश करना पॉसिबल नहीं है। हम हो ही नहीं सकता कि हर बंदे को हम खुश कर सकें। पहले हम ये सोचते हैं कि यार हर बंदे को मैंने सेटिस्फाई करना है, और उसके लिए हम लगातार दिन रात कोशिशें करते रहते हैं, कोई ना कोई ऐसे काम कर रहे होते हैं, मतलब हर एक को यस भी कर रहे होते हैं, हर एक के लिए जो है ना वो पीछे चले जा रहे होते हैं। बट एक टाइम के बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि यार नहीं, हर बंदे को हम खुश नहीं कर सकते, हर बंदे को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और हर बंदे को जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें लेट इट गो करना बेहतर है। ये होती है मैच्योरिटी, और ये आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। इवन आप किसी दूसरे को, आप अपने साथ रहने वालों को देख रहे होते हैं ना, तो वो वाले एक्सपीरियंसेस भी बड़े मैटर करते हैं। उसके लिए एज लिमिट जो है वो मेरा ख्याल है कि मायने नहीं रखती। और जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं, उस वक्त आपकी मैच्योरिटी का अंदाज़ा होता है कि यार हर बात को, जो मैच्योर बंदा होता है ना, वो हर बात को अपनी ईगो का इशू नहीं बनाता, और अपनी जो गलतियां होती हैं उनको तस्लीम करता है। एक्सक्यूज़ करने में जो है वो किसी किस्म की शर्मिंदगी, किसी किस्म की हेजिटेशन फील नहीं करता, और कुछ बाउंड्रीज बनानी ज़रूरी होती हैं लाइफ में, जो एक मैच्योर पर्सन ही बना सकता है। वो बाउंड्रीज के बाद ही हमें रियलाइज होता है कि यार मेंटल पीस जो है ना, वो बहुत जरूरी है। और मेंटल पीस आता कैसे है, वो इसी तरह आता है जैसे हमें जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं, हमें उस टाइम लग रहा होता है यार इनको तो कुछ पता ही नहीं है, बट जब हम खुद माँ बाप बनते हैं ना फिर जाके समझ में आते हैं नहीं माँ बाप बिल्कुल ठीक कहते थे। ये बात ऐसी ही थी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको, आपका एक टाइम होता है आपके ऊपर, एक टाइम आता है तभी पता लगती हैं। और फाइनली मेरा ख्याल है कि जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत मैटर करता है, चाहे वो किसी और का हो, चाहे वो अपने साथ हो, आपकी अपनी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स हो, या आप किसी और को देखकर। अक्लमंद कहते हैं दूसरे के अक्लमंद के बारे में यही कहा जाता है ना कि अक्लमंद वही होता है जो दूसरे के एक्सपीरियंस से सबक सीखता है। तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, और अपनी गलतियों को बार बार रिपीट ना करें। खैर जनाब, उनसे नैन बसाके देखो, ये मेरा ख्याल नजम शराज का ओरिजिनल ट्रैक था। इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं। इसके बाद हमारे पास छोटू से कमर्शियल ब्रेक है, उनकी तरफ बढ़ेंगे, फिर आप लोगों की मजीद कॉल्स एक दो शामिल करूंगी, कोशिश करूंगी। आप लोग मेरे साथ रहिएगा। 042-111-0101 हमारा टेलीफोन नंबर है, इस नंबर पर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। स्टिक अराउंड विद मी, मुझे कहते हैं निम्रा अरूज।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: दिस इज एफएम 101।
2: जी वेलकम बैक। टाइम हो चुका है 12:41 और टाइम शॉर्ट है, जल्दी से कॉल की जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम
3: वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहां से?
3: जी, मैं साजिदा बात कर रही
2: हूं। जी साजिदा, कैसी हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। साजिदा क्या कहना चाहेंगी?
3: जी मैं कहना चाहूंगी जबरदस्त शो और इतना मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा
2: टॉपिक। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो बताएं।
3: जी मैं टॉपिक के बारे में कहना चाहूंगी। हम बड़े होते हैं तो इधर उधर देखते हैं, सीखते हैं, फिर हमें पता चलता है। पहले तो हम ऐसा बंदा सियाना भी होता है, कोई नहीं भी होता, ये बड़ों के पास बैठते हैं। हमारे ना जनजत में आपको सुन रही हूँ, मैं लोगों के लिए फायदा हो रहा है।
2: ओके
3: तो एक कमरे में बंद अगर हम टीवी में देखे घड़िया ना सुने तो कैसे हमें पता चलेगा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या तजर्बा है? देखने से, सुनने से, सीखने से पता चलता है।
2: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे।
3: तो ऐसे हम जो जाना तो फिर हमें पता चल पता चलता है। और हमारे जो बड़ों के पास बैठ के जो सीखते है ना, तो बड़ों के तजर्बे अच्छे होते हैं, हम कामयाब भी होते हैं और हमारे फायदे भी होते हैं।
2: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया साजिदा।
3: और इतना जबरदस्त शो कैसे कर लेती है?
2: हाय बस ना पूछे।
3: बहुत अच्छा कर दिया,
2: मजे की
3: आवाज आती, स्वीट आवाज है,
2: बहुत
3: शुक्रिया।
2: नहीं थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह। भेज दें आप, ठीक है?
3: ठीक है। और अच्छा सा सॉन्ग ना आप ना आप अपने नाम लगा लें।
2: थैंक यू सो मच साजिदा, आपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो, अल्लाह हाफिज़। और जी ये तीन साजिदा, अच्छा मज़े की बात ये है कि मैं कुछ पिछले एक घंटे से जो है ना वो फील कर रही हूँ कि मैं डाउन हो गई हूँ। उसकी रीज़न क्या है वो मुझे भी नहीं समझ आ रही। एक रीज़न समझ आई है, आज मैंने आते हुए ना नाश्ता प्रॉपर नहीं किया था। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कप चाय का, एक कप भी नहीं आधा कप चाय का पिया था और दो रस खाए थे। तो मुझे लग रहा है कि मेरी एनर्जी जो है ना वो डाउन हो गई है। मतलब मुझे खुद फीलिंग आ रही है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ना लो होना शुरू हो गई हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो भाई नवाजिश आपकी। वेल रिहाना खान भक्कर से हमारे साथ शामिल हैं, बहुत शुक्रिया आपका। एक लास्ट कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
4: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, निमरा भी मोहम्मद तारिक।
2: जी मोहम्मद तारिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत दिनों के बाद आज आपने कॉल की है।
4: जी बस मसरूफियत की वजह से शमूलियत नहीं कर पाया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और सब खैर वाफियत।
2: बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आपकी तरफ सब ठीक ठाक है?
4: अल्हम्दुलिल्लाह। और कहना मैं ये चाह रहा था निमरा भी, जेड़े सियाने होंगे ने ना,
2: हाँ जी
4: वो जमदे सियाने होंगे ने, न्याणे भी होने ते सियाने ही होंगे।
2: बिल्कुल, देखें आपने मेरा शो का टॉपिक कंक्लूड कर दिया।
4: जेड़ा मेजोरिटी है ना वो है तजर्बा।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
4: और तजर्बा इंसान नु जिंदगी दे नाल नाल हुंदा है, तजर्बा इंसान नु गलत फैसलियां तो बचाउंदा है।
2: बिल्कुल।
4: और गलत फैसलियां तो ही तजर्बा हासिल हुंदा है।
2: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
4: जेड़े सियाने हुंदे ने ना वो जमदे सियाने हुंदे ने, क्योंकि वो कदी न्याणे भी हुंदे ने।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सही कह रहे हैं आप।
4: अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे।
2: बहुत
4: सारी दुआएं आपके लिए।
2: जज़ाकअल्लाह, थैंक यू।
4: और मेजोरिटी जो है ना, तजर्बा हासिल होता है वक्त गुजरने के साथ साथ।
2: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, तारिक साहब आपसे बात।
4: चाहिए कि दीनी तालीम हमें चाहिए कि हम इस तरह फैलाएं कि इंसान इंसानियत को समझ जाए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया। थैंक यू,
4: बहुत सारी दुआएं। अल्लाह निगहबान पे सदा जीवे, सोना पाकिस्तान।
2: आमीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, ये तो थे तारिक साहब हमारे साथ। बहुत प्यारी बात इन्होंने की। लास्ट में मैं भी यही कहूंगी कि देखें, एज जो है ना, वो आपको, मेरा ख्याल है कि साला साल, मतलब आप कह लें कि ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे एज बढ़ रही है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको एक लेसन देता है। बट मैच्योरिटी उस वक्त आती है जब आप उस लेसन से ना कुछ सीखते हैं, उसमें से कुछ निकालते हैं, उसमें से कोई ऐसी चीज़ लर्न करते हैं, या उन गलतियों को दोबारा नहीं करते, उन एक्सपीरियंसेस को आप पॉजिटिव लेके चलते हैं, फिर मैच्योरिटी आती है। बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे बच्चों की लाइफ इतनी टफ होती है कि उनको इतने एक्सपीरियंसेस हो चुके होते हैं ज़िंदगी के, कि वो बहुत छोटी सी उम्र में बहुत सियाने हो जाते हैं। खैर जनाब, ये था हमारा शो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से। अभी वैसे टाइम है, जा नहीं रही मैं कहीं भी। 12:47 हुए हैं, 5 मिनट पहले हम लॉग आउट करेंगे। उससे पहले क्या है, उससे पहले मेरे पास है गाना, और मैं वेट कर रही थी जैनब का। जैनब आई हैं और वो कहाँ गई हैं मुझे नज़र नहीं आ रही। बहरहाल जैनब, गाना आपके लिए है जी। अमारा ने रिक्वेस्ट की थी और आपके नाम आपको डेडिकेट करने को बोला था। 18 साल मुकम्मल होने पर FM 101 पर मुबारकबाद दी थी। हमारी तरफ से भी आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। किधर हैं आप, नज़र नहीं आ रही। शीशे के उस पार मुझे सिर्फ कल्बे अब्बास नज़र आए हैं और कोई नज़र नहीं आया। बहरहाल जी, थैंक यू सो मच। इंजॉय करें इस ट्रैक को, फाखर की आवाज़। इसके बाद लास्ट ट्रैक शामिल करूंगी। स्टिक अराउंड।

बैक टू बैक बढ़ते हैं आसिफ अंसर की जानिब. चंद महिया, काफ़ी देर से मैंने क्यू करके काफ़ी सारे सॉन्ग्स रखे हुए थे, लेकिन वो बीच में एक तो बातों में आपको पता है टाइम पता ही नहीं लगता किस तरह से गुजर जाता है, और अपनी बातें इतनी ज़्यादा होती हैं कि ये दो घंटे भी ना कम लगने लग जाते हैं. एनीवेज जी, इंजॉय कीजिएगा इस ट्रैक को, इसके बाद आएंगे और आप लोगों से लेंगे इजाज़त.

ऑलराइट जी, लास्ट ट्रैक है जी ज़ैन ज़ोहेब और हमज़ा मलिक। कल ये बाय चांस रील स्क्रॉल करते हुए जो है ना, ये इनका अनप्लग सॉन्ग मैंने सुना ज़ैन ज़ोहेब का, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने कहा क्यों ना इसको प्रोग्राम में शामिल किया जाए। थोड़ा स्लो है बट अच्छा है, इंजॉय कीजिएगा इसको। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे मुलाकात होगी आप लोगों से लेडीज़ लाउंज में, सेम टाइम सेम चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, कदर कीजिएगा उन लोगों से, उन लोगों की जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको चाहते हैं, आपको सराहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी हंगामी इमदादी इदारे को सैलाब से मुतासर अफराद को इमदाद की फराहमी के लिए मौसर कोशिशें जारी रखने की हिदायत की है। हुकूमत तामीराती शोबे की मजीद तरक्की और कौमी मयारात बढ़ाने के लिए जामे तरक्याती पैकेज पर गौर कर रही है। अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने कौमी खुदमुख्तारी और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के अज़्म की तजदीद पर जोर दिया है। मुल्तान में नेशनल चैंपियंस कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान ब्लूज और पाकिस्तान ग्रीन्स की टीमें मद्द मुकाबिल होंगी। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासर इलाकों में आवाम को हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरोएकार लाने की हिदायत की है। वो NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA को मुतल्लिका सूबाई महकमों और सूबाई हंगामी इमदादी इदारों के साथ मौसर राबता रखने की हिदायत की। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों और मुतासरीन की बहाली के इकदाम से आगाह किया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के तआवुन से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के सैलाब से मुतासर इलाकों में NDMA की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर। ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम मुस्कुराता हुआ अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम बरसर कैसी हो? ठीक हो?
1: मैं ठीक ठाक शमी मापी, तुसी ठीक हो?
0: जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक
1: हूं। ऐ जरा जेडी कमरे च खिड़की लगी है जरा बाहर तको बदल आए दे ने
0: बड़े बदल आए ने बड़े
1: सच्ची मुची वाह वाह वाह वाह क्या बात है जी। चलो सही ऐ मेनू किवें पता लगा तुहाडे कमरे च सामने खिड़की लगी हुई है? अंदाजे दे
0: बिल्कुल जी
1: बस दे। अच्छा वाह वाह वाह क्या बात है जी।
0: इधर हवा आंदी है बड़ा पता चलदा बदल आ रहे थे
1: जी।
0: कल ना मैं सारा दिन अच्छा अच्छी वागा बादल मेरी फैमिली चली गई मैं भी सारे।
1: अच्छा वाह
0: इतना मजा आया इतना मजा उतनी
1: जबरदस्त
0: परचम पिछाई हुई
1: आए हाय
0: नाल मतलब मियां साहब ने तो अपने दिन को खबर दी है भी किसी यकीन करो कि ऐसी गए ना जिस वक्त हर रश से इतना रश थी वो रास्ता जरा ने दे एक कैदा कैदा तो हो रहे थी रास्ता दे रहे थे देखो इतनी खुशी मैं हुई इतनी खुशी मैं क्या देखो हालांकि क्या वे नहीं क्यों से एक ना अच्छी सा मियां साहब उन्होंने नाल थी आगे आगे वो जा रहे थे तो पीछे
1: जबरदस्त जी माशाल्लाह। चलो जी बड़ी अच्छी एक मेमोरी बन गई है ते नाल उठ जाके वैसे भी जज्बा जड़ा ना वो हमेशा ही रहंदा है लेकिन उठ जाके बहुत जोश ते जज्बा सी महसूस कर दे
0: ऐसे एक साइड से साडे सिख भाई बैठे
1: हैं। हां जी जी जी ठीक हो
0: गए
1: जी जी जी जी ठीक हो गए ठीक हो गया शमी मापी ते उम्मीद बारे की कहोगे? उम्मीदा लाइया ने कदे नहीं लाइया काल ही कटी गई किसी दी काल कटी जांदी है ते किसी होर दी मिलदी है वैसे आ क्या जांदा है जी। अच्छा जी बड़ी मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया सलामत रहो खुश रहो रहो आबाद। वैसे भी वेला हो चलिया है कि असी एक स्पोंसर प्रोग्राम वाले वधना है बाद जो वापस आवेंगे तो गलबात का सिलसिला अगे टोरेंगे। थोड़े सब नाल मुखातिब तो मौजूद है थोड़ी अपनी आर जे मेरी जबान ज़ैना बरशद देसी बीट्स प्रोग्राम का नाँ है जी तीन बजे ताई थोड़ा सा साथ रहने वाला है। बहुत सारिया गल्लां बातां हो गईयां बहुत सारिया गल्लां बातां हले भी बाकी ने तुसी अगर नाल रहोगे साथ दोगे साथ निभाओगे साड़ी उम्मीद ते पूरा उतरोगे ते प्रोग्राम वधिया नहीं बल्कि बहुत वधिया हो जाएगा। इनोसेंट परी ते गुड़िया बहुत बहुत शुक्रिया जी अगेन राणा साकिब थैंक यू सो वेरी मच जी याद रखने का शुक्रिया।

0: दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी हंगामी इमदादी इदारे को सैलाब से मुतासरा अफराद को इमदाद की फराहमी के लिए मौसर कोशिशें जारी रखने की हिदायत की है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कौमी अज़्म व इस्तेक़ामत को मुस्तहकम करने में पाक फौज के साबिक फौजियों के मौसर किरदार को सराहा है। हुकूमत तामीराती शोबे की मजीद तरक्की और कौमी मायरात बढ़ाने के लिए जामे तरक्याती पैकेज पर गौर कर रही है। पंजाब की वज़ीर-ए-आला ने पंजाब को 2029 तक जनूबी एशिया में मस्नूई ज़हानत पर सबसे ज़्यादा अमल दरामद करने वाला सूबा बनाने का हदफ मुकर्रर किया है। सिंध के वज़ीर-ए-आला ने केटी बंदरगाह की तरक्की के लिए सरकारी और निजी शोबे की शराकत दारी का जामे मॉडल तैयार करने की हिदायत की है। जनूबी लबनान में इसराइली फिजाई हमले में 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आज रात नीदरलैंड में आर्मी कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से होगा।
1: दिस इज FM 101.1।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
3: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: 4 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Hassan Gilani. First, the headlines. Prime Minister has directed for utilizing all available resources to provide relief to people affected by floods. President has extended felicitation to government and people of Korea on their National Liberation Day. Kashmiris on both sides of the line of control and across the world are observing India's Independence Day as a black day today. In FIH Hockey World Cup, Pakistan will face England in Netherlands tonight. Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif has directed to utilize all available resources to provide assistance and relief to the people affected by floods. He was talking to Chairman NDMA Lieutenant General Inam Haider Malik, who called on him in Islamabad today. The Prime Minister directed the NDMA to maintain effective coordination with the relevant provincial departments and provincial disaster management authorities. Chairman NDMA briefed the Prime Minister on relief activities in flood-affected areas and measures being undertaken for the rehabilitation of flood victims. He said with cooperation of federal government, NDMA relief operation will continue in flood-affected areas of Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan and Azad Jammu and Kashmir.
1: This is FM.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.
3: सुनते रहिए FM 101.
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
5: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
5: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

ये दुनिया झूठी, लोग लूट लेते अपने ही यहाँ। सर उठा के चल मगर कदम भी देख कर उठा। दुनिया बढ़ गई है सही और गलत की जंग में। मैं ना सही ना मैं गलत, मेरा

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: I'm on the way, बस आधा घंटा दे।
2: चल बेटा जल्दी कर।

0: This is FM 101.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: सुनते रहिए FM 101. 101. 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी, सोचो

मधक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मधक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मधक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मधक सा।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं
2: बेशुमार कीमती इनामात। और जो हम पंजाब में कर रहे हैं उसको हमने उस अमली जामा जो है ना आजाद कश्मीर में भी पहनाना है, ये मैं समझता हूँ कि हमारा वलीन फ़र्ज़ होना चाहिए और अवाम के एतमाद पर हम पूरा उतरें। और अगर खुदा न खास्ता हम फतह के बावजूद, जो कि हमें दो राउंड में, पहले दो राउंड में फतह हो गई, दो फेजेस में फतह हो गई है, अगर हमने डिलीवर ना किया तो फिर मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर के लोग नाराज़ हो जाएंगे और उनकी फिर नाराज़गी की वजह जो है वो माकूल है, उस पर कोई हमें फिर जो है अपनी गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले ये है कि आज़ाद कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। शहबाज साहब यहाँ बैठे हैं तो मैं इनसे ख़ास तौर पर बड़े ज़ोर के साथ ये बात कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर को अब ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स देने चाहिए ताकि यहाँ पे सड़कें बने, यहाँ पे अस्पताल बने और यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले, टूरिज़्म प्रमोट हो और यहाँ इंडस्ट्री लगे, एग्रीकल्चर की तरफ हमें भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। और जिस तरह के पंजाब के अंदर एग्रीकल्चर लोन्स मिल रहे हैं और फिर जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनको कर्ज़े मिल रहे हैं, लोगों के घरों के लिए कर्ज़े मिल रहे हैं, अगर किसी के पास ज़मीन का टुकड़ा है तो उसको घर बनाने के लिए कर्ज दिया जा रहा है, ये स्कीमें मैं शहबाज साहब से बिल्कुल कहूँगा कि इसको भरपूर तरीके से इस रियासत में लॉन्च किया जाए। और उसके अलावा फंड्स दें आप इसमें ताकि लोग जो है वो महसूस करें कि हमें हमारा हक जो है वो दिया जा रहा है। पंजाब की जो सड़कें देखकर लोगों का दिल चाहता है कि यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी वो सड़कें बने, अस्पताल देखकर लोगों का दिल चाहता है कि यहाँ उस तरह के अस्पताल भी बने, लैपटॉप जो है वो यहाँ पे उनको भी दिए जाएँ, स्कॉलरशिप यहाँ लोगों को दिए जाएँ। और एजेके का बच्चा भी चाहता है कि उसके हाथ में जो है वो लैपटॉप हो। और यहाँ पे किसान कार्ड जो है मिलने चाहिए लोगों को, बाइज़त रोज़गार मिलना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ जी कि जो तरक्की बाकी पाकिस्तान में जो आप देख रहे हैं, कुछ साल पहले जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल थी, आज पाकिस्तान की सूरत हाल उससे यकसर मुख्तलिफ है और मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और शहबाज साहब की जो मेहनत है वो दिन रात की मेहनत रंग ला रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अपने मसाइल पे काबू पा लेंगे, इनसे बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। मैं वज़ीर आज़म था तो डॉलर 100 रुपए का था, 104 रुपए का, 3-4 साल जब मैं रहा हूँ एक रुपया भी डॉलर ने वहाँ पे नहीं बढ़ सका पाकिस्तान में, 104 पे छोड़ के आया मैं। उसके बाद फिर डॉलर आप देख लें कहाँ से कहाँ चला गया दूसरी हुकूमत के ज़माने में, और उन्होंने जो नारे लगाए थे वो सारे के सारे नारे जो हैं वो बेकार गए, किसी नारे पे कोई अमल नहीं हुआ। तनकीद में इस वक्त नहीं जाना चाहता लेकिन पाकिस्तान को जो हाल उस ज़माने में हुआ है, मैंने अपनी आंखों से कभी ऐसा हाल पाकिस्तान का नहीं देखा। तो अभी शहबाज साहब उस सारे मामले को ठीक कर रहे हैं, हालात जब इन्होंने संभाले थे जब ये वज़ीर आज़म बने थे तो बहुत ख़राब थे, आज माशाल्लाह हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने पाँव पे पाकिस्तान को खड़ा किया जाए और IMF से छुटकारा हासिल किया जाए और पाकिस्तान जो है वो इक्तसादी लिहाज से ख़ुद मुख्तार मुल्क बन जाए। तो मैं ये समझता हूँ जी कि जिस तरह से पंजाब माशाल्लाह बदल रहा है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलना चाहिए। और मैंने जैसे कहा था इलेक्शन कैंपेन में, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं इन बातों पे जो वादे वईद किए हैं उस पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करूं। और मैं जो भी यहाँ की हुकूमत होगी हमारी इंशाल्लाह उससे भरपूर तावन करूं और उसका तावन हासिल करूं और हम आज़ाद कश्मीर को भी बिल्कुल तरक्की के लिहाज से किसी भी सूबे से कम ना होने दें, चाहे कोई पंजाब में भी, पंजाब की बात कर रहा हूँ तो मैं समझ लूँ कि पंजाब के सतह पे इसको भी आना चाहिए। और शहबाज साहब से मैं ये भी कहूँगा कि AJK को, यहाँ की हुकूमत को आप ज़रूर बज़रूर हेलीकॉप्टर दें, क्योंकि सारा पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों पे हर जगह जो है वो पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। कई जगह सड़कें हैं, कई जगह नहीं हैं, तो यहाँ की हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म के लिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर होना बहुत ज़रूरी है, और ताकि वो अपने आवाम तक पहुँचें, जाके जो तरक्याती स्कीमें हैं उनको जाके देखें, उनकी खबर लें, लोगों का हाल अहवाल पूछें, लोगों में घुल मिल जाएं, देखें कि जो हमारा जो एजेंडा है उस पर पूरी तरह से अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। और जहाँ ये 8-8 घंटे में पहुँचते हैं या 6-6 घंटे में पहुँचते हैं, वहाँ हेलीकॉप्टर में आधे घंटे में पहुँचेंगे, तो कितना फ़र्क पड़ेगा। और लोग भी चुकन्ने होंगे कि जनाब हमारा वज़ीर आज़म जो किसी वक्त भी हमें आके चेक कर सकता है, अमीर मकाम साहब को और इसी तरह से राणा सनाउल्ला साहब को मैं दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने दिन देखा ना रात देखी, हर जगह पहुँचे हैं, और माशा जहाँ पहुँचना मुश्किल नज़र आता था ये वहाँ पर भी गए हैं। जो यहाँ पे जो हालात थे आज़ाद कश्मीर में, उनको सामने रखते हुए उनका मुकाबला किया और वहाँ जाने से घबराए नहीं, ये गए पहुँचे हैं वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ पर भी अपना फ़र्ज़ अदा किया है, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पे भी अपना फ़र्ज़ अदा किया है। और अमीर मकाम साहब तो ऐसे कैंपेन कर रहे थे जैसे एक अपने इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे हैं। मैं शहबाज साहब से ये भी कहूँगा कि जो CPAC के अंदर जो मंसूबे थे जिनको आज़ाद कश्मीर के अंदर लॉन्च करना था, उनको दोबारा रिवाइव करें और उनको लॉन्च करें। यहाँ पे जो हाईवे जो आती है इस्लामाबाद से मरी से इसको आगे मुजफ्फराबाद तक जाना चाहिए। मरियम को मैंने कहा था ट्रेन बनाओ जो यहाँ से रावलपिंडी इस्लामाबाद से जो मरी आए, और अगर वो बन जाती है तो मैं समझता हूँ कि शहबाज साहब को फिर मैं ये कहूँगा कि इस ट्रेन सिर्फ मरी तक नहीं आनी चाहिए, अब आगे मरी से ये मुजफ्फराबाद भी जानी चाहिए। तो हमारे तो मुजफ्फराबाद के बारे में, आज़ाद कश्मीर के बारे में ये मंसूबे हैं। मुझे पता है कि शहबाज साहब भी इसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं, आज़ाद कश्मीर की तरक्की में बहुत इनकी दिलचस्पी है, और ये मैं इनसे कहूँगा कि जितने मैंने मंसूबों का जिक्र किया है उन सब मंसूबों को यहाँ अमली जामा पहनाएं। मैं मरियम को कहूँगा कि एक दो अस्पताल ये भी पंजाब की तरफ से यहाँ पर जो ना वो बना के दें। ख्वाजा साद रफीक, उन्होंने बहुत उम्दा काम किया है और उनके काम से बहुत बहुत दिल खुश हुआ है, और उनकी मेहनत से आज माशाल्लाह ये कामयाबी हमने हासिल की है। उनके साथ साथ अनुषा रहमान भी एक एक जगह पे गई हैं, और तारिक चौधरी साहब भी, उन्होंने भी अपना भरपूर अपना तवज्जो दी है। और फिर उसके बाद हमारे और भी ये बैठे हैं चौधरी तलाल, इन्होंने भी किया है, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब ने बहुत काम किया है। तो ये सब लोग जो हैं मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिलाल अज़र कियानी, राजा जावेद, चौधरी आबद रज़ा कोटला, आबद शेर अली, नूरुल हसन तनवीर, सऊद मजीद, जाफर इकबाल, बाबर नवाज़, चौधरी शहबाज बाबर, नदीम रज़ा रबेरा, मोहसिन शाह नवाज़ रांझा, डॉक्टर इबादुल्ला और चौधरी रियाजुल हक जज, तो ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक जिन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के काम किया है। मरियम जावेद और नौरीन आरिफ, दो खवातीन बरा रास्त जीत कर आई हैं, उनको खसूसी मुबारकबाद। काबीना के इंतखाब मेरिट पर होना चाहिए, अहलियत और दयानतदारी पे होना चाहिए, ये इंतहाई ज़रूरी है। तो हमें अपने मंशूर पर 100% अमल करना है। मैं ख़ुद इंशाल्लाह ज़ाती तौर पे भी इन चीज़ों की निगरानी करूँगा, और शहबाज साहब से भी कहूँगा कि वो भी अपने तौर पे इनकी निगरानी करें। हमें एजेके को आगे बढ़ता हुआ देखना है और एक नया एजेके हम देखना चाहते हैं।
3: नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात
0: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
4: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
0: There's music and then there's magic. One Above, FM 101.

जैसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर ना पाए।

0: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
0: We will be back after this short commercial break. Stay with us.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: सुनते रहिए FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
0: There's music and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
0: There's music and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Luego, chalo.
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
0: There's music. And then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: अनाहित
1: और मैं हूँ रिजवान हाशमी।
0: पहले अहम खबरों का खुलासा।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब से मुतासर अफराद को इमदाद की फराहमी के लिए तमाम दस्तियाब वसूल वसाइल बुरुए कार लाने की हिदायत की है।
0: पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर ने सनअतों के फरोग और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए ज्यादा से ज्यादा वसाइल मुख्तस करने पर जोर दिया है।
1: वजीर इक्तसादी उमूर ने सरकारी ढांचे के मंसूबों को कम लागत और इंतहाई पायदार बनाने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया है।
0: वजीर रेलवे ने कहा है कि मेन लाइन वन मंसूबे से मुसाफिरों के लिए सहूलियात और पाकिस्तान रेलवे की मजमू कारकर्दगी बेहतर होगी।
1: वजीर आला पंजाब ने 2029 तक पंजाब को मस्नूई जहानत के हवाले से फाल सूबा बनाने का हदफ मुकर्रर किया है।
0: वजीर आला सिंध ने मुतालिका हुकाम को केटी बंदर की तरक्की के लिए सरकारी और निजी शोबे की शराकतदारी का जामे मॉडल तैयार करने की हिदायत की है।
1: वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा है कि इलाके में बारिशों और सैलाब से मुतासर बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरुए कार लाए जा रहे हैं।
0: आज कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने भारत का यौम आजादी यौम सियाह के तौर पर मनाया।
1: अमेरिका में खालिस्तान के क्याम के लिए रेफरेंडम कल होगा।
0: इंडोनेशिया के मशरकी इलाके में 7.7 शिद्दत के जलजले के बाद 47 अफराद जान बहक हो गए हैं।
1: आज लाहौर में बच्चों का दो रोजा खसूसी मेला शुरू हो गया।
0: आज हांगकांग में पाकिस्तान ने फाइनल में थाईलैंड को हराकर एशियन वुमेन नेटबॉल चैंपियनशिप जीत ली।
1: और अब खबरों की तफसील के लिए पहले इमरान नाहिद।
0: वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासर आवाम को हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरुए कार लाने की हिदायत की है।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या,

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

dance music, and then dance magic. One Above FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरा अफराद को इमदाद की फराहमी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए-कार लाने की हिदायत की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर ने सनअतों के फरोग और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए ज्यादा से ज्यादा वसाइल मुख्तस करने पर जोर दिया है। आज कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be back after this short commercial break.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रर डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: 101 FM.
3: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute, build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
4: 101 FM. Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: 101 FM.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: 101 FM.
4: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
5: Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

मतलब जहाँ टच मोबाइल्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, हर चीज़ सिमट के मोबाइल पर आ गई है तो वहीं पर ही जनाब कुछ ऐसा होता है, एक ज़रा सा जो गलत टच होता है ना, अगर वो थोड़ा सा ख़राब हो जाए, थोड़ा सा टच जो है वो सही टाइम पे काम ना करे, तो जो सीधे काम होते हैं वो भी उल्टे हो जाते हैं। और फिर चाहे आप सारा दिन माजरत करते रहें दोस्तों के साथ कि यार ये सब गलती से हो गया था, वो दिन सारा गुजर जाता है लेकिन माजरत जो है वो ख़त्म होने को आती ही नहीं है। समझ नहीं आती किस किस को मैसेज करें अब और क्या बताएं कि क्या हुआ था।

Mario Quillarian, Smarty Smarty listeners, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, FM 101 and Bonjour. आपके दिल पसंद रेडियो स्टेशन FM 106 से आपका अपना मसूद अहमद आपके साथ। वेल जनाब, आज हो गई अगस्त की 15 तारीख, सन है 2026, वक्त हुआ चाहता है 10:13। आज के प्रोग्राम जिसका नाम है शब खेजियां, मेरा आपका साथ रहेगा ठीक और बिल्कुल ठीक बदलती तारीख तक। अगर आप हमारे पास आना चाहें तो आप हमारे पास आ सकते हैं इस तरह कि आप हमें डायल करेंगे, हमें हमारा यूनिवर्सल एक्सेस नंबर, द नंबर इन माय स्टाइल इज 1711-0401-1 एंड इन योर स्टाइल द नंबर इज 1111-0101। दिस इज द मैजिकल मिस्टिकल एंड द म्यूजिकल नंबर ऑफ लाहौर, और यू कैन से द ट्रिपल एम नंबर। और इसके अलावा जी, फेसबुक पर हमारी पोस्ट पर भी आप कमेंट करके हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। FM 101 हमारा पेज है फेसबुक पर, उस पर हमारी प्यारी सी पोस्ट जो है वो मौजूद है, उस पर आप कमेंट करके भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और उसके अलावा जो एक ख़ास तरीका जो है वो ये है कि आपने अपने राइट मैसेज के ऑप्शन में जाना है, वहाँ लिखना है 101, उसके बाद एक खाली जगह देनी है, फिर अपना खूबसूरत सा नाम लिखना है और फिर एक और खाली जगह देनी है और उसको आपने सेंड कर देना है 4471 पर, और खूबसूरत सा पैगाम लिखना जो है वो उसमें मत भूलिएगा। वज्रम, आज़ादी का सीज़न चल रहा है और आज़ादी के हवाले से बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें हो रही हैं, अभी भी चल रही हैं और कह लें कि गुज़िश्ता हफ्ते में चलती रही। हर साल ऐसा होता है जब भी सीज़न आता है, अब पता नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग सीजनल से होते जा रहे हैं। जब भी किसी चीज़ का सीज़न आता है हम उसके रंग में ढल जाते हैं, और जैसे ही वो सीज़न ख़त्म होता है तो वो रंग भी साथ ही ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे शॉर्ट टेम्पर होने की निशानी है, मुश्किल मिजाजी ख़त्म हो रही है। वेल जी, प्रोग्राम का आगाज बंगाली ट्रैक के साथ, क्योंकि हम इस आज़ादी में आपको नहीं भूले अभी तक।

0: 101, the best variety. Continuous hit music. Now.
1: Today's hit music.
0: Q101.
2: वेलकम वेलकम बैक एफ एम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से आवाज़ सुन रहे हैं मसूद अहमद की. मेरा आपका साथ रहेगा ठीक और बिल्कुल ठीक 12 बजे तक. इन द शो दैट इज कॉल्ड शब खेजियां, और जो शब खेजियां का टॉपिक होगा वो हम आपको बताएंगे ठीक तकरीबन 10 मिनट के बाद. जब लाहौर के मौसम के हवाले से क्या बात कही जाए कि लाहौर का मौसम जो है वो कैसा ज़बरदस्त किस्म का हुआ हुआ है, हम ज़बरदस्ती कहेंगे और ज़बरदस्त इसलिए कहेंगे कि वाकई ज़बरदस्त है. और अगर से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा नहीं है लेकिन जो हब्स और जो कह लेने जो मरतूब मौसम है वो बिल्कुल अपने पीक पे है और शदीद किस्म का हब्स हो जाता है और बस जिस्म जो है वो चिपचिप करने वाला जो है ना वो हर वक्त चल रहा होता है. तो बल्कि आज दोपहर में बाहर निकलने का इतफ़ाक़ हुआ तो हमें बात कर रहे थे कि जो मौसम जो धूप है उसमें वो तेज़ी नहीं है, उसमें वो शार्पनेस नहीं है और जो लाइट का जो कलर है धूप का जो कलर है वो कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ है लेकिन जो हब्स है वो शदीद किस्म का है. और आसपास कहीं मालूम भी नहीं पड़ता कि कहीं बारिश हो रही है या बारिश के कोई आसार हैं, लेकिन फिर भी जो इतनी हब्स बनी हुई है अल्लाह जाने ये क्या निज़ाम है अल्लाह ताला का. वैसे तो मैंने ये सुना है कि जब शदीद हब्स होता है तो उसके बाद जो है ना बहुत ही शदीद किस्म की बेहतरीन किस्म की बारिश होती है, लेकिन अभी तक कहीं ख़बरों में कोई ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आ रही. बहरहाल जी उस मौसम में बहुत सारी वबाई अमराज जो हैं वो भी जन्म लेते हैं, तो इसलिए एहतियात करें और खाने पीने की स्पेशली एहतियात करें, ठंडे पानी से परहेज़ करें, कोशिश करें और कोशिश करें कि घर का ही खाना खाएं, बाहर के जो खाने हैं उनसे जिस हद तक हो सकता है इज्तनाब करने की कोशिश करें क्योंकि गैस्ट्रो का और जो दूसरे तीसरे प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस मौसम में बहुत बढ़ चढ़ जाते हैं. मक्खियों की जो है वो मौजें लग जाती हैं मक्खियों की मच्छरों की, तो इसलिए उनकी वजह से भी बहुत सारे जरासीम जो हैं वो इधर से उधर और उधर से इधर होते हैं. और बाहर चूँकि इतना अच्छा कोई सिस्टम नहीं होता सफाई सुथराई का हर जगह पर, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग ही इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखते सफाई सुथराई का, कुछ इदारे हैं जो बहुत ज़्यादा रखते हैं और कुछ जो हैं वो नहीं रख पाते, तो इसलिए एहतियात जो है वो ज़रूरी है. एनीवेज जी आज के खाबे शाबे का क्या प्रोग्राम है, आज का खाबा शाबा जो है वो आपने कर लिया है या नहीं किया, क्या प्रोग्राम है खाबे का और क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या जहन में चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना. मैं तो आज बड़े दिनों के बाद बड़ा ज़बरदस्त आलू कीमा खा के आया हूँ, हालांकि मेरा अभी खाने का टाइम नहीं था.
3: पाकिस्तान गई
2: लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा खा लिया.
3: ख्वाबों में जब मैं पाकिस्तान गई रे, इंडिया में
2: कहते हैं कि जी
3: जान गई रे,
2: अगर घर से खा के जाए ना इंसान तो फिर आगे जहाँ जा रहे होते हैं वहाँ से भी खाने पीने को कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर घर से बुका जाए बंदा

वेल जी 10:00 हो चुके हैं 26 मिनट। आज का एक प्रोग्राम जिसका नाम है शब खेजियाँ, मेरा आपका साथ है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, 12 बजे तक। और जनाब जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो होता है वो सिर्फ नौजवानों के लिए होता है, बल्कि शायद ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि सिर्फ नौजवान ही हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। अब नौजवान की कोई तारीफ अगर मुझसे पूछे तो वो ये कि जनाब चाहे को किसी भी उम्र का है, चाहे को किसी भी उम्र के हिस्से से ताल्लुक़ रखता है, अगर जो इंसान के अंदर मैच्योरिटी जो है वो टाइम के साथ साथ आ जाती है, बहुत सारी चीज़ों में मैच्योरिटी आ जाती है, लेकिन कहीं किसी एक हिस्से में इंसान के जो है वो जो बचपना है उसका, जो उसकी उम्र का एक लंबा हिस्सा जिसमें गुजरा होता है, उसका हिस्सा कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। तो इसलिए हमारा प्रोग्राम सुनने वाले सभी नौजवान हैं, उम्र की इसमें कोई कैद नहीं है। वेल जी टॉपिक के हवाले से बता दें कि जनाब टॉपिक हमारा आज का ये है कि कभी क्या ऐसा हुआ है कि आपको किसी काम में, किसी काम के बाद बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हुआ हो,

और उसके बाद यानी कि वो काम कर लेने के बाद आपको एहसास हुआ कि यार मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, आज सुबह जब दोस्त का मैसेज आया तो मुझे साथ ही उसको रिप्लाई कर देना चाहिए था, पता नहीं क्या मसला था, क्या मजबूरी थी कि वो मुझे उस टाइम कॉल कर रहा था, मैसेज कर रहा था, तो जो है मैं उसकी कॉल का जवाब नहीं दे सका, पता नहीं कितना ज़रूरी काम था उसको। ऐसे बहुत सारे मामला होते हैं ज़िंदगी में कि हम उस वक्त उसको बोझ महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में जब कुछ टाइम गुजर जाता है उसके बाद हमें एहसास होता है कि यार ऐसा करना नहीं चाहिए था। और फिर उस पर क्या होता है कि हमें मुख्तलिफ बहाने जो हैं वो लगाने पड़ते हैं कि फ़ोन साइलेंट पे था, मैं बिज़ी था, कोई ऐसी बात थी, कोई वैसी बात थी। तो आपके साथ कभी क्या कुछ ऐसा हुआ तो ज़रूर हमें बताइएगा। 111111 पर आपकी कॉल्स जो हैं वो हम 11 बजे के बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 44471 पर हमारी लाइंस ओपन हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए राइट मैसेज के ऑप्शन में जाकर आपने मैं अपना सॉरी 11 लिखना है, उसके बाद जनाब एक खाली जगह देनी है, फिर अपना खूबसूरत सा नाम लिखना है और उसके बाद एक और खाली जगह देकर आपने खूबसूरत सा पैगाम लिखना है और उसको सेंड कर देना है 44471 पर। और इसके अलावा जी फेसबुक पर हमारी पोस्ट है, उस पर आप कमेंट करके उस पर भी आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, उस प्रोग्राम में शामिल करेंगे हम ये वाला ट्रैक, इसके बाद एक दफ़ा फिर से आपके साथ होंगे। सो स्टे अराउंड 101।

साथ रहता है हर हफ्ते के रोज रात 10 से 12 में इस प्रोग्राम में जिसका नाम है शब खेजियां। और ऐसा जनाब पता नहीं क्यों होता है कि हम बाज़ुकात बहुत ज़्यादा सहारे ढूंढ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सहारा तलाश कर रहे होते हैं कि बस कहीं से कुछ थोड़ा सा सहारा मिल जाए, कुछ आसरा मिल जाए तो मेरा ये काम सेट हो जाएगा। और ऐसे ही कुछ सहारा जो है मैं अपनी कुर्सी से भी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज कुर्सी जो है मुझे बिल्कुल सहारा देने की पोजीशन में नहीं लग रही, उससे जितना सहारा लगाऊँ उतनी ही पीछे को जा रही है। कभी इंसान को बहुत दिल करता है किसी का सहारा लेने को, लेकिन दरअसल क्या होता है, दरअसल यही होता है कि इंसान की जो अपनी ज़ात है बेसिकली वही ही पे सबसे पहले ख़ुद अपने लिए सहारा होती है, और उसके बाद ही हम किसी और सहारे की जानिब देख सकते हैं। और ऑब्वियसली जो हमारे मालिक है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा राजिक है, उसका सहारा तो हमें है ही, तो हम ये सब कुछ हैं और ये सब कुछ कर गुज़रते हैं। उसके बाद हम इंसानों में सहारे की बात ढूंढते हैं, यार काश कुछ थोड़ा सा बस मुझे यहाँ से मेरा जैक लग जाए ना, यहाँ से मुझे बस थोड़ा सा क्लिक मिल जाए तो बस मैं जो है ना वो तबाही मचा दूंगा हर तरफ। लेकिन सबसे पहले ये होता है कि इंसान को ख़ुद से ही हर काम शुरू करना होता है, उसके बाद ही किक स्टार्टर जो है वो उसे मिलता है। आज चूँकि छुट्टी थी ऑफिस से और बस थोड़ा सा टाइम मिल गया कह लें कि मोबाइल पर कुछ वक्त गुजारने का, अव्वल तो मुझसे इतने ज़्यादा मोबाइल देखा नहीं जाता, कुछ अपनी भी अब तबीयत है और कुछ कह लें कि उम्र के साथ साथ ऐसा है कि चीज़ें उस तरह नहीं नज़र आती जैसे पहले नज़र आती थी, तो इसलिए कुछ इतना ज़्यादा स्क्रीन के साथ मेरी कोई दोस्ती नहीं है। लेकिन फिर भी जो कुछ थोड़ा बहुत देखने का मौका मिला उसमें जनाब शुएब अख्तर साहब की स्टोरी चल रही थी कि शुएब अख्तर साहब किस तरह जनाब अपने अरूज के दिनों से पहले के जिस तरह के उन्होंने दिन गुजारे थे उसके बारे में कुछ स्टोरी सुना रहे थे कि किस तरह वो किसी टांगे वाले से हेल्प लेते रहे, किस तरह किसी गन्ने वाले से वो फ्री में जूस पीते रहे, और कहा कि मैं तेरे ये सब एहसान बदल सब एहसानात तेरे चुका दूंगा, तेरे भी दिन बदल दूंगा मैं, बस मुझे एक दफ़ा सुपर स्टार बनने दे। और फिर मुख्तलिफ स्टोरी सुना रहे थे कि जनाब मैं फलानी जगह पर गया और ऐसे गया, एक लंबी वीडियो थी वो, तो उसमें जनाब उन्होंने कहा कि उस टांगे वाले के टांगे पर जब मैं बैठा ना तो मैं सेठ बन गया, सेठ बन के उसकी टांगे पे बैठ गया। तो उसने मुझे पूछा कि भाई जेब में तेरा पैसा नहीं है और तू जो है सेठ बन के यहाँ बैठ गया है, इसकी क्या वजह? तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको कहा कि जब तक इंसान ख़ुद को वो महसूस नहीं करेगा ना तब तक दुनिया में कोई भी दूसरा इंसान जो है आप में वो चीज़ महसूस नहीं करेगा, ना आपको कभी उसका एहसास होने देगा। शाहजी कितने अच्छे हैं आप, मैंने तो कहा शायद अभी फ्रिज में गई तो गई, अब फ्रिज ही पी जाएगी इसको, मेरे हिस्से नहीं आएगी ये। तो जब बड़े लोगों की बात हो रही थी तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें याद रखा। तो जब सबसे पहले कहते हैं कि इंसान को खुद अपने अंदर वो चीज़ है वो फील करनी चाहिए, और कुछ लोग जब इसको फील करने की कोशिश भी करते हैं ना तो लोग उन्हें दीवाना भी कहते हैं, मजनू भी कहते हैं, मजजूब भी कहते हैं, कुछ भी कह लें। तो जब भी ऐसी कोई कैफियत इंसान पर तारी होती है, चाहे वो किसी भी चाहे वो किसी भी अंदाज में हो, तो उसको सबसे पहले जो जिस चीज़ का सामना करना पड़ता है ऑब्वियसली वो एक ऑब्जेक्शन होती है, एक रुकावट होती है। और जब किसी इंसान के अंदर से ये एहसास ख़त्म हो जाता है ना कि लोग क्या कहेंगे, तो मुझे लगता है कि वहाँ से ही उसकी जो सक्सेस है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसको हमेशा हमें पॉजिटिव लेकर चलना चाहिए, और जो भी कोई लिमिटेशंस और बाउंड्रीज होती हैं, जो असूल होते हैं ना अपने, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल्स के अंदर रहते हुए इंसान अगर अपने आप को बुलंद करता है तो एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि वो जो कामयाबी जो है उसकी बुलंदियों को वो छू लेता है। और कामयाबी भी हमेशा के लिए नहीं होती, सक्सेस इज अ जर्नी। थोड़ी देर आप उस जर्नी को एंजॉय करते हैं। वो घर हमारा, उसको टेस्ट करते हैं।
उसके बाद जो बड़े लोग होते हैं ना, they are always ready to step down.

0: वेलकम बैक एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से आवाज़ सुन रहे हैं मसूद अहमद की, और मेरी आवाज़ में जो ये तासीर आई है ना, ये एक ठंडे ठंडे काले रंग के मशरूब की वजह से आई है। और ये मशरूब हमें दिया जनाब हमारे बहुत ही प्यारे अदील जैदी ने। अदील जैदी, बहुत शुक्रिया आपके इस ठंडा ठार मशरूब का। एनीवेज, बढ़ते हैं हम आपके मैसेज की जानिब, और मैसेज से पहले जनाब अगर आप इस वक्त रोड पर ड्राइव करें तो ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए और वो तमाम लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं उन सब के लिए आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। और इसके साथ साथ जी वो तमाम लोग जो कि आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं उनसे हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मैनी एंड मैनी मोर। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों साल के देखने की तौफीक अता फरमाए, मगर सेहत और तंदरुस्ती के साथ। वल जी, फेसबुक पर आपके मैसेज हैं जनाब। गुलाब साहब ने मैसेज किया, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नज़ीर खोसो साहब ने सोबतपुर से मैसेज किया, बहुत शुक्रिया। हमदुल्ला मलाखेल साहब ने मैसेज किया, बिल्कुल सही आपने बात की, और कह रहे हैं कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, पहले मैंने तवज्जो नहीं दी, बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले हम तवज्जो नहीं देते, जब कुछ गलत हो जाता है तो बाद में मालूम होता है, अगर हम तवज्जो दे लेते तो ये अच्छा होता। वेल जी, उन्होंने हमारे टॉपिक के हवाले से बात की है कि टॉपिक हमारा आज का ये है कि कभी आपको कोई काम कर लेने के बाद गिल्ट फील हुआ हो, अगर हुआ तो फिर आपने उसको कैसे ओवरकम किया, आपने उसको कैसे अपने लिए कामयाबी की सीढ़ी बनाया, या आपने कैसे उसको अपने लिए उसको अपने पॉजिटिव सेंस में उसको आपने चेंज किया, आप हमारे साथ शेयर करेंगे 111111 पर 11 बजे के बाद। इसके अलावा जी मलिक वसीम साहब ने मैसेज किया है, कह रहे हैं बहुत उम्दा प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। और गुलाब साहब कह रहे हैं आपका प्रोग्राम अच्छा होता है। अच्छा जी, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ। और जी हमदुल्ला मलाखेल साहब ने दोबारा मैसेज किया, मोहम्मद हफीज़ुर रहमान साहब ने मैसेज किया भक्कर से, बहुत सारे लोगों को आपने सलाम कहा तो सलाम आपका भाई उन सब लोगों तक पहुँच गया। और रेहाना ख़ान ने भक्कर से मैसेज किया है, बहुत शुक्रिया। और मलिक वसीम अवान ने फिर मैसेज किया है, और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो आप हमें बार बार मैसेज करते हैं, ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी चाहत है। और जिसके अलावा भी मैसेज मेरे पास मौजूद हैं, उन्हें मैं टाइम टू टाइम ऑन एयर करता रहूँगा। 4471 पर भी मैसेज मौजूद हैं। और मोहम्मद इकबाल साहब ने मैसेज किया, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, तमाम सुनने वालों को सलाम, और प्लीज़ अताउल्लाह साहब का को गाना प्ले कर दें। चलिए जी, इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा अपने नेक्स्ट आवर में अताउल्लाह साहब को प्ले कर दूँ। और इसके अलावा जी हमें एक और मैसेज आया है, लेकिन उसमें कोई नाम शाम कोई अता पता नहीं है, राणा जी लिखा हुआ है बस, राणा जी 26 ईयर की पाँ आगे इसकी कोई समझ नहीं आ रही। एनीवेज जी, बढ़ेंगे हम इस ट्रैक की जानेब। और अभी आप सुन रहे थे आमिर ज़की को, और आमिर ज़की ने जनाब बहुत थोड़ा काम किया लेकिन कमाल का काम किया कि आज भी उनके ट्रैक्स जो हैं वो लोगों के ट्रैक जो है, स्पेशली ये वाला ट्रैक जो मैंने अभी प्ले किया था मेरा प्यार तुम ही हो, बहुत ज़्यादा कह लें कि आज भी मकबूल है और हमें याद जो है वो उनके दिलाता है। और इसलिए कहते रहे कि थोड़ा खा लो मगर अच्छा खा लो, इसलिए कहा जाता है कि आपने थोड़ा काम किया हो लेकिन अच्छा काम किया हो तो वो बहुत देर तक अपना असर रखता है। बजाय इसके कि ढेरों ढेर काम किया हो लेकिन क्वालिटी ना हो, दिल से ना हुआ हो,
1: तेरे करके हर आफत
0: मजा नहीं आता उसका।

0: 101, the best variety.
1: Continuous hit music now.
2: Today's hit music.
1: Q101.
3: वेल सो वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. दुनिया जनाब चालें चलती है और कभी क्या कहेंगे ये चालें तो ओपन होती हैं और बाज़ूकात ऐसा होता है कि चालें इतनी खुफिया होती हैं, इतनी सीक्रेट होती हैं कि इंसान समझ नहीं पाता कि आया ये चाल है या ढाल है. एनीवेज बात हम करें गिल्ट के हवाले से. गिल्ट जनाब सिर्फ एक तरह का ही नहीं होता कि इंसान अपने आप को ही मुजरिम जो है वो तस्वर करता रहे और ये समझता रहे कि बस सारी की सारी गलती ही मेरी है और अपने आप को ही अपनी आंखों में वो मुजरिम समझना शुरू कर दे. ये तो फिर गिल्ट से जो है निकल के बाद डिप्रेशन और फिर जहनी अमराज की तरफ चली जाती है. तो हमने इस प्रोग्राम को रखना है जनाब लाइट लाइट सा और ऐसा जनाब गिल्ट जो है ना एक बड़ा कह लेंगे. जब मैंने इस टॉपिक पर थोड़ा सा सोचा और थोड़ा सा जब चीज़ों को फरोलना शुरू किया ना तो उसमें एक बड़ा मज़ेदार गिल्ट मेरे सामने आया कि जनाब जिसको फूड गिल्ट भी कहा जाता है. अब फूड गिल्ट क्या होता है, आपका क्या ख्याल है कि फूड गिल्ट क्या होगा? फूड गिल्ट ये होता है जनाब के मैंने सोचा था कि मैंने आज से समोसे नहीं खाने, मैंने आज से भटूरे नहीं खाने, मैंने आज से हलवा पूड़ी नहीं खानी, मैंने आज से पराठा नहीं खाना, मैंने आज से बोतल नहीं पीनी, मैंने आज से पिज़्ज़ा नहीं खाना, मैंने आज से बिरयानी नहीं खानी. लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो चीज़ हमारे सामने आती है हम जनाब फौरन से भूल जाते हैं. एक लम्हे के लिए सोचते हैं अच्छा यार, फिर कहते हैं कोई गाल नहीं, खादा पीता ही काम आना है और हम फिर से उसको खाना शुरू कर देते हैं और दैट इज़ कॉल्ड जनाब फूड गिल्ट. और इसके बाद इंसान को एहसास होता है कि यार मुझे ऐसे नहीं खा लेना चाहिए था, बेहंगम तरीके से मुझे नहीं खाना चाहिए था. मैंने जिस प्लान पे मैं चला था मुझे उस प्लान को फॉलो करने चाहिए था.
4: जिंदगी में जो सकूं बना वजह बस तू ये तेरा ही कमाल मेरी दिल रुबा दूर सनु करना चाहे सारी खुदाई वे.
3: तो इस तरह का जनाब कभी भी किसी किस्म का कोई गिल्ट आपको फील हुआ हो तो आप हमारे साथ शेयर करेंगे 111111 पर. नवाल आपका मैसेज मुझे आया, मुझे कह रही है कि जश्न आजादी पर आपको बहुत मिस किया. दो बातें, एक तो आपका जो नाम है ना हमारे ऑफिस में एक हमारे कुलीग हैं बहुत अच्छे हैं, उनकी प्यारी सी बेटी और उस बेटी का नाम जो है वो भी नवाल है और वो एक जब कह लें कि जब उनके मुंह से वो नाम अदा होता है ना तो बड़ा प्यारा लगता है और जो उनकी चाहत है उनकी बेटी के साथ वो उस नाम से जो है वो जब वो नाम लेते हैं तो उससे वो जाहिर होती है. तो आपका भी जब ये नाम मेरे सामने आता है ना तो मुझे वही उस बच्ची का जो मासूमाना चेहरा है वो मेरे सामने आ जाता है. जब ब्यूटीफुल

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतासर अफराद को इमदाद की फराहमी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर ने सनअतों के फरोग और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए ज्यादा से ज्यादा वसाइल मुख्तस करने पर जोर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिला खुजदार में खुफिया इतलात की बुनियाद पर कार्रवाई के दौरान भारत के हिमायत याफ्ता 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। और नेदरलैंड्स में FIH हॉकी आलमी कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच जारी है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: Swan in the 100% power of radio. 101 FM, the voice of your choice. FM 101.
1: It's not just a radio, it's a sound factory.
2: वेलकम बैक एफ एम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से आवाज़ सुन रहे हैं मसूद अहमद की, मेरा आपका साथ रहता है हर हफ्ते के रोज़ रात 10 से 12 में। और जनाब वक्त हुआ है कि हम आपकी कॉल्स में प्रोग्राम में शामिल करें, और वैसे तो सारे प्रोग्राम में ही जो लाइट्स हैं ब्लिंक होती रहती हैं मेरे पास, लेकिन अब ये जो है टाइम शुरू हो गया कि हम आपकी कॉल्स में प्रोग्राम में शामिल कर सकें। सो यस, ये तो हमारे रेगुलर कॉलर होते हैं, इनके बाद ही जो है वो नॉर्मली बिस्मिल्लाह होती है। इसका मतलब ये होता है कि लाइन आपकी ओके है, अब नेक्स्ट कॉल्स में वो आनी शुरू हो रही हैं, तो उन्हें आप प्रोग्राम में शामिल करते जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, नहीं जनाब अभी भी लाइन जो है वो थ्रू नहीं हुई। और किबन राइन जी, बात हम इस हवाले से कर रहे हैं कि जनाब आपको कभी अपने गिल्ट महसूस हुआ हो कभी कोई काम कर लेने के बाद कि जो आपने इरादा किया कि मैं आइंदा ये काम नहीं करूंगा, ऐसा कोई बात किसी से नहीं करूंगा, ऐसा कभी खाना नहीं खाऊंगा। और ज़िंदगी में और बहुत सारे मामले होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी मैं किसी से उधार नहीं लूंगा, कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करूंगा, कभी किसी का एहसान नहीं लूंगा। कुछ भी हुआ हो तो और उसके बाद आपको फील हुआ हो कि यार ये मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे 111-111-101 पर। फिल वक्त हमारे पास हैं जी रानू, और रानू इन अ न्यू स्टाइल, तो जस्ट स्टिक अराउंड 101, आई विल राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक विद अ लॉट ऑफ म्यूजिक एंड अ लॉट ऑफ चिट चैट।
3: ओ बुढ़िया कर लो पासे भाई, जटदा पट्टा वा आया, पर तू पाया बदला ते डो रानू मां जलाया, छत

0: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, मेरी कॉल भाई कट हो गई थी।
0: ओ चलिए, कोई बात नहीं, दोबारा मिल गई ना कॉल आपकी।
1: इतनी मुश्किल से मिली है, जो बिना सुने कॉल मिला था उसकी बहुत मुश्किल से मिलती है।
0: ओहो, अब इसके लिए आसानी का क्या तरीका निकालें, ये भी मैं सोचता हूँ इस चीज़ पर कि किस तरह कोई तरीका निकालेंगे आसानी से कॉल मिल जाए। अच्छा नहीं लगता इतनी बार बार बार बार कॉल मिलाएं और फिर भी ना मिले, तो बस जो है ना एक उलझन सी होती है।
1: देखिए ना, जो लोग सुन नहीं रहे बिना सुने कॉल मिलाए, तो वो भी कितना मुश्किल है।
0: क्या बात है, क्या बात है। वैसे तो ये तो
1: बिना सुने कॉल मिला रही हूँ, मुश्किल से मिली है।
0: क्यों, आप सुन क्यों नहीं रही थी?
1: आपको पता है की बहन की शादी हो गई है।
0: वाकई
1: वाकई आपको किसी ने बताया?
0: माशाल्लाह, नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं पता चला। माशाल्लाह बहुत मुबारक हो जी, अल्लाह ताला आपके लिए आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ बरकतें और रहमतें जो हैं वो अल्लाह ताला आप पे नाजिल फरमाए, और बहुत खुशी हुई जान के, बहुत अच्छा लगा ये जान के।
1: शुक्रिया, क्योंकि बस मैं काफ़ी दिनों से आप भी गायब थे, फिर आपको भी नहीं, मैं बताना चाहती थी, लेकिन आप तो रेडियो से गायब ही रहते थे, छुट्टियाँ बहुत करते थे।
0: बस छुट्टियां मैं करता नहीं था, छुट्टियां हो जाती थी, अब क्या कर सकते हैं।
1: ठीक है, तो क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ ना, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत मसला है, इसी वजह से मैं सुन नहीं पाती।
0: तो आप कहाँ, लाहौर में मौजूद हैं या लाहौर से आपके बाहर?
1: नहीं, लाहौर के इर्द गिर्द ही गुजरा वाले में हूँ ना, यहाँ पे सास ससुर है।
0: ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, अब आप फिर क्या कहने, पहलवानों के शहर में आ गई हैं आप, बागों के शहर से निकल के पहलवानों के शहर में आ गई हैं।
1: रहते तो हम इस्लामाबाद हैं, अलहदा से रहते हैं ना, यहाँ पे सास ससुर के पास रह रहे, वो कह रहे कुछ दिन यहाँ पे रहें।
0: हाँ नहीं, ये भी ज़रूरी है, बिल्कुल आपको रहना चाहिए। तो फिर आप अगर सुन नहीं रही तो मैं टॉपिक आपको बताऊँ फिर, या क्या करें फिर हम? हेलो हेलो वजी रिमशा, आई थिंक बैड लक, आपकी कॉल जो है वो फिर से डिस्कनेक्ट हो गई, और वाकई इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर सिग्नल्स का कोई प्रॉब्लम है और आप शायद ट्रांसमिशन नहीं सुन रही हैं वाकई। एनीवेज़, वी हैव द नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम,
0: क्या हाल है सर आपके?
2: जी ठीक ठाक, सॉरी मैं माजरा चाहता हूँ, दोबारा आया
0: हूँ। कोई बात नहीं भाई, बताएं।
2: मुझे बड़ी खुशी हुई और रिमशा बहन की शादी हुई, अल्लाह पाक वो इतने नेक नसीब करे इसके।
0: आमीन आमीन।
2: इसलिए मैं आया हूँ, पहले भी कॉल कट गई थी तो मेरा नंबर लग गया था, लेकिन
0: बड़ी बड़ी क्विक सर्विस है आपकी, अभी उन्होंने कॉल उनकी ड्रॉप हुई और साथ आपने दोबारा कॉल कर दी। तो लोग तो कहते हैं मुश्किल से कॉल मिलती है, आपकी तो बड़ी आसानी से मिल गई है, ये क्या बात है?
2: बस एक टोटका है, वो हम बता देते हैं सबको, जब किसी की कॉल खत्म हो या अल्लाह हाफिज करे उसी टाइम नंबर डायल करें तो कॉल फौरी मिलता
0: है। लें जनाब लें जी, अब जो है ना ये सबका शिकवा खत्म हो जाना चाहिए सलीम भाई की वजह से कि उन्होंने आपको ये टोटका बता दिया। ठीक है जी, चले, थैंक यू सलीम भाई। लेकिन जी सलीम भाई ने भी जैसे अल्लाह हाफिज कहा, आपको भी चाहिए था कि आप कॉल मिलाते तो आपकी कॉल मिल जाती। एनीवेज लेट्स सी हु इज द नेक्स्ट वन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम सलाम जी, हाल चाल जी? ठीक ठाक जी,
0: शुक्र अल्लाह दा। शहजाद साहब तुसी सुनाओ, ठीक ठाक हो?
3: बस दुआवां तुहाडियां। देखो जी कॉला कटिया जा रही है साडियां, हुण साडी भी किते दी कटी गई कॉल ते लग गई ला।
0: दे लो फिर, यही यही दुनिया दा निजाम इसे तरह चल जाए, किसी दी गुड्डी कटी जांदी है ते किसी दी गुड्डी जिहड़ी अगे निकल जांदी है।
3: माशाल्लाह जी, बड़ा चंगा प्रोग्राम
0: नहीं। हां जरूरत नहीं, मैं कह रहा कि कभी तुहानू कोई जिवें तुहानू तुहाडे कह लो कि किसी दोस्त ने तुहानू कह लो किसी मदद वास्ते या कभी भी किसी काम वास्ते क्या होए, तुसी उस वेले ते उन्हूं ना कर दिती होगी, नहीं यार मैं तेरा काम नहीं कर सकता, लेकिन बाद विच तुहानू एहसास होया कि यार पता नहीं वो कितना मजबूर सी, मैनू उदों ना नहीं सी करनी चाहीदी या मैनू उन्हूं जिहड़ा ना इस तरीके नाल नहीं सी कहना चाहीदा, कभी बाद विच काम करन तो बाद कोई एहसास होया इस तरह का?
3: ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ,
3: ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ
0: ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
3: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਚੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ
0: ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ
3: ਸੁਣਿਆ
0: ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਓ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਖਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ
3: ਬਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ
0: ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਲਾਈਵ ਚਾਹੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਹਿਬ
3: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
0: بہت شکریہ جیندے رہو خوش رہو بستے رہو تھینک یو سو ویری مچ اللہ حافظ اللہ حافظ ویلز یہ تھا ہمارے ساتھ شہزاد صاحب اور اس وقت پروگرام میں ہم شامل کریں گے جی یہ والا گانا اور اگر سے یہ گانا میں نے کیو شیٹ میں شامل نہیں کیا تھا لیکن ابھی رینڈملی جب یہ پلے لسٹ میرے سامنے آئی نا میں لگا کہ چلا ہی لینا چاہیے اس کو کیونکہ آج بیگم صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ یہ ہے نمرہ مہرا پتہ نہیں کیا خاص بات ہے ان میں تو چلیں جناب نمرہ مہرا کو اور ملکو کو سنتے ہیں

0: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी कॉल से ड्रॉप हो गई थी।
0: ये रिमशा ये क्या चक्कर है, ये देख लें, ये शादी के साइड इफेक्ट्स तो नहीं है कि आपकी कॉल ड्रॉप होनी शुरू हो गई है?
1: देखिए ना यहाँ पे भाई ये मसला ना, कॉल कट हो जाती है, पूरी बात ही नहीं हो पाती।
0: तो आपने आपने ससुराल वालों को पहले नहीं बताया था?
1: ये मैंने मैं तो कहती गुजरा वाले जो है ना, मैंने मैंने तो कहा दो नंबर गुजरा वाले, मैंने कहा लोर है,
0: लोर लोर है, हां बिल्कुल ऐसे ही है।
1: हां मैं कहा लोर मैं जो है ना सिग्नल पूरी आते, मैंने कहा यहां पे तो पूरी बात नहीं होती, कॉल ही कट हो जाती है।
0: कॉल ना बिल्कुल। तो आपने फिर ससुराल वालों से कहा नहीं कि अब जो है वो अपना घर लाहौर में शिफ्ट कर रहे हैं?
1: मैंने कहा अपने हस्बैंड को, मैंने कहा या तो इस्लामाबाद चलो या तो लाहौर चलो, मैंने कहा इधर मैंने नहीं रहना।
0: ओए होए होए, आपने बेचारे पे नई नई शादी और आपने उस पे अभी से रोप डालना शुरू कर दिया, या लाहौर चल या इस्लामाबाद रह के चल।
1: पहले से अगर काबू कर लो बाद में फिर
0: आपने पट्टियां पढ़ानी शुरू कर दी है शरीफ आदमी को?
1: अल्लाह नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उनको रोकती नहीं मम्मी पापा से मिलने से।
0: अच्छा,
1: वो मिलते हैं आते हैं सब आते हैं, मैंने बस ये है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ पे मैं कम वो नहीं हो रही, यहाँ पे रेडियो नहीं सुना जा सकता।
0: क्या ये सबसे बड़ा मसला है, मुझे और कोई मसला नहीं है, मेरे से रेडियो नहीं सुना जा रहा है यहाँ पे।
1: हाँ रेडियो नहीं सुना जा रहा, मैंने कहा आप जितने मर्जी जाओ मैं रेडियो तो सुना कम से कम बैठ के।
0: हाँ बिल्कुल, जो ताड़े ना मैं लड़के थे जो मैं बहन थे फिर मैं रेडियो तो सुनना है ना, कोई शायद हो जाए ना।
1: क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना वो कल से गए हैं किसी काम, तो मैंने कहा देखे कुत्ता बाहर चले गए, मुझे रेडियो सुनने से बिठाया हुआ।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहना था इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप या लाहौर शिफ्ट हो जाएं या इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएं।
1: हाँ इसलिए मैंने कहा गुजरा वाले मैंने नहीं रहना।
0: चलें ठीक है रिमशा, मुझे ये बताएं कि अब जो टॉपिक है हमारा कि आपको कभी एहसास हुआ हो किसी काम को कर लेने के बाद कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो ऐसा कोई है आपके जहन में, कोई मामला को कभी ऐसा हुआ हो?
1: काम तो नहीं है फिलहाल, मुझे ऐसा था कि ये गुजरा वाले जो मैंने आई हूँ ना ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था।
0: मतलब क्या कि गुजरा वाला में शादी नहीं करनी चाहिए थी या गुजरा वाला
1: नहीं, गुजरा वाले में रहना नहीं चाहिए था यहाँ पे। ये है कि मतलब मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे रेडियो की जो है बिल्कुल भी नहीं आता, कॉल वगैरह नहीं आती, तो मैं कभी भी यहाँ शिफ्ट ना होती।
0: अच्छा नहीं ये सिर्फ रेडियो से रिलेटेड है या वैसे भी सिग्नल्स वगैरह का यहाँ प्रॉब्लम होता है? क्योंकि रेडियो
1: यहाँ पे होता ही प्रॉब्लम है अब है, यहाँ पे अगर नेट पे वो नेट का भी बहुत इश्यू होता है, यहाँ पे नेट पे भी नहीं सुना जा सकता आपको, बिल्कुल भी नहीं सुना जा सकता।
0: ये दुख जो है ना ये तो
1: ये दुख जो है ना मेरे रखते ऊपर हाथ रखते हैं, मुझे फिर हंसते रहेंगे देख के। मैंने कहा कोई बात नहीं आज आप मेरे पे हंस रहे हैं ना, मैं भी छोड़ने वाली नहीं हूँ फिलहाल।
0: चले हम ये कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए कोई ना ऐसा बंदोबस्त करें कि आप तक जो ट्रांसमिशन है ना वो सही तरीके से पहुंच जाए, और जो वो आपको देख के हंसते हैं ना फिर आप उन्हें देख के हंसा करें।
1: जी हाँ, लेकिन ये है कि मैंने रेडियो ओपन करती हूँ, रेडियो पे जरा भी आवाज नहीं आती भाई, बिल्कुल शूज होती है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आती, गुम होती है आवाज। और मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, ये आज वो गए हुए हैं मतलब किसी काम से, वो मुझे पैसे दे के गए कि तुम मेरे पीछे पैसे खा ले रहे, मगर कितनी तेज है मुझे टैक्स दे के जा रहे हैं अब।
0: चले जी ये तो सब कुछ चलता है साथ साथ। बहरहाल रिमशा बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप
1: जाते जाते सबको सलाम दूंगी, कुछ लोगों को नाम लेके सलाम दे सकती हूँ प्लीज?
0: कह दें जी, मैंने पहले भी नहीं रोका
1: कभी। रजा भाई को मेरा सलाम, शहजाद अंकल, बर्फी वाले अंकल, मारिया पी नीला पी मशाला पी साजदा सुलेखा, सभी सभी सुनने वालों को मेरा सलाम। क्योंकि देखिए मैंने कितने दिनों के बाद कॉल किया, लेकिन कॉल करती हूँ तो कॉल कट हो जाती है, मैं बहुत मिस कर रही हूँ रेडियो को और आप लोगों को भी।
0: चलें बहुत शुक्रिया रिमशा, हम भी आपको मिस कर रहे हैं। और
1: आपने वैसे मेरे पैसे नहीं दिए, देखिए मेरी शादी हो गई, मेरा कर्ज नहीं उतारा आपने।
0: वो अभी आप मजीद कुछ अरसा जो है ना इस बोझ को मेरे पे रहने देना, तो फिर इंशाल्लाह।
1: आपने पैसे ले लिए थे मीठे मीठे बन के, अब ऐसे नहीं दे रहे आप।
0: चले कोई बात नहीं, अब आपको भी तो एहसास होना चाहिए ना अपनी गलती का।
1: चले कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया मेरे भाई हैं।
0: चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जीते रहे रिमशा, खुश रहे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वेल जी ये थे रिमशा हमारे साथ, और एनीवे जी बढ़ते नेक्स्ट कॉलर की जाने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, कैसे हैं मसूद भाई?
0: अल्लाह का शुक्र सर, आप बताएं खैरियत से हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, नया कॉलर हूँ, मोहम्मद नदीम लाहौर से बात कर रहा हूँ, ब्लैंड हूँ सर, तो प्रोग्राम अपना रेगुलर सुनता हूँ।
0: बहुत शुक्रिया नदीम भाई, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाएं। तो आज जो प्रोग्राम सुन रहे हैं इसके हवाले से क्या कहेंगे?
2: सर मैं ये कहना चाहूँगा, मैं जब किसी से कोशिश तो करता हूँ कि ऐसा ना हो, फिर भी हो जाता, किसी से जब झगड़े से सख्त रवैये से पेश आऊँ ना तो तब मुझे पछतावा होता है।
0: अच्छा, तो फिर उसको खत्म कैसे करते हैं?
2: खत्म वास्ते किसी से हो जाता है ऐसा मसला तो फिर उसी से मना लेते हैं।
0: माजरत करने भी तो हमारे जैसे हम लोगों के लिए तो माजरत करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। हम तो समझते हैं कि शायद माजरत करना जो है या किसी को सॉरी बोल देना जो है उससे शायद हम छोटे हो जाएंगे। ये भी तो मसला होता है हमारे साथ। लें जनाब, ये कॉल जो है वो मुकद्दर को मंजूर नहीं थी कि पूरी हो सके। एनीवेज बढ़ेंगे हम नेक्स्ट ट्रैक की जानिब, और दिस ट्रैक इज बाय फैसल कपाड़िया, और फैसल कपाड़िया की जो आवाज़ है ना उसमें एक यूनिकनेस है, उसमें एक अलग सी बात है, और शुरू से इनकी आवाज़ बड़ी अट्रैक्ट करती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छा गाते हैं। जब स्ट्रिंग्स में थे तब भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, फिर जब सोलो हुए तब भी बहुत अच्छा अच्छा काम किया, अच्छी लगती है, बहुत अच्छा गाते हैं। जब स्ट्रिंग्स में थे तब भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, फिर जब सोलो हुए

0: डर लगता है कि कहीं ये गुस्सा तो नहीं कर दिया किसी के बाद। हेलो,
1: सही है।
0: अच्छा, फिर मेरी पिक्चर एक दो दफा ऐसी उतरी हुई पिक्चर्स, तो वो ना फैमिली में कोई देख रहे थे, मेरे नंद के बच्चों के पास थी, तो वो दिखा रहे थे किसी को, तो कहते हैं मामी तो तुम्हारी खूबसूरत है पर यार ये गुस्से वाली लगती है।
1: गुस्से वाली लगती सही सही। तो आप तो आप फिर अपनी फैमिली में गुस्से वाली आंटी मशहूर होंगी।
0: नहीं, कोई भी नहीं जो मुझसे मिलते हैं ना, फिर उनको पता चल जाता है कि मैं कोई गुस्से वाली नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत ज्यादा जो है ना मेरी वो की जाती है तारीफ पे, और ये मुझे बहुत फैमिली में पसंद किया जाता है। माशाल्लाह
1: माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामती दे।
0: आमीन। और इसी तरह सबके साथ मैं बहुत अच्छा कोशिश करती हूँ, मेरे से किसी की दिल आजारी ना हो, किसी की हक तलफी ना हो, किसी के साथ कुछ भी ऐसा, मतलब ऐसी चीजें मैं बहुत रखती हूँ ज़हन में।
1: रखना चाहिए इंसान को, जरूर रखना चाहिए, हर वक्त रखना चाहिए। तो हमारा भी यही टॉपिक है आज का कि कभी आपको इस तरह गिल्ट का एहसास हुआ हो कि यार मेरी इस बात को मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए।
0: मुझे तो मसूद भाई बहुत हो जाता है, कभी भी, कभी किसी मेट के साथ, कभी मैं उसको डांट डपट कर दूं तो मुझे फिक्र लगी रहती है, हाय वो बेचारी क्या सोचेगी मैंने उसको डांट दी है, हालांकि मैंने उसकी गलती पे ही डांटा होगा। एक दफा चीज समझा के जो कह के जो दोबारा हो तो वो वैसे ओ भाई ये क्या किया तुमने, तो मैं तो फिर अगर तुम्हें रोशनी तेरी अकल से अंधेरा पे होया है।
1: अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपने चाहे ये बात की ना गलती पे डांटने की, तो इस हवाले से चूंकि मैं भी कहलेंगे जॉब करता हूँ और जॉब में भी तरह तरह की बातें होती हैं, मुख्तलिफ ऑफिसेज का एनवायरनमेंट होता है, और मेरी कुछ नेचर या कुछ कह लें कि ऐसा है कि मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, जो भी हमारा काम है, जो प्रोफेशन है हमारा, उसमें हो जाता है ऐसा। तो लेकिन एक चीज़ जिसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ ना, कि हमारे जो बॉसेज हैं ना, वो कभी भी इन मिस्टेक्स पे कभी उन्होंने इस तरह का डांटने वाला या वो एक वो लहजा होता है ना जिसमें तजलील हो किसी की, वो कभी भी
0: जी बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए।
1: हाँ, वो कभी उन्होंने फील भी नहीं होने दी कि ये फील आए, और बड़ा मैं उनको इस चीज़ इस हवाले से आइडियलाइज करता हूँ कि मतलब आई नो कि मतलब मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, और एक मिस्टेक है वो बार बार भी हो जाती है, कभी कुछ अर्से बाद हो जाती है, कभी कुछ है, लेकिन दे आर वेरी मतलब लीनियंट इन दैट, और वो कहते हैं कि जहाँ पे इंसान है ना वहाँ पे गलती है।
0: हाँ, बिल्कुल होती है, तो बहुत होती
1: हाँ जी, अनलेस एंड अनटिल हम ह्यूमन हैं तो हम एरर करेंगे, हम मिस्टेक करेंगे, तो इन सब चीज़ों को हमें साथ लेके चलना चाहिए।
0: ऐसी है जिंदगी में, होती है जो बड़े बड़े मुल्कों में, कहते हैं ना छोटी छोटी है, छोटे छोटे मुल्कों में बड़ी बड़ी गलतियाँ
1: होती, बातें होती रहती
0: है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं बल्कि डांट पड़ती, मेरी तो मेड भी बहुत चिल रहती है मेरे से, उनको पता होता है बहुत चिल है, लेकिन मैं जब संजीदा बैठी ना वो तब डरती हूँ,
1: आज लगता है बाजी का मूड ठीक नहीं है,
0: आज बाजी का मूड ठीक नहीं है। मुझे गुस्सा है, वो क्या कर रही थी, देसी घी ना डिब्बे में डाल रही थी, शिफ्ट कर रही थी दूसरे डिब्बे में। अच्छा हुआ क्या कि वो ना थोड़ा सा स्लैब पे गिर गया, अब उसने ही वो उसको साफ करने के लिए ऐसे डॉट था, दो डॉट ना, तो उसने क्या किया वो डॉट उंगली से लगा के ना मैं पास करी थी तो मेरे बालों में साफ कर दिए। है और मेरे मतलब बाल माशाल्लाह मेरे लंबे हैं, तो मेरे बालों से ना वो एंड पे ना उनसे साफ कर रही है। मैंने कहा ये क्या कर रही हो तुम, कहती है बाजी देसी घी लगा रही हूँ आपके बालों को। मैंने कहा मेरे बाल देसी घी खा रहे हैं इंसान है। नहीं बाजी अच्छा होता लगाना, मैं तेरा बेड़ा सज है, मैं कहा तू मुझे पेन खिलानी है, मैं खड़ा रहना की बाजी सिरगत की, तो सारे मेरे बाल खराब कर दिए तुमने पकड़ के।
1: मैंने भी इतनी महंगी स्टिकिंग करवाई थी और इतना महंगा मैंने ट्रीटमेंट करवाया था इस पे, और तुमने देसी घी लगा दिया इस पे।
0: मेरे बाल बिना लग करके रख दिया। मैंने कहा यार आइंदा के बाद तुमने मुझसे पूछे बगैर इस काम की बात करती है। हां बिल्कुल, तो बेचारी इतना डर गई कि रोना शुरू हो गई। आप यकीन करो मुझे इतना गिल्ट मतलब फील हुआ, और 10 मिनट बाद में आई, मैंने कहा इधर आओ, मैंने उसको प्यार किया, अपने पास बिठाया, मैंने कहा बेटा ऐसे ही नहीं करते, तुम तो बड़े प्यार से कर रही हो मुझे कि अपनी तरफ से मोहब्बत सबकी जता रही हो, लेकिन ये बुरी बाजी, मैंने कहा था आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, मैंने कहा तो मेरे सिर पे पूरा डब्बा रोड दे मास्क के जाए, तो इन्हें जिन्हें दो डॉट क्यों लाए ने
1: एक बार चंगी तरह अच्छे हो जाए।
0: तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रिमशाई, बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह ताला से खुश रखे। हमने तो भाई मुबारक दे दी थी रिमशा को, लेकिन हम दुआएं भी देते रहते हैं,
1: माशाल्लाह जी देनी चाहिए बिल्कुल, एक दूसरे को दुआओं में रखना चाहिए। और एक कॉलर ने बड़ी अच्छी बात कही थी ना कि हकीकी दुआओं में याद रखना चाहिए हमें,
0: हकीकी दुआओं जॉब में याद रखता है कि मैं जब कभी अकेली बैठी होती हूँ तो मुझे सब अपने कॉलर याद आते हैं। अब मैं सबके लिए उनके हिसाब से सबको दुआएं देती रहती हूँ। तारिक टीम, तारिक भाई इधर से, फिर वो क्या कहते हैं जुगनू तो पता नहीं कहाँ गई। मैं 8 अगस्त को पता उसकी बर्थडे भी थी, हमने उसको विश भी किया।
1: हालांकि जुगनू का सीजन है,
0: जुगनू का सीजन पता नहीं वो किसे टिमटमा रहा है। मुझे लगता है वो अपनी सालगिरह के हरूफ लिख के उन्हीं पे टिमटमा रहा है बस, और कुछ हो रहा वहीं पे कि मेरी सालगिरह है। लेकिन बस जुगनू भाई आ जाओ, नहीं मांगते केक, नहीं पल्ले भी नहीं मंगाएंगे, टेंशन नहीं लेनी।
1: तुसी डरो ना, तुसी आ जाओ बस,
0: डरो ना आ जाओ। अभी सलीम मेरा भाई है, बड़ा अच्छा कॉलर है। सलीम ने मुझे लगता है बसंत में ना पतंगों वाले कपड़े सिए थे, आपको पता
1: है
0: उसने डिजाइन पतंगों वाले बना दिए थे कपड़ों पे।
1: अच्छा, कपड़ों पे
0: उनके कपड़ों पे ना उन्होंने गुड्डे बना दिए, उन्होंने के आके ना कुटा।
1: अच्छा,
0: पता चला कि वो कह रही थी गुड्डे नहीं पतंगे बनाने थे, फीमेल के कपड़े थे, बेवकूफ।
1: ओह अच्छा, चलो कोई नहीं, इसी तरह सीखता है इंसान जिंदगी में। अगली बारी ध्यान करेंगे सलीम साहब।
0: सलीम को खुदा दा खौफ था, कपड़े तो सही ब्याह वाले कपड़े तो आना सी मेरा भी, वैसे माशाल्लाह अच्छे सीखता है, मैं उसको तंग करती रहती हूं।
1: नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा काम करते हैं,
0: खुश रहे। हां
1: हमें, चलिए बहुत शुक्रिया नीरा पा,
0: सब आ रहे हैं सबके लिए बहुत सी दुआएं, शहजाद भाई और बाकी सब जो आते हैं, अब्दुल मीत भाई, बस ही सानू कोई नहीं आई, असि छापा ही मारेंगे और तैयारी करें। मसूद भाई, अब्दुल मीत भाई पिंड चल गए, हूं
1: बस ठीक है, ठीक है, डन हो गया। इंशाल्लाह बनाते हैं को प्लान, फिर छापा ही मारते हैं।
0: बाकी जो जिस किसी का मैं नाम भूल गया, वेरी सॉरी, फिर मुझे गिला आता है जी। मेरा नाम नहीं दिया, रजा चौधरी आ जा, तेरे चाय वाले कप मन लगता तो कोई साथ पींदा रहना बैग ऐसे फोन कौन भेज देंदा पींदा रहे मेरा।
1: बहुत शुक्रिया, चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत
0: थैंक यू सो मच मसूद भाई। थैंक यू, सलाम मेरी बाकी बहनें भी सबको, परवीना आंटी और शमीमा आपकी और सादा सबको दुआएं। और मेरा ना मोबाइल गिर गया था तो उसमें से सारे नंबर उड़ गए, और मैं सबको कह रही हूँ जो मुझे जिनसे था वो सब मुझे फोन कर लो ताकि मैं नंबर सेव कर।
1: चलें जी, कर लें जल्दी से जनाब, अपने कॉन्टेक्ट शेयर कर दें इससे पहले के देर हो जाए, ठीक है। आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वेल जी, ये तो जहाँ गिल्ट की बात है तो वो तो गिल्ट तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा फील होने लग गया था, जस्ट किडिंग। एनीवेज, प्रोग्राम में इस वक्त हम शामिल करेंगे ये वाला गाना, और इसके बाद एक दफ़ा फिर से आपके साथ होंगे। सो स्टिक अराउंड 101, मुझे कहते हैं मसूद अहमद।

वैसे गिल्ट तो हम सबसे होते हैं, जिस मैंने पहले कहा कि जब तक इंसान है, इंसानियत के काम चल रहे हैं, तब तक जो है वो गलतियां कोताहियां जो है वो साथ साथ चलती हैं। तो जब भी कहीं पे कोई ऐसा मामला हो तो मेरा ख्याल है कि हमें सॉरी कर लेने में, अपनी गलती तस्लीम कर लेने में ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि गलती तस्लीम करने से इंसान सीखता है और उससे इंसान की वक़्त में कोई कमी नहीं होती, बल्कि इंसान अपनी नज़रों में और दूसरों की नज़र में मज़ीद बेहतर मुकाम पर आ जाता है और जो उसके सीखने का अमल है वो चलता रहता

0: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए।
0: कैसी हैं परवीन आपा?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: अल्लाह का शुक्र, जाए ठीक ठाक हूँ।
1: अभी मैं ऑनियर तो नहीं हूँ ना?
0: आप बिल्कुल ऑनियर हैं, क्यों, क्या हुआ?
1: नहीं नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है।
0: नहीं नहीं, कुछ हुआ तो बताएं आपा।
1: नहीं नहीं कुछ भी नहीं,
0: देख लें, आपने पूछा ऐसे ना, सब खैरियत है।
1: आप तो इतने अरसे आप आए नहीं थे, तो उसकी वजह मुझे पता चली। मुहे बहुत दुख हुआ मसूद, बहुत दुख हुआ। बस मैं बहुत दुआ हूँ अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और आप लोगों को सब जमील अता करे। मैं नहीं चाह रही थी कि ये बात छेड़ूंगी, इतने अच्छे मूड में हो, लेकिन बहरहाल जो जिंदगी की हकीकतें हैं वो तो आती हैं सामने, और आना भी चाहिए। बहुत अल्लाह ताला से मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। जब मुझे सुना मैंने किसी कॉलर ने कहा, तो मुझे बहुत बहुत तकलीफ हुई। खैर, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो,
0: बहुत अच्छा,
1: माशाल्लाह। हंसते बोलते वाकई हंसने में मजबूर कर देते।
0: बस ऐसे ही अल्लाह ताला जी सबके लिए सेहत और सलामती वाली अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी अता करे, और जो चले गए अल्लाह सबके लिए आसानियों वाला मामला करे।
1: हाँ, बस उनके लिए आसानी, आगे की मंजिलें तमाम आसान हो। बस इतनी बड़ी हस्ती होते हैं हमारी ज़िंदगी के मसूद, ये दो हस्तियाँ जो है हमारे वालिद और वालदा, जो चले गए तो फिर चले गए, फिर बस तरसते रह जाओ। कितने दिल चाहे कि देख लें, बुला लें, बात कर लें, नहीं होता ऐसा।
0: बस
1: ज़िंदगी से जुड़ी हुई तो सारी शख्सियात ही बहुत अहम है, लेकिन ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान जीते जी भूल नहीं सकता। बहरहाल, लेकिन एक दिन फेस तो करना पड़ता है।
0: हाँ जी,
1: कभी बेचारे माँ बाप फेस करते हैं, औलाद चली जाती है पहले।
0: हाँ जी, बिल्कुल, कभी अपने हाथों से हम अपनी औलाद को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और
1: मेरे अल्लाह, दर्दनाक मंजर और वो दर्दनाक लम्हात। तो
0: खैर फरमाए सब पे,
1: अल्लाह ताला खैर फरमाए। प्रेम शाइन थी शादी का बता रही थी, बहुत खुश हुई वाकई बच्ची के लिए।
0: बिल्कुल,
1: अल्लाह खुश रखे। अच्छा, मैंने तो कोई एक प्रोग्राम भी नहीं सुना मसूद जश्न आज़ादी का, क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
0: क्यों आप भी खुद तो नहीं गई वो बाजा लेके? तो नहीं, आप भी सर को
1: बाजी में तो मैंने बहुत बच्चों को डांट लगाई।
0: अच्छा,
1: बहुत लगाई।
0: किसी गली के बच्चे को पकड़ के फेंटी तो नहीं लगा दी आपने?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बस बच्चे डर जाते हैं, जरा सा जोर से जरा आवाज लगाओ ना, डर जाते हैं, भाग जाते हैं घर के अंदर।
0: बड़ा रोब है आपका, इसका मतलब है अपने मोहल्ले में?
1: नहीं, रोब क्या है, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ बच्चों के साथ ना। अच्छा। मोहल्ले वाले भी सारे बच्चे प्यार भी बहुत करते हैं, कोई नहीं चीज लेते हैं तो फौरन मुझे लाके दिखाते हैं। मैं, ये किसने दिलाया है? मेरे पप्पा ने दिलाया है। अच्छा। पप्पा ने बहुत ही गलत हरकत की। मुझे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, किसी के भी हो, खुश रहे, शाद रहे, ये तो माँ बाप का काम है ना, मसूद समझाए बच्चों को, क्या खबर बेचारों।
0: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल
1: बहरहाल अच्छा वो गुजर गया। लेकिन
0: तो, अच्छा, आप कभी कभी गिल्ट फील हुआ किसी काम का?
1: मुझे एक बात का बहुत हुआ था और हुआ है बाद में, बल्कि बहुत हुआ है। मैंने अपने अपने क्लास फेलो लड़के को ना एक चौड़ा मारा था बहुत जोर से, सच में, और मुझे आज तक उस बात की मुझे तकलीफ है। और पता है अच्छा। हुआ भी क्या, जब से मुझे ज्यादा है कि वो मुझे अचानक मेरी शादी के बाद, मेरा बेटा एक दो तीन साल का था, वो मुझे मिल गया।
0: अच्छा।
1: तो मुझे बड़े अदब से सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा पता नहीं कौन बंदा है। अच्छा। मैंने मुझे पहचान ही नहीं, तुम आई? मैंने कहा तुम कौन है भाई? मैंने कहा मैं आपको पहचानी नहीं हजरत, स्कूल याद है ग्रीन होम? अच्छा, फिर मेरे कुछ दिमाग में कीड़ा इधर से उधर घूमा। मैंने कहा तुम क्या अर्शद हो? वही हूँ, शुक्र है कि तुमने पहचान लिया। मैंने कहा तुम आए मेरे सामने, थप्पड़ भूलूंगा थोड़ी।
0: नहीं, पूरा फिल्मी सीन बनाया आपा आपने फिर।
1: मसूद, मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, नहीं मैंने उसको बड़ा फोर्स किया, मेरे घर के करीब ही था वो क्लिनिक जहाँ मैं जाती थी बच्चों को लेके। तो मैंने कहा चलो मेरे घर चलो, ये है मेरा घर जरा से फासले पर, मैं तुम्हें आशी साहब से मिलवाऊँ। नहीं अभी नहीं, मैं फिर किसी वक्त आऊंगा, अभी जरा मम्मी की दवा लेने आया था ये वो। उसके बाद मुझे इतनी शर्मिंदगी रही है, मैं आज तक नहीं भूली हूँ मसूद। ऐसे कारनामे मैंने बहुत किए बचपन में।
0: अच्छा, अब अच्छा आप, अगर अब दोबारा मौका मिला, कभी दोबारा ऐसा सीन बना, तो फिर क्या करेंगी आप?
1: नहीं, अब नहीं कर सकती,
0: अब नहीं करेंगी।
1: वो एक अजीब व गरीब किस्म की चीज थी, मैं सच में पता नहीं क्या थी। मुझे भी सोच के ना खुद ही मुझे हैरत होती है, और मेरे घर वालों को भी पता चल जाती किसी ना किसी तरह, तो कहते थे क्या करती फिरती हो तुम। मैंने क्या किया, उसने मेरी चीटिंग की थी, मैंने मारा उसको।
0: मार दी, ठीक है।
1: अच्छा प्रोग्राम है, जीते रहो मसूद, बहुत खुशी होती है तुम्हें सुन के। अभी मैं पता सुबह 11 बजे कहीं से आई थी, बाहर गई हुई थी।
0: अच्छा,
1: तो मैंने जल्दी से रेडियो ट्यून इन किया, मैंने कहा आज मसूद का डे।
0: बहुत आपकी मोहब्बत का, आपकी चाहत का बहुत शुक्रिया आपा।
1: बस आप लोगों की भी बहुत शुक्रिया, निम्रा को, बच्चों को, सबको मेरी दुआ।
0: बस अब दोबारा किसी को चमांटा ना मारिएगा आपा। ये थी हमारे साथ शमीम आपा, आमीन टू से परवीन आपा। आपा बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई, और अब तो आपसे डरना पड़ेगा हमें किसी दिन, आप हमें भी ना कोई ऐसा चमाट दे मरे। वक्त है कि हम भी आपसे लें इजाजत, और जनाब बात हम कर रहे थे गिल्ट के हवाले से, और जनाब गिल्ट का महसूस होना जो है वो हमेशा बुरी चीज़ नहीं होता, और कभी कभी हमें ये एहसास दिलाता है कि हमें ये इस चीज़ का क्या कहते हैं बताता है कि हमें अपनी किस बात या रवैये को बेहतर करना चाहिए, और उसको बेहतर करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं तो उसके साथ साथ जो हमारे साथ जुड़े लोग होते हैं उनको, उनकी ज़िंदगी को भी हम बेहतर बना रहे होते हैं। एनीवेज जो हो गया सो हो गया, इसको अपना सबक बनाएं, सज़ा नहीं। अगर गलती हुई है तो माफ़ी मांग लें, दिल हल्का कर लें और आगे बढ़ जाएं। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी का को गुजारने का तरीका है। अगर अपनी गलती को लेकर बैठे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ज़िंदगी रफ्तार रफ्तार चलती है, इंसान जब तक ज़िंदा रहता है तब तक वो सीखता है कि कैसे ज़िंदा रहना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। अगर इन सांसों ने वफा की तो आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते को रात 10 से 12 में।
2: रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मिली नजर तो हुआ है असर।
0: अगर किसी की तवक्को पर मैं पूरा नहीं उतर सका
2: साये जहां
0: तो उसके लिए माजरत।
2: धुआं जन्नतों का शहर हो गए।
0: और जो लोग चाहते हैं और दिल से चाहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों चाहतों का शुक्रिया।
2: रफ्ता रफ्ता सनम
0: बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह एंड हैज़ सेलिब्रेटेड।

0: This is Deadman's New One.
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका जिगर गज़नफर महमूद कियानी प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल के एक नए एपिसोड के साथ आपके खिदमत में हाजिर। एक नया दिन, एक नई तारीख, 16 अगस्त साल 2026, 12:06 आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। इस ट्रांसमिशन को आपके लिए डिजाइन एंड प्रोड्यूस करती हैं मिस अफरानी। मेरा और आपका साथ रहता है हफ्ते में 3 दिन, जुमरात और जुम्मा रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रोग्राम हाउस जेड में, जबकि हफ्ते और इतवार की दरबारी शाबा रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। ये बहुत जबरदस्त और बहुत खूबसूरत महफिल हम सजाते हैं।

ट्राइनिंग फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों आपकी एफएम 101। इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो आप radio.gov.pk को एक्सेस करने के बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े एफएम रेडियो नेटवर्क की लाइव ट्रांसमिशन आप सुन सकते हैं। सोशल मीडिया का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो facebook.com/fm101channelpakistan हमारा ऑफिशियल फैन पेज है, उस पर प्रोग्राम के हवाले से पोस्ट मौजूद होगी, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक देंगे। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद क्यानी, आज का टॉपिक जो है वो 12:20 के बाद आपके साथ शेयर करूंगा। आप जानते हैं कि 12:30 तक हम बैक टू बैक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़िक आपको सुनवाते हैं, लेकिन ना बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये बात करना इस वक्त, चूँकि जश्न आज़ादी हमने मनाई बहुत मिली जोश और जज्बे के साथ, लेकिन दोस्तों आपने सोशल मीडिया पर बेतहाशा ऐसी वीडियोस देखी जिसमें जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब ओवर हो के काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का नुकसान करते हैं। और अब देखें 14 अगस्त ये जो इवेंट है ये इस तरह के जितने भी पाकिस्तान में सेलिब्रेशंस होती हैं उसका अब हमेशा से जो है वो पॉजिटिव इमेज तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में जाता है, लेकिन कुछ हद तक नेगेटिव इमेज भी हम जो है ख़ुद से मतलब एज ए नेशन हम अगर अपनी बात करें हम खुद से जो है सीधी राह पे नहीं चलते। आपने बेतहाशा ऐसी वीडियो, आपको याद होगा कि 14 अगस्त से पहले जो मेरा प्रोग्राम था उसमें मैंने बात की थी कि वन व्हीलिंग हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ियाँ चलाना, राउंड अबाउट में गाड़ी को घुमाना, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ऑब्वियसली 18-20 साल से ऊपर एज के जो यंगस्टर हैं वो करते हैं, तो थोड़ा सा कब हम इन चीज़ों से बाहर जाएंगे। इतना ज़्यादा नुकसान, काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट की वीडियोज़ देखी जिसमें गाड़ियों का जो है बुरा हाल हुआ, इसके अलावा लड़ाई झगड़े की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। तो हम जहाँ बात करते हैं बाकी चीज़ों की कि सिस्टम को ठीक होना चाहिए और जो है वो जो स्टूडेंट्स जो हैं इनको अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए, इस तरह सेम हमें सबसे पहले एज ए नेशन एज ए कौम जो है वो अपने आप को मुहज़्ज़ब बनाना होगा। इस तरह की वीडियोस और इस तरह की जब चीज़ें सोशल मीडिया, चूंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है विद इन सेकंड आपकी कही हुई बात या आपने कुछ भी इस तरह की बात की वो वीडियो के जरिए पूरी दुनिया में फैलती है, तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखने में आई हैं। अल्लाह ताला जो करम करे जी, हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान रात दुगनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, आमीन। और इसके लिए दिन रात हमारे जो करता धरता वो मेहनत करें इस हवाले से कि पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इस पे एज ए नेशन हमने खुद ही जो है अपने आप को चीज़ें बेहतर करनी है। कई ऐसी वीडियोस हैं दोस्तों मतलब इतने माशाल्लाह बड़े बड़े केक्स लोग मोहब्बत से बनाते हैं पाकिस्तान की योम आज़ादी के दिन में खुशी मनाने के लिए, काफ़ी लेंथी केक बनाया गया और जब केक काटा गया और उसके बाद जो केक का हाल हुआ वो मैं आपको अब ऑन एयर बता नहीं सकता, आपने यकीनी तौर पर वीडियोज़ देखी होंगी। इसके साथ साथ एक चीज़ का जो हमेशा से बेतहाशा ऐसी फैमिलीज़ हैं जो घरों से बाहर नहीं निकल सकते इन इवेंट्स में, चूँकि फैमिलीज जब होती हैं उनके साथ बहुत अजीब व गरीब किस्म का सलूक किया जाता है। देखें ऐसे दिनों में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका एक तो ये कि साथ दिया कि जो रोड ब्लॉक की गई है जहाँ कहा गया है यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते, वहीं पर हमने ज़िद करनी होती जाने की। और इसके अलावा फैमिलीज़ भी काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो हर साल मतलब यही सोचते हैं कि यार पिछली दफ़ा हम गए थे हमारे साथ ठीक सलूक नहीं हुआ था, इन चीज़ों को हमने देखना है और ये चीज़ें तभी बदलेंगी जब ऐसे एज ए नेशन एज ए कौम जो है हम ये फैसला करेंगे हम अपनी खुशियां जो हैं वो मुहज़्ज़ब तरीके से मनाएंगे जैसे बाहर के ममालिक में चीज़ें जो हैं वो सेलिब्रेट की जाती हैं। अल्लाह ले ओ केड़े पास टूर पे हो ड्राइव करते हो, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से ड्राइविंग करें, अपना ख्याल रखें, अपने से मुंसलिक अफराद का ख्याल रखें, बराए मेहरबानी रॉन्ग जो है रॉन्ग वे पे गाड़ी मत चलाए करें, रात है दिन है कोई वक्त है। और इसके अलावा थोड़ा सा पेट्रोल बचाने के चक्कर में बराए मेहरबानी हादसा से बचा करें। फैजाबाद से जब आप ट्रेवल करते हैं थ्रू रेड जोन के एरिया में वो एक काफ़ी दूर जो है वो यू टर्न है, लेकिन बाइक हजरात वाले जो शॉर्टकट के चक्कर में आप इतने हादसा देखने के में आए हैं यार कितना पेट्रोल बचा लेंगे आप।

बहुत शुक्रिया जी, हैदराबाद से हमजा हमारे साथ मौजूद है। हमजा भाई बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के। प्लीज जो टॉपिक होता है इस पे दोस्तों पार्टिसिपेट जरूर किया करें, अपनी फीडबैक लाजमी दिया करें। कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हैं किसी तक, या कहां से सुन रहे थे, जैसे आपने हमजा सिर्फ हैदराबाद लिख दिया, बहुत शुक्रिया। अगर थोड़ी सी डिटेल आप कुछ और भी ऐड कर देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अली हमारे साथ मौजूद हैं जी, जिशान भाई क्या इकलौते भाई हैं, मुझे कंफर्म नहीं, एक भाई का तो मुझे इनको अंदाज़ा है, मुझे डिटेल इनकी नहीं पता ज़्यादा। मुनव्वर इस्लामाबाद से जी कैसे हैं भाई, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बताता चलो, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, मैं फिर आपको ना इसकी एक और एग्जांपल भी दूंगा। आप जानते हैं कि एग्जांपल्स हमेशा मैं अपनी ज़िंदगी से जो चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं वो देता हूँ। बहुत सारे लिसनर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हम खुद भी, जब मैं रेडियो लिसनर था, हमारी एक इमेजिनेशन ये होती थी कि जितने भी आरजेज आकर रेडियो पर प्रोग्राम करते हैं वो या तो कहीं इकट्ठे रहते हैं, या तो उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी दोस्ती है, या उनका ना रोज़ाना मुलाकात का सिलसिला रहता होगा। दोस्तों ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इसी वजह से ना आप लोग जो है वो किसी भी प्रोग्राम में किसी भी आरजे के हवाले से पूछते हैं। मैं तो हमेशा बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से जो शेड्यूल, चूँकि पहले मैं एज ए ड्यूटी ऑफिसर भी काफ़ी अर्सा मैडम सदफ़ के अंडर मैंने काम किया है, तो मैं वो चीज़ें जो है वो डेफिनेटली जब मुझे याद होती थी मैं आपके साथ शेयर कर देता था। अब भी मुझसे पहले किसका प्रोग्राम है या मेरे बाद किस प्रेजेंटर का प्रोग्राम है वो मैं लाजमी बताता हूँ, और मुझे अंदाज़ा भी होता है उस चीज़ का। तो दोस्तों ये जो इमेजिनेशन है ये बिल्कुल गलत है कि आरजेज रोज़ाना आपस में मिलते हैं, और दूसरी बात इनकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब अब जैसे मैं और जिशान भाई, मेरा प्रोग्राम उनसे उनका पहले होता है, मैं जब आता हूँ बस उनसे सलाम दो हल्की पुल्की होगी, या हम किसी ट्रांसमिशन में इकट्ठे बैठते हैं, ये सिलसिला होता है। और कितने ऐसे आरजेज हैं, अब हसनैन भाई, हसनैन रजा माशाल्लाह हमारे सीनियर आरजे हैं, और उनसे बहुत अरसा हो गया मेरी मुलाकात नहीं हुई। वो मंडे को प्रोग्राम करते हैं, मेरी ज़्यादा मुलाकात मोहम्मद यूसुफ से होती है, और जिस दिन थर्सडे को मुझसे बात, चूँकि हम लाहौर ट्रांसमिशन चली जाती है थर्सडे एंड फ्राइडे, तो बाद में आने वाले आरजेज, तो आरजेज की आपस में ना उतनी ज़्यादा एक तो दोस्ती भी नहीं होती, सेकेंडली ये है कि मुलाकात इनकी नहीं होती। तो आप लोग जब इस तरह के पर्सनल सवाल पूछते हैं ना तो अल्लाह आलियो कितने टोर पे हो, इस हवाले से ना बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। तो कोशिश ये किया करें जब जिस भी आरजे के हवाले से पूछना मेरे प्रोग्राम में आप मोस्ट वेलकम पूछें, मुझे जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये किया करें कि जिसके बारे में भी आपने पूछना है उस आरजे के प्रोग्राम में आप मैसेज करेंगे तो वो अपनी बेहतरीन डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। मुनव्वर इस्लामाबाद से जी कैसे हैं भाई, मैं बिल्कुल ठीक। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ये देता हूँ कि हम जब कश्मीर गाँव आना जाना होता है तो वहाँ पर जो परमानेंट रहते हैं वो ये सोचते हैं कि इस्लामाबाद में ना ये सारे इकट्ठे रहते हैं कहीं पे, या पिंडी में इकट्ठे रहते हैं, तो वो ऐसे ऐसे दोस्तों का नाम पूछते हैं, फैमिलीज जो है वो रिलेटिव्स का नाम पूछते हैं जिनसे मिले हुए ना मतलब चार चार साल हो जाते हैं, या किसी शादी में मिल रहे हैं, या अल्लाह ना करे कहीं को फौत हो गया तो वहाँ पर उनसे मुलाकात होती है। तो लेकिन वो ये इमेजिन करते हैं कि ये सारे उत्थे इकट्ठे ही रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह जो है वो ये इमेजिनेशन ना हमारी गलत, मेरी भी थी, मैं जब लिसनर होता था मैं सोचता था ये सारे डीजे जो हैं आपस में बड़े जिगरी यार होते हैं, रोज़ इनकी मुलाकात होती है, ऐसा कुछ नहीं होता सुने हो।

facebook.com/fm101channel पाकिस्तान के कुछ पैगामात हम देखते हैं। 24471 पे आपने ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस करने हैं और टॉपिक आज बहुत मीठा सा है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसको आपने कंप्लीट करना। आखिर में मैं भी आपको इस हवाले से बताऊंगा और ज़रूर जी जो जो दोस्त इस वक्त मुझे सुन रहे हैं लाजमी मैसेज करें जी। और हमारे साथ सजल मौजूद हैं सियालकोट से और ये बाय प्रोफेशन डाइटिशियन है माशाल्लाह। और सजल आपका बहुत शुक्रिया, आपने ट्यून किया 101 इस्लामाबाद से, प्रोग्राम आप जी सुन रही हैं। और डाइटिशियन जो हैं दोस्तों आजकल इनकी हर दूसरे बंदे को ज़रूरत है, किसी ने वज़न कम करना है, किसी ने वज़न ज़्यादा करना है, कट करने वाला काम जेड़ा बड़ा औखा है। मैंने बारहा अपने प्रोग्राम में बात की है कि कंसिस्टेंसी जब तक हमारी जिंदगियों में नहीं आएगी ना दोस्तों, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आप लोगों का नहीं, मैं अपना कहता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। और यकीनी तौर पर जो ये सजल डाइटिशियन है दोस्तों, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आप लोगों का नहीं, मैं अपना कहता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता।

मोहम्मद नवाज जी लाहौर से हमारे साथ मौजूद है मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। आप कहते हैं प्रोग्राम अच्छा है, एक ट्रैक की आपने रिक्वेस्ट किया जी लाला अताउल्लाह का, आप सॉन्ग सुनना चाहते हैं। मेरे दोस्त मैं कोशिश करूंगा, और मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है बराए मेहरबानी अगर आपकी जो रिक्वेस्ट होती है प्रोग्राम में शामिल ना हो सके नाराज़ मत हुआ करें। प्लेलिस्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं पहले से डिफ़ॉल्ट सेट होती हैं, और इसके अलावा जो है वो कुछ ट्रैक्स आप ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं जिनको तलाश करना सर्च करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो बराए मेहरबानी नाराज़ मत हुआ करें। बाकी जो है वो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। निमरा हमारे साथ मौजूद है, निमरा शाह फ्रॉम लाहौर। सब सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम, और आपने कहा मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनियादारी निभाते हुए लोग जो हैं वो इस्लाम भूल जाएंगे। निमरा थैंक यू सो मच, लाहौर से आप सुनिए। दोस्तों जो लोग 4471 पे मैसेज कर रहे हैं आपका बहुत शुक्रिया जी, सबका बहुत शुक्रिया, लेकिन 4471 पे थोड़ी सी एफर्ट जो है वो ज़्यादा होती है। आपने अपने मोबाइल के क्रिएट मैस्ट ऑप्शन में जाना है, 101 लिखना है, स्पेस देनी है, और अपना नाम और शहर का नाम लिख के आप भेजेंगे 4471 पर। टॉपिक में आपको बता दूँ, एक सेंटेंस है जो आपने मुकम्मल करना है, और वह सेंटेंस क्या है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि, जैसे कि वो निमरा ने उसको मुकम्मल किया है। आप लोग भी इस पे अपना जो है फुली फीडबैक दे सकते हैं। फेसबुक के कुछ पैगाम जो दोस्तों हम तक पहुँचे उनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, दैन फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान, ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है। इस पोस्ट को आपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ज्वाइन कर सकें। फ़िलहाल कमेंट्स जो हैं जो मिले हैं, सजल जहांगीर का डाइटिशियन है जी, बहुत शुक्रिया, फ्रॉम सियालकोट से आपने मैसेज किया है। शाहिद खान FM 101 इस्लामाबाद लिखते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमें FM 101 से दिल लगी हो जाएगी, क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया जी। फैजी हमारे साथ मौजूद है, गजनफर भाई 14 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ था, मेरे दोस्त साथ थे, बाइक चला रहा था, अचानक सामने आपने कहा जी एक लड़की आ गई और ठीक हो गया, आपने कहा जी उन्होंने काफ़ी देखे। मैं यही प्रोग्राम का जब आगाज़ किया था उसमें बात की थी कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो डिस्टर्ब करती हैं इंसान को। देखें खुशी का मौका होता है, अल्लाह ना करे इस तरह के कोई मामलात हो जाए, तो एक सेकंड में मामलात होते हैं, और आपके ग्रुप में कोई एक आधा भी शरारती है ना तो वो फिर सारे ही उसमें ना उसकी जद में आते हैं। ये वन व्हीलिंग यार, मतलब क्या ऐसा क्या चीज़ इंसान को तंग कर रही होती है, मतलब दो टायर पर चलने वाली चीज़ है, अगर घोड़ों को पता होता वो एक टायर ही बनाते हैं, आप एक टायर पर चलाएँ, इन्हें तो फिर कोई पता नहीं।

अदा करके चला लेना सी। तो देखें सेलिब्रेशन जो हैं वो कुछ लिमिट्स में रह के करना पड़ती हैं, ताकि खुदा ना ख्वास्ता ना आपकी वजह से किसी को परेशानी हो ना आपको परेशानी हो। एक लम्हे में चीज़ें जो हैं बदलती हैं, आपके घर वालों के लिए परेशानियाँ, आपके माँ बाप जो 18-20 साल आपको पाल पोस के इस पोजीशन तक पहुंचाते हैं, और इस तरह के एक तो चीज़ है ना जो अल्लाह ताला की तरफ से आती है वो एक अलग चीज़ है। ये तो आप खुद से जाके जो है वो करते हैं। और मुझे एक चीज़ में और भी बहुत शिकवा रहता है, ये जो कोई पैमा होते हैं, इस पर इंशाल्लाह किसी दिन हम गपशप करेंगे, हमारे कुछ सीनियर आरजे जब हमारे साथ होंगे। मतलब ये इतना टफ वो पैशन है कि पहाड़ों पे चढ़ना, बर्फबारी में, मतलब इतनी ज़्यादा जानें जो हैं वो ज़ाया होती हैं। अल्लाह ताला जी सबको अपने ज़ुमान में रखे। बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट होनी चाहिए। फैज़ी हमारे साथ, जी आपका मैसेज मैंने पढ़ दिया। सलीम दिलकश, उम्मीद करता हूँ कि बखैरियत से होंगे जी। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। आपको प्रोग्राम में शिरकत के लिए खुश आमदीद, इसके साथ साथ सबको सलाम, ढेर सारी दुआएँ दी हैं जी आपने। और इसके अलावा मुस्तफ़ा रांझा हमारे साथ मौजूद है। मैडम आजमीन आपका बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा वालेकुम सलाम। फेसबुक पे दोस्तों ये पोस्ट है, इसको आपने दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। कॉल्स हम बारह बजकर 45 मिनट के बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मुझे कहते हैं गज़नफ़र महमूद कियानी, आपको क्या कहते हैं ये जरूर

टॉपिक के हवाले से जी हमारे साथ सजल सियालकोट से मौजूद हैं, कहती हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एज ए प्रोफेशन में जाकर पॉलिटिक्स भी फेस करनी पड़ेगी और प्रोफेशन में अपने ही कुलीग से झूठ बोलना पड़ेंगे फेम लेने के लिए, और इसके साथ साथ आपने कहा और अपनी वाह पूरे हॉस्पिटल और अपने पूरे सेटअप में आपके नाम से हाईलाइट हो जी। एक तो ये जो पॉलिटिक्स वाली बात है ना, ये देखें आप दुनिया में किसी भी फील्ड में चले जाएं, ये आपको वहाँ पे लाजमी फेस करनी पड़ती है डॉक्टर साहबा। ये सिर्फ आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, आप किसी भी जगह पे काम करते हैं, कहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। और ना चाहते हुए भी, मतलब कुछ लोगों की आदत होती है कि आप सिर्फ अपने काम से काम रखें, आपकी जो ऑफिस का टाइम है आप उसमें आए, आपने अपने जो काम शाम किए, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो आपकी टास्क हैं या जो आपको KPIs मिली हैं, आप उस पर काम करें और अल्लाह ला खैर सल्ला छोटी टाइम आप घर चले जाएं। लेकिन होता इस तरह नहीं है, हमने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बना रखी हैं और जो सीधी नज़र आती हैं वो भी ऐसा नहीं होती। और ऑफिस पॉलिटिक्स से तो अल्लाह बचाए, जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं मुझ समेत, वो जानते हैं कि आपको क्या कुछ सहना पड़ता है। और बाद बंदा कहता है यार ये गल्ला इतने कौन तवज्जो देता है। मेरा लाभ की बात बिल्कुल ठीक है जी, ये काफी लोगों की दिलों की धड़कन होगी ये बात।

और मुझे नहीं लगता दोस्तों आजकल के इस टेन्योर में आप किसी भी जगह में काम कर रहे हैं तो आप ऑफिस पॉलिटिक्स से आप बचें। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके जो लाइन मैनेजर हैं या जिनको आप डायरेक्ट रिपोर्टिंग हैं उनके साथ आप सिंसियर हों, उनको हर चीज़ सच पता होनी चाहिए। और ये है कि अपने काम से लॉयल रहें। कंपनीज जो हैं वो आपकी लॉयल्टी, आप 6 साल काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, 12 साल से कर रहे हैं, ना भाई ना। यहाँ पे आपको पता है कि आर्टिफिशियल जो है वो इंटेलिजेंस का दौर आ गया, एआई का, बहुत ज़्यादा जॉब्स जो हैं ये तो नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो चुकी हैं, इससे बेतहाशा आसानी, घंटों लगते थे कुछ कामों को, अब आप विद इन मिनट्स, विद इन सेकंड्स कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जो है वो काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो है वो चीज़ों का कवर अप किया है। एक दौर में हम सोचते थे कि यार ये रेडियो की आवाज़, यानी ये जो एड्स वगैरह होते हैं ये कैसे कवर करेगा, वो भी अब जो है वो एआई के ज़रिए बनाए जाते हैं। आप जो कुछ वॉइसेस सुनते हैं, इसके अलावा बाकायदा एक फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है जो एआई मूवीज़ बनाते हैं शॉर्ट फिल्म्स के तौर पर, 10-10, 15-15 मिनट के क्लिप्स होते हैं। और काफ़ी कुछ दोस्तों बदल गया आने वाली ज़िंदगी में। पता नहीं मामलात मजीद कहाँ पे जाएंगे जब ये जो जनरेशन इस वक्त 7th, 8th, 9th में पढ़ रहे हैं, इनका आगे जो दौर आएगा वो बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा टफ होगा और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। चूँकि हमने जब मैट्रिक की थी उसमें हमें कहा जाता था बस आप डिप्लोमा कर लें और MBA कर लें आप लोग और इंजीनियरिंग कर लें, नौकरी बिल्कुल तुहाडे गेट से मौजूद होएगी। इस तरह होता नहीं है वैसे। अब्दुल रजाक साहब हमारे साथ मौजूद है पाक आर्मी से, ओकाड़ा कैंट से आपने मैसेज किया, वालेकुम सलाम रजाक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लकी फ्रॉम जंग से मौजूद है, सलाम अलैकुम ब्रदर, वालेकुम सलाम, आपके मैसेज का भी बहुत शुक्रिया। आदिल जट फैसलाबाद से मौजूद है जी। आदिल जट साहब का यूसुफ भाई बड़े जबरदस्त मैसेज है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है सुने, कहते हैं फैसलाबाद से आपने मैसेज किया है, कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी 4 बच्चों का पापा बन जाऊंगा। यूसुफ भाई आपने सोचा था कभी?

ये देखिए ना आप लोग किधर गुम होते हैं। आज मैंने 4471 से रिक्वेस्ट की, मैं तरले पाए ना तां तुसी मैसेज कर रहे हो, अदरवाइज तुसी पता नहीं अल्लाह लियो अपने। अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं दोस्तों, तो आप अपने होने का एहसास ज़रूर दिलाया करें कि यार हम हैं, हम सुन रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे आके जो एनर्जी जो आप यूटिलाइज कर रहे हैं, या इतने दूर से आप काफ़ी ज़्यादा काम छोड़ छाड़ के, हालांकि हर किसी का अपना पैशन है रेडियो, और रेडियो आके खासकर कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको ना बिल्कुल, ये स्टूडियो का गेट जब आप इंटर होकर अंदर आते हैं, आपकी दुनिया की जितनी भी टेंशन्स हैं, किसी के पैसे देने हैं, किसी से लेने हैं, ऑफिस वर्क में क्या वर्क लोड है, बाकी काम क्या करने हैं, वो आप ना गेट से बाहर रख के आते हैं। और ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये जब ट्रेनिंग दी गई थी तब ये बताया गया था कि चीज़ें जो हैं आपके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, पर्सनल जो मामलात हैं ज़िंदगी के, वो आपने स्टूडियो के जो डोर है इससे बाहर छोड़ के आने हैं, जहाँ पे ऑन एयर लिखा होता है उससे अंदर के जो ज़िंदगी है। आप सब के लिए प्रोग्राम करते हैं, आपको हज़ारों लोग सुन रहे होते हैं, और हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन है, हर किसी के ओपिनियन, चूँकि मैं स्पोर्ट्स का जब प्रोग्राम करता हूँ उसमें हम जब कोई भी डिस्कशन करते हैं तो उसमें हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है, हम सब के ओपिनियन का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। तो जब आप आवाज़ सुन लें और आपके पास ये मीडियम मौजूद हो कि जहाँ से आप वापस रिस्पॉन्स कर सकते हैं, तो अल्लाह आलियो मैसेज कर दिया करो। हमारे साथ जहूर साहब मौजूद हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि क्यानी साहब 6/18/2026 के प्रोग्राम में ठीक है ये टॉपिक पूछेंगे, कि मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या बात है जहूर साहब, आपने तो माशाल्लाह बिल्कुल जी शायरी कर दी है इस नाम पे। अशरफ लाहौर कैंट से मौजूद, बेसिकली जी रहीम यार खान से मौजूद रहने वाले हैं आप, लेकिन इस वक्त लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम सुनने वालों को आपने कहा वालेकुम सलाम हम सब की जानिब से, और आपने कभी सोचा नहीं था कि प्रोग्राम में मैसेज करेंगे, फर्स्ट मैसेज इन एनी प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। लाहौर से आप हमारे साथ मौजूद हैं, एक मेरे बहुत ही प्यारे से मीठे से दोस्त राय अशरफ साहब भी 101 की टीम का हिस्सा थे, आजकल कुछ मसरूफ़ हैं, तो आपका नाम भी राय, आपका नाम खाली अशरफ है, उनका राय अशरफ साहब। आतिफ असलम क्या कह रहे हैं जी, इनको सुनते हैं, इसके बाद हम लाइव कॉल की जानब जाएंगे। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद क्या नहीं, आपको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा।

हमजा राजपूत साहब हैदराबाद से आप मौजूद हैं मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम का पहला मैसेज आपने किया था, आप कहते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जॉब लग जाएगी। वाह हमजा भाई वाह, माशाल्लाह, मुबारक हो जी आपको नौकरी की। और ये जो खुशी होती है ना दोस्तों, आपकी पहली जॉब या बेहतर से बेहतर की जानिब जब जाते हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जमशेद अली हमारे साथ मौजूद है, पाक आर्मी से आपका ताल्लुक है जी, और मुश्किलात हमेशा अच्छे लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वो उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। जमशेद साहब बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो शख्स मेरे साथ दगा करेगा। और फ़ख्र अब्बास बलोच फ्राम झंग, आई लव यू सर, आपका प्रोग्राम पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, खुश रहो। बहुत शुक्रिया फ़ख्र भाई, नेक्स्ट टाइम भी आप ज़रूर सुनिएगा जब आपको वक्त मिला, रेडियो ट्यून करके और पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। आज के दौर में कामयाबी का मियार सिर्फ पैसा है, इंसान जितना मर्जी पढ़ ले। अली रज़ा कोटली आज़ाद कश्मीर से कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। ये पहली लाइन भी इन्हीं के मैसेज की थी। अली रज़ा वालेकुम सलाम भाई, आप इसकी इस पर क्या राय है, इसका इखलाक जितना भी अच्छा हो लेकिन वो अच्छा खासा पैसा नहीं कमाता तो वो एक नाकाम शख्स तसव्वुर किया जाता है। शुक्रिया, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और ऐसा क्यों है और क्या इसको बदला जा सकता है। आपने जी एक सवाल हम तक पहुंचाया, कहते हैं आज के दौर में कामयाबी का मियार सिर्फ पैसा है, इंसान जितना मर्जी पढ़ ले। और मेरे दोस्त इसमें ना डिफरेंट ओपिनियंस हैं, ये तो मैं हमेशा कहता हूं कि खाली जेब जब मर्द की होती है, कोई उसको कुछ कहे ना कहे, वो जो है वो अपने आप में, मतलब इंटरनली ही और साइकोलॉजिकल ही खुद अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होता, तो घर वालों ने कैसे सेटिस्फाई होना है मेरे प्यारे भाई। तो देखें ये नीड है एक ना, मतलब आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अल्लाह ताला ने मर्द की दी है कि अगर उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर वालों की, फैमिली की, बीवी बच्चों की, वालदैन की, तो वो उसने एक्सेप्ट करनी है और उसको उसने पूरा करना भी है। और ये भी एक फैक्ट है, और ये दुनिया इसी का नाम है कि अगर चार भाइयों में से एक भाई जो है बहुत अच्छा कमा रहा है, अल्लाह ताला ने उसका हाथ बहुत खुला रखा है, या उसको बहुत खुली आमदन आ रही है, तो पेरेंट्स की नज़र में और ख़ानदान वालों की नज़र में वो थोड़ा बेहतर ऑब्वियसली होगा, चूँकि वो बेहतर कमा रहा है, बेहतर खर्च करता है, और जो नहीं इस पोजीशन पे या उसकी अच्छी इनकम नहीं है, वो थोड़ा सा ना वो अपने आप को ही ना काफ़ी ज़्यादा डाउन महसूस करता है, सबके सामने नहीं जाता। तो ये एक फैक्ट है मेरे भाई, इसको मेरा नहीं ख्याल। हाँ मैं आपको बारहा ये प्रोग्राम में बात करता हूँ कि हम बचपन में जब किसी भाई की या बहन की जब लड़ाई के हवाले से सुनते थे ना कि भाई आपस में किसी बात पे तल्ख कलामी हुई है जायदाद के हवाले से या रिश्तों के लेन देन के हवाले से, तो हम हैरान होते थे यार कौन बहन भाई आपस में इस तरह करते होंगे। लेकिन एक सर्टन टाइम में आके ना आपको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि यार ज़िंदगी जैसे जैसे आगे गुजरती है काफ़ी कुछ आपको फेस करना पड़ता है। तो ये रियलिटी है मेरे भाई, अगर आप कम कमा रहे हैं तो आपके लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस चीज़ को बदलना इंडिविजुअली हम जो है वो अपने अपने ख़ानदान में, ख़ानदान भी नहीं अपने अपनी फैमिली में ये मामलात कर सकते हैं। आप अगर मैसिव चीज़ में देखें कि इसको राइज कर दिया जाए, ये मेरे भाई बहुत मुश्किल काम है। नाराज़गी में कुछ नहीं रखा, मोहब्बत से जीना सीखो, सुना है जब आँखें बंद हो जाएँ तो नफ़रत करने वाले भी दीदार करने आते हैं। जी कौन कह रहे हैं जी, अल्लाह अली, इतना सख्त शेर। जमशेद जी पाक आर्मी से हमारे साथ मौजूद, जमशेद भाई बहुत शुक्रिया जी आपके मैसेज का। तो ये दोस्तों इसके अलावा एक और चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और वो क्या शेयर करना है वो आपके साथ अभी आपको बताता हूँ कि

दोस्तों आपसे बात क्यों शेयर करनी थी कि सवाल नहीं करते, ये इसका जब मेरे साथ ये मामला हुआ तो मैंने कहा कि हम इसको इस तरह बयान करेंगे अपने प्रोग्राम में कि सवाल नहीं करते, वो किससे सवाल नहीं करते, वो अपनी ज़िंदगी में जी कोशिश ये करें आप लोग, अल्लाह ताला सब के वालिदैन को सेहत वाली ज़िंदगी दे, वालिदैन से सवाल करना। मैं कल का आपको नहीं, कल क्या था, फ्राइडे था जी, हाँ हाँ, तीन छुट्टियां जब हो गई कन्फ्यूज हो गए। फ्राइडे का ये वाक्य है, बहुत दफ़ा इस तरह मेरे साथ हुआ है, बल्कि आप में से भी कई दोस्तों के साथ इस तरह होता होगा कि जब टैंकी आपकी पानी की ख़त्म होती है तो मोटर चलाने का एक प्रोसेस है, वो किसी एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन कुछ घरों में मैंने देखा है कि ना किसी एक शख्स की ड्यूटी होती है, जो कि अब तो खैर टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं कि आप अपनी टैंकी में इंस्टॉल करते हैं, टैंकी जब भर जाती है पानी से तो ऑटोमेटिकली वो ऑफ़ हो जाती है, उसका कनेक्शन जो है वो ऑफ़ हो जाता है और पानी मजीद नहीं गिरता। तो मेरे साथ बारहा इस तरह हुआ कि मोटर ऑन करके भूल गया, कभी 20 मिनट एक्स्ट्रा लगी रही, कभी 30 मिनट एक्स्ट्रा लगी रही। आजकल वैसे भी पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और हमारे जो सामने पड़ोसी हैं वो हमेशा फ़ोन करके, कभी मुझे फ़ोन कर दिया, कभी जब मुझे करते हैं तब तो मैं ठीक है जी, ओके सॉरी माजर, जब वाले साहब को फ़ोन आता है फिर वो दो चार मुझे सुनाते भी हैं जो मैं आपको ऑनर नहीं बता सकता। तो बहरहाल इस तरह मैं एक दफ़ा तो सहरी के टाइम, मतलब मुझसे मैंने ऑन की मोटर और सुबह जब 10 बजे ऑफिस जाना था तब मेरी जब नज़र पड़ी उस पर, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था तो वैसे खुश चल रही थी, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अच्छी खासी 35-40 हज़ार रुपये की फकी है क्यानी साहब, थोड़ा सा ध्यान किता करो। फिर मैंने घर में सबको कहा कि यार किसी एक बंदे की ड्यूटी आप लगा दें, या जब मोटर ऑन करें यहाँ पे 4-5 मिनट बैठ जाए मैक्सिमम, कम से कम आसानी ही होगी, एक तो पानी का ज़्याया नहीं होगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा बिजली आपको पता है इतनी महंगी बिजली का वो मामला नहीं होगा, तो ये चीज़ें ना हम इस तरह सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन बात बताने का मकसद ये कि फ्राइडे को वाले साहब ने, मेरे अबू ने, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, उन्होंने मोटर ऑन की और वो ना भूल गए, वो जुमा पढ़ने चले गए, मैं भी चला गया, मैं वापस आया तो पानी गिर रहा था, मैंने उसको ऑफ़ किया, सबसे पहले मैंने माँ जी से पूछा जब मैं गया कि माँ जी मोटर किसने चलाई, उन्होंने कहा जी बेटा अबू आपके चला के गए थे, नहीं बंद किया, मैंने कहा नहीं चले, मैंने कर दी। तो मैंने कहा थोड़ा आप उनको कहा करें कि बता दिया करें, किसी की ड्यूटी लगा दिया करें, देखें पानी ज़ाया हो रहा है, बुरी बात है, बिजली ज़ाया होगी, ये वो ना, ये दो तीन जुमले मैंने कहे उनसे। वाले साहब तो नहीं थे उस टाइम, लेकिन मुझे ना थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद ना रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने क्या कैसे कहा है और क्यों कहा है। मतलब ये वो हस्तीज़ हैं जिन्होंने हमें बचपन से पाला पोसा, खिलाया, इतना कुछ मतलब जवान करके आज इस मुकाम में पहुँचाया और आज हम इनसे सवाल करें। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा, एक मेरी ये आदत भी है कि एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपनी जो फीलिंग्स हैं, खासकर पेरेंट्स से आपको ना एक वो गैप वाला मामला होता है तो आप उस तरह चीज़ें नहीं कर पाते। तो मुझे दिल में ना बहुत ज़्यादा, पूरी रात भी मैं बारहा इस पर सोचता रहा कि यार शायद माँ जी को बुरा लगा होगा, या अगर उन्होंने अबू से जिक्र कर दिया कि तुम मोटर लगा, चूँकि वो ज़ाहरी बात है उनका मतलब माशाल्लाह एज इतना ज़्यादा एक दूसरे से टाइम गुजारा और इस एज में आके ना तो जो तकल्लुफ़ वाला फ़र्क वो भी ख़त्म हो जाता। मैंने कहा कि माँ जी ने कह ना दिया होगा तो आप मोटर लगा के चले गए, तो फरी ने पूछा। तो फिर मैंने बाकायदा आज मॉर्निंग में सॉरी की, मैंने कहा माँ जी मेरा वो मकसद नहीं था, और अगर आपने वाले साहब से बात नहीं, अबू से बात नहीं की तो प्लीज़ ना करना, शायद उनको बुरा ना लगे कि उन बिल ए देंदा है और आज ये मुझसे सवाल कर रहा है कि भाई जान मोटर जब लगा के जाते हैं तो किसी को बता के जाए। हालांकि ये एक फैक्ट है, मतलब चीज़ बचनी चाहिए अगर आप किराएदार हैं, मैं ऑब्वियसली रेंट पे हूँ, पहले भी एक फक्की आई थी 40-50 हज़ार की, लेकिन फिर भी मेरे दिल में बात थी। तो मैंने अपने आप को रियलाइज़ किया कि वालिदैन से सवाल इस किस्म के, ख़ास कर जब आप चीज़ें संभाल रहे हैं, और अल्लाह कभी किसी के भी वालिदैन को हाथ फैलाने की औलाद के सामने वो ना करे, और ये चीज़ दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इसको कीजिएगा। और मेरी हमेशा से, जब से मैंने होश संभाला है, ये मेरी आदत रही है कि वाले साहब के आगे तो कभी नहीं बोला, वालदा के आगे, आपको पता है बच्चे बाजू का ऊंचा बोल जाते हैं, तो जब तक उनसे माजरत ना करूँ दिल में ना एक बहुत बेचैनी रहती है। तो मैंने उनसे बाकायदा फिर माजरत की कि ये मुझसे गलती हुई है, मुझे हालांकि मैंने सख्त टोन, अल्लाह माफ़ करे, नहीं की, लेकिन पूछ लिया था कि क्यों नहीं उन्होंने बताया। तो क्यों वाला मामला जो है दोस्तों वालिदैन से आपने कभी नहीं करना, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। अल्लाह ताला सब के वालिदैन को सेहत वाली ज़िंदगी दे। कॉल्स आज बहुत लेट हो गया ना, तो एक और मज़ेदार गाना आपको सुनवाते हैं, आँखों के हवाले से ये गाना है दोस्तों, बल्कि छोड़ें वो बाद में हम सुनाएंगे, ये सुने और याद करें कि ये कौन सी मूवी है
क्या याद आता है आपको ये गाना सुन के? थोड़ा सा गुनगुना दें, मुस्कुरा दें, अल्लाह लियो किड पॉजिटिव पे हो आपने साथ साथ गुनगुनाना है।

0: रब तेरा शुक्रिया इतना देने के लिए और क्या चाहिए। खुरंबी का भी शोर के आने का शो मैंने सोचा न था, इंतजार करना पड़ेगा।
1: क्या बात है, बहुत शुक्रिया इरफान साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ जी। नेक्स्ट कॉल देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है?
2: आप पहचाने, मैं कौन बात कर रही हूँ?
1: पहचाने, बादाम महंगे हो गए हैं रिमशा।
2: अच्छा जी।
1: क्या हाल है? ठीक है आपकी?
2: बादाम महंगे हो गए फिर भी पहचान लिया।
1: आपके कद्दू कैसे हैं?
2: नहीं, मेरे कद्दू बिल्कुल ठीक ठाक हैं, घर पे नहीं है मगर मेरे पास ही है फिलहाल।
1: अच्छा, उन्होंने पूछा नहीं कि तू मेरा ऑनर ना कद्दू क्यों कह देता मैंनू?
2: नहीं, वो कहने तो कोई गल नहीं, हो तो टाटा ही ना, जो मर्जी कहने रहो।
1: चैनल अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। रिमशा गा के गुनगुना के सुनाए कि मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि
2: अल्लाह तू आज गुनगुनाने वाला काम है
1: जी। थोड़ा सा मैं भी जरा एक लिरिक्स मतलब गले लोगों का टेस्ट कर लाना।
2: उस दिन मैं तुझे टेस्ट कर दे तो मेरी कॉल ही कट होगी।
1: अच्छा, आज चले सुना दे इससे पहले फिर कटना हो जाए।
2: एक मिनट, दोबारा टॉपिक दोहराएं, क्या है?
1: जिंदगी में कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये लाइन है अपने मुकम्मल करनी है, बस गुनगुना के,
2: बस गुनगुना के।
1: हाँ,
2: हाय। जिंदगी मतलब ये लाइन कभी गुनगुना के बोलना पड़ेगा।
1: ये लाइन भी आपने करनी है, ये लाइन बोलनी है साथ, आगे क्या आप जवाब क्या देंगे वो भी गुनगुनाना है।
2: जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था कि आके ये लाइन लगानी होगी, समझ आ गई।
1: हाँ,
2: शुक्र है, आपस में गाल हुई से।
1: वो टाइम शॉर्ट है हिमशा।
2: ओके ओके ओके। जिंदगी में मैंने सोचा नहीं था कि मुझको इतना अच्छा हम सफर मिल जाएगा।
1: चले जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहें, ख्याल रखना अपना, ठीक है।
2: और फिर जाते जाते सलाम दे दो बस तरह से लोगों को, फिर आवाज गायब हो जाएगी मेरी।
1: दें जी, दें सलाम दें
2: जी। इस प्याकम को खुसूसी सलाम मेरा और मारिया पिया नीला भी साजदा जुलेखा हमना और सिद्धार्थ अंकल बशीर अंकल सजा भाई सभी सुनने वालों को मेरा सलाम। आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। कियानी भाई, आप एक बार वो कहते जो आप कहते हैं
1: अल्लाह ले केड़े पास टूर पे। हां, अल्लाह ले केड़े पास टूर पे।
2: बहुत
1: शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह जी। आप रिमशा लाहौर से हमारे साथ मौजूद थी और आपके मैसेजेस डिस्ट्रिक्ट कश्मीर सिंध से हमारे साथ मौजूद हैं जी। शिक्याल सिकंदर अली जाखरानी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, सिंध से आपने मैसेज किया, बहुत शुक्रिया जी। आप तमाम दोस्तों के मैसेजेस का जो आज 4471 पे हमें मिल रहे हैं, हमेशा अच्छा लगता है आप लोगों के पैगाम को प्रोग्राम में शामिल करके। और फेसबुक पे मैं कुछ मज़ीद पैगाम देख लेता हूँ, हमारे साथ कौन मौजूद हैं, कहाँ से और वो क्या कहना चाहते हैं। facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर इस वक्त मेरी बैकग्राउंड में जो ट्रैक का इस वक्त आप हल्का सा सुन रहे होंगे, इसका म्यूज़िक जो है ना, ये ज़रा सा सुना है, क्या फील आती है?

0: स्वीट एस ने जी मैसेज किया है जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप जी अपने वालिद साहब के हवाले से बता रही हैं कि वो आपको तनाव छोड़ गए। ज़िंदगी की जी बड़ी तल्ख हकीकत है और मैं माजर चाहता हूँ, मेरे प्रोग्राम में हमेशा मैं वालिदैन का जिक्र करता हूँ, तो मेरे इस बात में से किसी भी आप में से दिल की दोस्त की दिल आजारी हो तो मैं आपसे माजर चाहता हूँ। चूँकि सबके लिए ज़िंदगी आसान नहीं है, सबको ज़िंदगी में सब रिश्ते उस तरह नहीं मिलते, और ऑब्वियसली जब भी कोई अपने किसी रिश्ते के हवाले से बात कर रहा होता है, जो नेक्स्ट पर्सन होता है सुनने वाला, वो उसको अपने ही रिश्तों में इमेजिन करता है कि यार अगर मैं वालिद के हवाले से बात करूँ, अपने वालिद को लेके वो उसको उसके राउंड अबाउट चीज़ें घुमाएगा वालदैन, तो ये मैं आपसे माजर चाहता हूँ जी। प्लीज़ अगर मेरी किसी भी बात से आपके दिल आजार है। रोजीना रोजी शेख, शो अच्छा है जी, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो दिल का अच्छे होते हैं उनको सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है। आप बिल्कुल परफेक्ट लाइन आपने कही है जी। उस्मान बिन इमदाद क्यानी साहब, बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपको सुनकर, और आपसे एक अपनाइयत का एहसास होता है हमेशा, और एक दूसरे को कब से जानते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, उस्मान बिन इमदाद फ्रॉम जद्दा। उस्मान बहुत शुक्रिया जी, आप बहुत ही पाक जगह पे हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे भी वहाँ अपने घर की ज़ियारत करवाए, आमीन। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ख़ासकर जब हमें समंदर पार से दोस्त सुनते हैं, मीलों दूर जो हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा दूर हमारे साथ मौजूद होते हैं, बहुत अच्छा लगता है जी। डाइटिशन सजल कहते हैं जी, आपने पहले लाफ्टर किया फिर कहते हैं दैट योर लाइन, लव इट। मुझे कहते हैं गज़नफर क्यानी, आपको क्या कहते हैं जी? मैं ये पूछता रहता हूँ कि मुझे कहते हैं गज़नफर महमूद क्यानी, आपको क्या कहते हैं ये ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर किश्वर आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कहती हैं मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी इतनी कम एज में इतनी हार्डशिप फेलियर बैक टू बैक दिखा देगी, और शो अच्छा है, सेफ आर जी, कीप वॉकिंग। डॉक्टर साहब आप देखें, जिस इंसान पर जो चीज़ गुजर रही होती है ना, वो उसके सिवा अल्लाह के सिवा ये तीसरा बंदा ना तो कोई महसूस कर सकता है, ना ही वो किसी भी किस्म की पेन आपसे ले सकता है। ये जिस पर गुजर रही होती है वही जानता है, लेकिन कुछ मीठे अल्फाज, कुछ मीठे रिश्ते जो हैं आपको इस जो भी सिचुएशन इंसान पे आती है उससे निकाल सकते हैं। ये जो बैक टू बैक फेलियर्स की आपने बात की, आप इसको एज ए आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से लें, अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर चीज़ें करेगी। तो मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ, दिन ओ नहीं रहना तो दिन ए भी नहीं रहेंगे। इसको आसान कर लें कि वेला ओ नहीं रहा तो सोने ओ वेला ए भी नहीं रहेगा, मतलब अच्छा दौर अगर नहीं रहा तो इंशाल्लाह बुरा भी नहीं रहेगा। तो इंशाल्लाह चीज़ें आसानी की तरफ जाएंगी, मेहनत करती रहें, बस अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। और सजल कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एविएशन मैनेजमेंट से डाइटिशियन बनूंगी। तो कितने तुसी मतलब बिल्कुल फील्ड आपने चेंज कर दी। माजमीन मैम, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी ज़िंदगी से हार मान लूँगी। अल्लाह ले ओ किड़े पास टुर प्यो, एक सेकेंड ना सिर्फ आप आंखें बंद करके देखें, सिर्फ जस्ट वन सेकेंड, अंधेरा है, आपकी ज़ात है, इसके अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं है। तो ये ज़िंदगी सिर्फ वन टाइम मिली है दोस्तों, इसको अब कोशिश किया करें जीने की। इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें फेस करना पड़ती हैं, पर कभी खुले आसमान के नीचे जाके, खासकर इस वक्त मच्छरों को ना खवा लें अपने आप नूं, लेकिन आप कभी ना आसमान की तरफ देख के, ना तारों की तरफ देख के, चांद की तरफ देख के, ये चीज़ें ना असल में, ये जो हम मेरे हाथ में भी इस वक्त है एंड्रॉयड फ़ोन, आप लोग भी फ़ोन यूज़ करें, इसने हमसे ना ज़िंदगी की बहुत हसीन हसीन चीज़ें जो है ना वो खींच ली हैं। मतलब हम बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम नहीं गुजार सकते, हम अपने हमसफ़र के साथ क्वालिटी टाइम नहीं गुजार सकते, मतलब टेलीफोन पे हमसफ़र साहब भी फ़ोन पे लगे होते हैं, असी भी फ़ोन पे, वालिदैन के पास बैठ के हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। तो कभी आप, मैं हमेशा इस तरह कहता हूँ कि आप आँख बंद करके, ये जो गिले शिकवे वाला मामला है, ये सबके साथ ऐसे मामलात हैं, जस्ट क्लोज योर आइज, जस्ट वन सेकेंड, अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं है। तो क्यों ना, जो एक देखें अभी जो माशाल्लाह मेरी 35 साल उम्र हो गई है, ये 27 साल को एक साल, 27 तारीख को एक और बच जाएगा साल, तो जो गुजर गया वो गुजर गया, मतलब ना पीछे से मैं कुछ उठा के वापस ला सकता हूँ, ना अपनी ज़िंदगी को वहाँ लेके जा सकता हूँ, या कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं कर सकता। तो इस तरह के प्लीज़ ये ना लिखा करें कि मैं ज़िंदगी से हार मान लूँगी, एक दफ़ा मिली है इसको, अच्छे से जिए, अल्लाह लियो। और शायद खान, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जो हमें facebook.com/FM101ChannelPakistan पे मैसेजेस कर रहे हैं, और इस पोस्ट को दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्त हमें ज्वाइन कर सकें। रिमशा के लिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइव प्रोग्राम में बादाम कद्दू सेल करने पड़ेंगे, ये सजल ने कहा है रिमशा के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई?
0: मैं बिल्कुल ठीक, कौन बात कर रहा है जी, कहाँ से? लाहौर से सायदा बात कर रही है। सायदा आपने सुना तो होगा कि हम लाइव कॉलर से
1: अच्छे
0: कर रहे हैं। दसो फिर। गुनगुनाना की ये पता ना तुम?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: दसो फिर।
1: मैंने सोचा न था जिंदगी में कभी वन वन की जाएंगी।
0: बस
1: जी।
0: बस इतना सा गुनगुनाना था।
1: मैं तुसी
0: नहीं बस ठीक है, ओके हो गया, ओके हो गया। ढेर सारे कॉलेज शायद अपना ख्याल रखना। अच्छा अल्लाह हाफिज़ जी, आपका बहुत शुक्रिया। 051111100101 पर दोस्तों आप लोग कॉल कर रहे हैं। आज सेंटेंस एक मैंने आप लोगों को दे रखा है कि ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि, इसको आपने मुकम्मल करना है। जो हमारे कॉलर हैं वो गुनगुना के सुना रहे हैं, और 44711 वाले आप मैसेज लिखते वक्त ना थोड़ा बहुत अपने आप को हिला जुला रहे हैं, मतलब पोजीशन अपनी चेंज कर लें ताकि। बहुत शुक्रिया, आज काफ़ी बड़ी तादाद में आप दोस्तों ने फीडबैक दिया, और मोटर वाली कहानी पे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ गए हैं कि सुनियो ये हर कार की कहानी है कि मोटर किन्ने लाइए, क्यों लाइए, कौन बंद करूँगा, ये बिल कौन दोगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
2: बचपन तो लैके 35 साल की उम्र तक दुखी दुख देखने मैं कभी सोचा भी नहीं सी के अगली जिंदगी इतनी अच्छी हो जाएगी।
0: अरे
2: करम होया, बड़ी प्यारी जिंदगी गुजर रही है बड़ा बेदे विच
0: अल्लाह
2: करम ने।
0: माशाल्लाह जी, और नजर ना लगे, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। नाम बता दें अपना प्यारा सा।
2: मेरा नाम नसीम है, रवाद से बात कर रही हूँ मैं।
0: नसीम रवाद से, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बड़ी प्यारी खबर सुनाई कि अब माशाल्लाह जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है।
2: माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी जा रही है बेटा मेरी।
0: चले अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा, ठीक है?
2: अल्लाह
0: बड़े बेटे
2: की भी खुशी
0: रखे। बहुत
2: शुक्रिया,
0: सेहत वाली जिंदगी दे, अपना बहुत ख्याल रखे, ठीक है? बहुत चंगा करने पटवारी बोलने थोड़ी जी मिकी भी आ रही कश्मीरी तुसें ज्यादा चावल तो नहीं खिलाने जी करा?
2: ऐसी गल नहीं है, तुसानी जुबान तुसानी जुबान इक जी है, तुसानी जुबान है थोड़ियां जिया लम्मियां करी गल्लां भाई छोड़ियो।
0: सही है गल भाई छोड़ियो, सही आखने सही आखने। चलो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखे, फिर इंशाल्लाह करके
2: बोलेंगे। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह ने वाला है,
0: अल्लाह ने वाला, अल्लाह ने वाला। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है लाइबा ने इस्लामाबाद से मैसेज किया है। आपने कहा है कि जो आप बात कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से, लाइबा बहुत लेट मैसेज किए हो, तो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में किया था कि नौजवान जो हैं बहुत रैश किस्म की सेलिब्रेशंस करते हैं, और जिससे उनको भी नुकसान होता है, साथ और जो फैमिलीज होती हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो लाइबा जी, तुम थोड़े देर लेट हो गए हो, नेक्स्ट कॉल देखते हैं कौन मौजूद है हमारे साथ और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, कैसे हैं कैनी भाई?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आपने गुनगुना के बताना है कि जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि
3: अच्छा कोशिश करते हैं।
0: जी जी करें करें करें।
3: मैंने जिंदगी में कभी सोचा न था वन वन से इतना प्यार मिलेगा। मैंने जिंदगी में कभी सोचा न था वन वन से इतना प्यार मिलेगा। मैंने जिंदगी में
0: क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अच्छा अलाफिज जी। दोस्तों एक बहुत जबरदस्त ट्रैक मैं प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ, ये आप लोग सुने। इसके लिरिक्स बहुत कमाल के हैं, आंखों के हवाले से ये ट्रैक है। सोबिया हमारे साथ मरी से मौजूद है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वक्त इतनी जल्दी गुजर जाएगा। सोबिया, जिंदगी जो है ये बहुत तेज गुजरती है। आज कल ना एक वक्त होता था हफ्ता गुजरने में ना मतलब अच्छा खासा टाइम गुजरता था, अब हफ्ते का पता नहीं चलता, महीनों का पता नहीं चलता, सालों का पता नहीं चलता कि ये साल कैसे गुजर रहे हैं। बस पता चलता है तो कुछ तलख रिश्तों का पता चलता है कि ये साढ़े नाल की कर रहे ने। बहरहाल मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब मुझसे ना मांग, ये एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक दोस्तों आपके लिए प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ। इसमें एक अंतरा आँखों के हवाले से भी है, ये आपने लाजमी सुनना है और इसमें आवाज़ जो है वो भी आप सुनेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। 1:45 से ऑनवर्ड प्लीज़ वही दोस्त कॉल करें जो हमें शायरी सुनाएंगे अच्छी सी। आप तमाम दोस्तों का मेरी बात मानने का बहुत शुक्रिया। ये सुनिएगा ज़रूर, ठीक है।

जैसा कि तू है तो दरअसल है हयात, तेरा हम है तो हमें बहस का झगड़ा क्या, तेरी सूरत है आलम में शबानो, तेरी आंखों के सिवा दुनिया।

0: दीर्घ हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था ये हो जाए।
1: तकदीर
0: निगो हो जाए, यूं न था

0: बहुत अच्छे होते हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद आके आपको ये रियलाइज़ होता है कि ये अच्छा हो गया, काश अगर उस वक्त वो ना होता तो आज मेरे साथ जो अभी अल्लाह ताला ने मामलात किए ये ना होते। देखें आजकल के इस दौर में ना, आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब मिलना और फील्ड से रिलेटेड एजुकेशन मुकम्मल करना बहुत टफ है, क्योंकि देखें जो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे हैं ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एजुकेशन एक तो बहुत ज़्यादा महंगी है, और उसके बाद उसको फॉलो करना, उसके तमाम चीज़ें पूरी करना और उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ना बहुत एफर्ट दरकार है। और मेरे ख्याल से हज़ारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक सर्टेन टाइम पे आके जब देखते हैं कि उनकी फैमिलीज उनकी इतना महंगी जो एजुकेशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अपनी चीज़ों को छोड़ते हैं। आपका केस का फ़र्क है, आप माशाल्लाह डॉक्टर बनी हैं, और डॉक्टर बनने में भी आजकल के दौर में अच्छा खासा पैसे जो चाहिए होते हैं। आपने अगर 4 साल की MBBS किया है, तो वो अगर कोई डॉक्टर, जो 2-3 डॉक्टर मुझे सुन रही हैं, आप ज़रूर बताइएगा कि 4 साल का जब MBBS किया जाता है तो पर ईयर आपकी कितनी जो फ़ीस है वो होती है, और इसके अलावा बाकी भी अखराजात काफ़ी ज़्यादा मामलात में होते हैं। तो 051-111-000-101 ये हमारा नंबर है। इसके अलावा भी आज एक नंबर मैंने अनाउंस किया है, वह मुझे ख़ुद पहले याद करना पड़ेगा, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे साथ इस वक्त कौन कॉलर मौजूद हैं, कहाँ से और क्या कहना चाहते हैं, ये रेगुलर कॉलर हैं, इनकी जो हमेशा कॉल मिलती है लेकिन कनेक्शन के साथ ही जो है ये गुम जाते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखें कि कुछ सेकंड्स आप लोगों ने वेट करना होता है। ऑब्वियसली लैंडलाइन के ज़रिए इसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर मुंसलिक होते हैं, तो जब अटैच होती है तो बात उस तरह हमारी नहीं हो सकती। नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी, हमारे साथ कौन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। चलें जी,
1: निकले हुए अमराज के तनूरों से बहते हुए गलते हुए।
0: अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम अस्सलाम जी, क्या जी, क्या हाल है, ठीक हो
0: जी? मैं ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। कौन
2: फारूक गल कर रहा है? पीडी रोड चक बलिहार बात इस्लामाबाद।
0: क्या बात है फारूक साहब, क्या बात है, सेहत ठीक है फारूक साहब आपकी? ना करो जी, आज मोटरसाइकिल ते आया जी, ये गला ना करो जी, ये गला ना करो, मोटरसाइकिल ते आया, ये गला ना करो।
2: नहीं कसम से, चलो अल्लाह ना करे, देखो ना वो चमक
0: पे। ए मुड़ी मैं घर किस तरह पहुंचा, आगे भी 2-4 दिन पहले बहुत से दिन आ रहे हैं, 40 मिनट खलता रहे बारिश।
2: चलो अल्लाह करीम वो मुश्किलात आसानियां पैदा करे।
0: चलो जी ठीक हो गया, ठीक है, और सब से ठीक है, सब खैर मेरी, शुक्र अल्लाह का। टॉपिक में क्या कहेंगे, कभी कुछ जिंदगी में कभी सोचा ना था कि टॉपिक आपने सुना है मेरा?
2: अभी जो है ना वो छोटी-छोटी कन्या कहने सुन बाहर निकलता है छोटे शागा की खेत
0: पर। अल्लाह अल्लाह दे, वो हरगल ऑनर नहीं दसीदा है सुने हो। चलो खैर, जिस काम वास्ते आए हो करो, अल्लाह हाफिज। ठीक है यार, अंदाजा करे यार। यार सोच लिया करें क्या ऑनर, आपने क्या कहना है, आप मुझे डांट पड़वाएंगे मैडम सदस्य। 051-111-000-101 देखते हैं नेक्स्ट कॉल कौन हमारे साथ मौजूद है। कोई हाल नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अनिला बात कर रही है लाहौर से। अनिला लास्ट टाइम आपके शायरी के सेगमेंट में कॉल नहीं किया, बड़ा लोग मिस कर रहे थे आपको।
3: चले
0: कोई बात नहीं, चले आज ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है? अच्छा आज हमारा ना एक लाइन सेंटेंस मैंने दी है, उसका तरीकेकार ये है अनिला, आपने गुनगुना के ना उसका जवाब देना है, ठीक है? जिंदगी में कभी नहीं हो, आप कर लेंगी। आपने ये लाइन ये है कि जिंदगी में कभी मैंने सोचा नहीं था कि
3: जी

0: है, इसमें सिलवटें पड़ी है। तो मैंने सोचा इनको प्रेस करके सीधा कर दूं। जैसे ही मैंने उनको प्रेस किया वो जल गई, क्योंकि वो प्लास्टिक की शीट थी।
1: क्या बात है जी, प्लास्टिक की शीट, क्या बात है। चले अनिला, बहुत शुक्रिया, बस दो मिनट रहते हैं, फिर दोबारा हमें कॉल करनी, ठीक है? बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू। जितने हमारे बहन भाई आते हैं, मलिक साहब हैं, त्रेड भाई हैं, साजदा और जितने लोग, सब सबके लिए मेरी बहुत सी दुआएं, शाहिद भाई हैं, सबके लिए बहुत सी दुआएं सब। थैंक यू,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: इरफान भी बड़ी चिकाई करता वैसे आके,
1: बिल्कुल ऐसे, ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच जी। 1:44 दोस्तों, अब से ऑनवर्ड जी, जो दोस्त कॉल करेंगे, जस्ट आपने अपना नाम बताना है और आप अपना बहुत अच्छा सा कलाम हमें सुनाएंगे। और शेर की एक लाइन में भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको आपने अपना कलाम सुनाने के बाद जो है वो मुकम्मल करना है।

दोस्तों कुछ लोग जिंदगी से चले तो जाते हैं मगर दिल से कभी नहीं जाते। उनकी आवाज, उनकी बातें, उनकी हंसी सब वक्त के साथ धुंधले तो बढ़ जाते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते। अजीब बात है, इंसान बिछड़ने वालों का इंतज़ार तो छोड़ देता है मगर उनकी यादों से निजात नहीं पा सकता। हर वो जगह जहाँ कभी उनका जिक्र हुआ हो वो आपको हमेशा याद रहती है। हर वो लम्हा जो उनके साथ गुजारा हो अचानक दिल को खामोश कर देता है। वक्त लोगों को दूर कर सकता है मगर कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हर गुजरते दिन के साथ और गहरी होती चली जाती हैं। दिल बार बार खुद को समझाता है कि अब सब खत्म हो चुका है मगर यादें हर बार आकर कह देती हैं कि कुछ रिश्ते ख़त्म नहीं होते, सिर्फ अधूरे रह जाते हैं। ज़िंदगी दोस्तों आगे तो बढ़ जाती है मगर दिल का एक हिस्सा हमेशा माजी की दहलीज पर बैठा रहता है। वो जहाँ कुछ लोग चले गए मगर उनकी यादों के सितम आज भी बाकी हैं।

0: तो दोस्तों मेरी जानिब से जो एक लाइन शेर का होगा जिसको आपने मुकम्मल करना है वो कुछ इस तरह से है कि मुमकिन है अब सुकून की जरा सी जगह बने। इसकी सेकंड लाइन आपने ऐड करनी है। एक दफ़ा फिर बता दूं, पहली लाइन ये है कि मुमकिन है अब सुकून की जरा सी जगह बने। चलें जी 0511100101 ए मेरे हाथ से जुड़े ने अल्लाह लियो, प्लीज़ सेगमेंट को फॉलो करना है। और जब थोड़ा सा इधर उधर बात निकलती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी, और मुझे चूँकि जवाब दें हो मैं, मुझे प्रोग्राम के बाद ना उधर 5-7 मिनट की रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, मैडम को बताना पड़ता है कि ये हुआ, ये कहा गया। चलें अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम, सिर्फ आपकी वजह से आया हूँ मैं शायद अंसारी बोल रहा हूँ।
0: अंसारी साहब क्या सुनाएंगे आप?
1: हाँ जी, वो कहते हैं कि वो और तो जाए मगर इंतजार है कम है, वो आ तो जाए मगर इंतजार है कम है, वो बेवफा तो नहीं मेरा प्यार है कम है।
0: क्या बात अंसारी साहब, जो मैंने लाइन बताई
1: वो तो बाद में है ना, बाद में।
0: अच्छा
1: वो तो लाइन बाद में है ना।
0: अच्छा चल रहा है,
1: मैं कैसे मान लू उस पर कोई असर ही ना हो, ये दिल तड़पता रहे और उसे खबर ही ना हो।
0: क्या
1: दिल खुदा की कसम बेकरार ही कम है, वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है। मैं कैसे मान लू उस पर कोई असर ही ना हो, ये दिल तड़पता रहे और उसे खबर ही ना हो, ये दिल खुदा की कसम बेकरार ही कम है, वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है।
0: इंतजार ही कम है,
1: आपके वजह से आया हूँ और मेरी बहन अनिला की वजह से आया हूँ, उसको उसको बहुत बहुत
0: बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का 0511100101। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह लियो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? लाहौर से इरम बात कर रही हूँ। इरम क्या सुनाएंगे आप?
2: जी सर,
0: शायरी सुनाएं।
2: सबसे पहले सुनने वालों को सलाम से सलामती की दुआ और अनिला की कुछ पेशी।
0: बहुत शुक्रिया सुनाएं जी।
2: आवाज आ रही?
0: जी जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप सुनाएं।
2: एक समंदर है जो मेरे काबू में नहीं, समंदर है जो मेरे काबू में नहीं था, एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता, और एक उम्र है जो बिताई है उनके बगैर, अब एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता।
0: क्या बात है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जो लाइन मैंने आपसे कही है वो उसको मुकम्मल करेंगे, मैं सुना दूं आपको?
2: जी सर, कौन सी?
0: पहली लाइन है मुमकिन है अब सुकून की जरा सी जगह बने, इसको मुकम्मल करें। चलो कोई बात नहीं, मैं इसीलिए ना, बहुत शुक्रिया इरम आप लाहौर से। दोस्तों मैं इसीलिए पहले बता देता हूँ, चूंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है शायरी, एकदम आप कुछ शायरी आप अटैच कर दें। लास्ट टाइम मैंने बोला था, मुझे रियलाइज हुआ कि क्यानी साहब आप गलत कह रहे हैं, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि जो लोग आते हैं, चूँकि आप बहुत शौक से ताल्लुक रखते हैं, मैं कल यासिर भाई का एक जो है वो प्रोग्राम सुन रहा था सोशल मीडिया पे। यासिर भाई हमारे 101 के सीनियर आरजेज में से हैं, पाइनियर में से हैं। हमीद गुल साहब उनको कुछ शायरी सुना रहे थे, अगर मेरी आवाज़ हमीद साहब सुन रहे हैं तो सर आप अगर हमारे शो में आएंगे तो हमें हमेशा अच्छा लगेगा। और प्लीज़ जो दोस्त इस वक्त मुझे मेरे फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं, थोड़ा जब रैम कर लो, अल्लाह ले मैं ऑन एयर हूँ, ख्याल रखें थोड़ा सा। मुमकिन है अब सुकून की ज़रा सी जगह बने, ये मेरी जानिब से लाइन है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अवैस कहाँ से कॉल किया भाई?
3: इस्लामाबाद।
0: अवैस में क्या सुनाएंगे?
3: जी, जिस लम्हों में बन गया था वो सिलसिला खत्म हो गया है, जिस लम्हों में बन गया था वो सिलसिला खत्म हो गया है, ये तुमने कैसा यकीन दिलाया मुगालता खत्म हो गया है।
0: क्या बात है जी,
3: जबान होठों पे जाके फीकी ही लौट आती है कुछ दिनों से, नमक नहीं है लबों में तेरे या जायका खत्म हो गया है, गुमान गाहों से मैं चला था यकीन की मंजिलों की जानिब, गुमान गाहों से मैं चला था यकीन की मंजिलों की जानिब, मगर तो हम के जंगलों में ही रास्ता खत्म हो गया है।
0: क्या बात,
3: वो गुफ्तगू के नरम चश्मे कहीं फजा में ही जम गए हैं, वो गुफ्तगू के नरम चश्मे कहीं फजा में ही जम गए हैं, वो सारे मैसेज वो शायरी का तबादला खत्म हो गया है। कल एक सदमा पड़ा था हम पे, कल एक सदमा पड़ा था हम पे जिसने दिल को हिला दिया था। चलो के सीने का जायजा लें कि जलजला खत्म हो गया है। रुमान गाहू से मैं चला था यकी के मंजिलों की चाले, मगर तो हम के जंगलों में ही रास्ता खत्म हो गया है। जो चंद लम्हों में बन गया था उस सिलसिला खत्म हो गया है।
0: खत्म हो गया है, क्या बात है जी। जो लाइन मेरी है सर, उस पे क्या कहेंगे?
3: एक दफा सर,
0: वो इस तरह है कि मुमकिन है कि अब सुकून की जरा सी जगह बने।
3: कोई शायरी है या आप अपनी तरफ से कह रहे
0: हैं? नहीं नहीं, ये मुकम्मल शेर है। मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह रहा कि इसके एंड पे आपने वही लगाना है, आप इसको जोड़ सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
3: एक दफा कहें फिर
0: सर। मुमकिन है अब सुकून की जरा सी जगह बने,
3: अगर तुम आ जाओ।
0: क्या
3: अगर
0: बात?
3: तुम आ जाओ,
0: ठीक है। अगर आपने इसके साथ ये लगाया, ठीक होगा। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त।
3: सर, जो आप 5 मिनट की रिपोर्ट वहाँ पर लिखेंगे, उसमें ये तो अभी 4-5 कॉलर पहले कॉलर आए थे जिन्होंने कहा, क्या वो भी लिखना पड़ेगा?
0: नहीं नहीं, वो नहीं लिखना, वो नहीं लिखना, ठीक है।
3: किस्म के कॉलर कभी कभी आते हैं।
0: अब देखिए, मैं खुद हैरान रह गया। मैं मतलब बस अल्लाह बचाए जी, अल्लाह करे पकड़ना है उस कॉल दी, ठीक है। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉल देखते हैं जी, कौन हमारे साथ मौजूद है। 051-111-0101। दोस्तों, मैं जो लाइन बता रहा हूँ ये भी शायरी है, आखिर में मैं बताऊँगा जिसको क्या मेरे पास क्या इसका डेटा था। मुमकिन है अब सुकून की ज़रा सी जगह बने। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: नज़ीर साहब, कैसे हैं आप?
4: जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान
0: है। शुक्र अल्लाह। क्या सुनाएंगे सर?
4: एक गजल है, हमारे एक आरजे हैं हैदर फारूक साहब, उनकी लिखी हुई एक किताब भी उनकी है, लेकिन ये गजल हामिद उस्ताद हामिद अली खाने में गाई। अगर आपको वैसे मिल जाएगी, अगर अभी तो टाइम नहीं होगा। वो कहते हैं कि उम्रें लग जाती हैं प्यारे अपना आप बताने, उम्रें लग जाती हैं प्यारे अपना आप बताने में, तूने थोड़ी जल्दी की है मुझको छोड़ के जाने।
0: क्या बात है, क्या बात है।
4: और हर एक से ये मेर मोहब्बत तुझको तन्हा कर देगी, हर एक से ये मेर मोहब्बत तुझको तन्हा कर देगी। देख, हर एक से हाथ मिलाने से लकीरें मिट जाती हैं, सबसे हाथ मिलाने
0: से
4: लकीरें मिट जाती हैं, सबसे हाथ मिलाने।
0: क्या बात,
4: दो शेर थे।
0: क्या बात
4: इस गजल के।
0: क्या बात सर, मेरा शेर मुकम्मल करें ना फिर।
4: ओ मुश्किल है,
0: मुश्किल है। चलें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, ठीक है। नजीर साहब,
4: शुक्रिया। और मेरी तरफ से नीला बहन को और इरफान साहब को, माशाल्लाह इरफान साहब तो कमाल करते हैं
0: सर। इरफान, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक बड़ा स्पेशल मैसेज है दोस्तों, हमारी आरजे हैं 4 to 6 PM, 4 to 6 वो प्रोग्राम करती हैं माशाल्लाह, 5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। और आमना मलिक उनका नाम है। बहुत शुक्रिया, मैं हमेशा इनको गुड़िया कहता हूँ, क्योंकि जब भी ये रेडियो में आई थी बहुत छोटी सी थी, अभी भी छोटी सी है वैसे माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं और बहुत प्राउड हैं ये 101 का। मैडम सदफ बहुत हाई रेट करती हैं इनको कि आमना हमारी बहुत अच्छी आरजे हैं और बहुत सुपर अमेजिंग इनका प्रोग्राम होता है। उन्होंने आज रेडियो ट्यून किया वतन इत्तेफाक से, और शेर उन्होंने लिख भेजा। मैं बड़ा हैरान हूँ कि आपने शेर मुकम्मल किया। आप कहती हैं कि मुमकिन है अब सुकून की ज़रा सी जगह बने, जो दिल में रह गया है वो आखिर दुआ बने। क्या बात आमना, बहुत शुक्रिया आपने 101 ट्यून किया। कल आई थिंक आपका भी 4 to 6 प्रोग्राम होगा। ये बहुत अच्छी आरजे दोस्तों, आप लोग ज़रूर सुनिएगा 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। इनका प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है, और ये भी माशाल्लाह स्पीच थेरेपिस्ट डॉक्टर हैं ये, माशाल्लाह। शायद गलत कह दिया हमने मैंने। नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम, रजेंद्र भाई मोइन जट बात कर रहा हूँ, कोटली आजाद कश्मीर से।
0: जट साहब, क्या सुनाएंगे आप?
5: मानी भाई की गजल है, बड़ी प्यारी सी सैड की।
0: सुनाएं जी, सुनाएं।
5: यादें माजी मुझे सोने नहीं देती, यादें माजी मुझे सोने नहीं देती, बंद आंखों में भी ख्वाब पे रोने नहीं देती। तेरी ही याद में, तेरी ही याद में बसर हो मेरी रातें, तेरी ही याद में बसर हो मेरी रातें, दरो दीवार भी करें बस तेरी बातें, बदले में मिले भी तो मुझे फकत आंसू, तेरी हंसी की खनक मुझे रोने नहीं देती, तेरी हंसी की खनक मुझे रोने नहीं देती, मोहब्बत में कुछ नहीं था वफाओं के सिवा, जफाएं तो यूं ही मिली मुझे बेवजह, पैमाना मेरे बस में नहीं सब्र कमानी, पैमाना मेरे बस में नहीं सब्र कमानी, बिछड़ी है इस तरह किसी का होने नहीं देती, बिछड़ी है इस तरह किसी का होने नहीं देती, यादें माजी मुझे सोने नहीं देती, बद आंखों में भी, बद आंखों में भी ख्वाब पे रोने नहीं देती।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। दोस्तों 1:59 हो चुके हैं, वैसे अमूमन हमारा 2 बजे तक साथ रहता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है, चूंकि 12 बजे से लेकर 12:45 तक हम कुछ हल्ला गुल्ला करते हैं, कुछ डिफरेंट टॉपिक होता है, कुछ कॉल्स हम शामिल करते हैं, लेकिन ये 15 से 20 मिनट ना हम शायरी सुनते हैं। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, तो बहुत अच्छी कलाम सुनाते हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन बात कर रहा है? फैजा बात कर रही है। क्या सुनाएंगे मैडम आप? कोई बात नहीं जी, जो आपको आसान है, कोई टेंशन नहीं।
6: मोहब्बत करना एक जुर्म है,
0: ठीक है,
6: मोहब्बत करना एक जुर्म है, जिसकी सजा दिल को मिलती है, नींद सुकून सब खो जाता है, जब मोहब्बत की जुदाई में ऐसी अजियत मिलती है, मोहब्बत करना एक जुर्म है,
0: मोहब्बत करना एक जुर्म है जो नहीं करनी चाहिए। चले अपना ख्याल रखें जी, बहुत शुक्रिया जी। जिंदगी में ना हर किसी के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन जिंदगी इसी का नाम है जी। जो मैं इस चीज़ को ना एक लाइन में सम अप करता हूँ कि छोड़े रहने दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात करें?
7: जी बेटा, मैं आपको एक शेर सुनाऊंगी छोटा सा।
0: जी जी जरूर सुना।
7: चल कर दिल खाक हुआ, आंख से रोया ना गया, जख्म कुछ ऐसे लगे के फूलों पे सोया ना गया।
0: क्या बात है, जख्म कुछ ऐसे लगे के फूलों पे सोया ना गया,
7: फूलों पे सोया ना गया।
0: क्या बात, चले ख्याल रखिए अपना डी सर। अच्छा
7: ठीक है बेटा, बहुत
0: अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
8: अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब, क्या हाल है, ठीक हो?
0: अल्लाह पाक का बहुत करम है प्यारे भाई, अपना प्यारा सा नाम बता दो।
8: मेरा नाम सैयद खावर रिज़वी।
0: खावर रिज़वी साहब, क्या सुनाएंगे आप हमें?
8: एक शेर आपको सुनाऊंगा
0: सर, सुनाएं, बिस्मिल्लाह करें।
8: ये आदत सी पड़ गई है, सुबह शाम लिखता हूँ तुम्हें मौसम, तुम्हें दिलबर, तुम्हें गुलफाम लिखता हूँ मैं, हाथों पर, दीवारों पर, दरख्तों पर, किताबों पर, जहाँ लिखूं जिधर लिखूं तुम्हारा नाम लिखता हूँ।
0: अरे क्या बात, क्या बात है सर। सर मेरी लाइन मुकम्मल करेंगे आप?
8: बोले
0: आपने वैसे सुनी नहीं थी तो अब मुश्किल नहीं हो जाएगा। मेरी लाइन ये है कि मुमकिन है अब सुकून की जरा सी जगह बने। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम से सर। बहुत शुक्रिया,
8: ठीक है,
0: जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा ऑब्वियसली एकदम मेरे से कोई पूछ ले, मैं तो बिल्कुल ही शायरी के मामले में थथा हो जाता हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही ना आए। तो आप लोग बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ हमारे हमीद गुल साहब, आई थिंक एक ही प्रोग्राम में वो आए थे, कुछ छोटी सी उन्होंने नज़्म सुनाई थी। हमारे साथ आज इत्तेफाक से एक तो आमना मलिक, वो तो हैं ही हमारी आरजे, एक रेडियो पाकिस्तान की एक नई आरजे हैं, आज आमना खान उनका नाम है, उन्होंने भी रिसेंटली रेडियो ज्वाइन किया है। उन्होंने वो लाइन मुकम्मल करके भेजी है नज़्म के, मुमकिन है अब सुकून की ज़रा सी जगह बने, दिल फिर से मुस्कुराए कोई रास्ता बने। मुमकिन है अब सुकून की ज़रा सी जगह बने, जो टूट कर बिखर गया वो फिर से जुड़ा बने। मुमकिन है अब सुकून की ज़रा सी जगह बने, आँखों में फिर किसी ख्वाब की रोशनी बने। और जो सबसे बेहतरीन लाइन है वो ये है कि मुमकिन है अब सुकून की ज़रा सी जगह बने, जो रब को मंजूर हो وہی فیصلہ بنے. یہ میرے خیال سے بیسٹ لائن تھی کہ جو رب کو منظور ہو وہی فیصلہ بنے. تھینک یو سو مچ آمنہ خان, آرجے آپ ہمارے ساتھ موجود رہی, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ آپ کے فیڈ بیک کا. نیکسٹ کال, السلام علیکم.
9: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی, شکر مل گیا آپ کی کال. انیلا کیا سنائیں گی؟ پہلے آپ میری لائن مکمل کر دیں پھر اپنا کچھ سنائیں گے.
9: نہیں, کہنا چاہ رہی تھی, آپ بولیے ذرا لائن پھر سے.
0: لائن یہ ہے کہ ممکن ہے اب سکون کی ذرا سی جگہ بنے.
9: کیا خبر یوں ہو کہ جو رب چاہے وہی میرے لبوں کی دعا بنے.
0: کیا بات ہے, یہ اب سے کچھ دیر پہلے نا وہ آمنہ خان ہے, انہوں نے یہی لائن لکھی تھی کہ پہلی لائن تو یہ تھی نا, ممکن ہے اب سکون کی ذرا سی جگہ بنے. انہوں نے لکھا کہ نیکسٹ لائن کہ جو رب کو منظور ہو وہی فیصلہ بنے. تو آپ نے بھی سیم آلموسٹ یہی کہی. انیلا کیا سنائیں گے آپ؟
9: جو رب کو منظور ہو وہی میرے لبوں پہ دعا بنے.
0: ہاں بالکل ایسا سیم. کیا سنائیں گے آپ؟
9: شاعری پڑھوں گی اور ارم کے لیے بہت سی دعائیں, ارم کو بہت ساری دعا سلام پیار. نوشی گیلانی کی یہ غزل ہے.
0: ٹھیک ہو گیا جی جی.
9: تیز ہوا کے جھونکے شب بھر ٹکراتے ہیں پیڑوں سے, تیز ہوا کے جھونکے شب بھر ٹکراتے ہیں پیڑوں سے, کتنے پتے آنسو بن کر گر جاتے ہیں ان شاخوں سے, کرنیں بستر تک آتی ہیں ٹوٹے خواب اٹھانے کو, کرنیں بستر تک آتی ہیں ٹوٹے خواب اٹھانے کو, اندر کے دکھ کب چھپتے ہیں ان کھڑکی کے پردوں سے, الماری کے ایک خانے میں یاد کسی کی رکھی ہے اور اس کی چابی لٹکا دی ہے آتی جاتی سانسوں سے, جانے والے جیسے جاتے ہیں ویسے کب آتے ہیں, جانے والے جیسے جاتے ہیں ویسے کب آتے ہیں, آنکھیں ویراں ہو جاتی ہیں باتیں کرتی رستوں سے, تیز ہوا سے ٹکرانے میں ایک ہنر تھا کشتی کا, لوگ تماشا دیکھ رہے تھے بیٹھے دور کناروں سے, اس سے ملوں گی تو اس کو دیکھوں گی, پھولوں جیسی خوشبو آتی ہے جانا جس کی باتوں سے, تیز ہوا کے جھونکے شب بھر ٹکراتے ہیں پیڑوں سے, کتنے پتے آنسو بن کر گر جاتے ہیں ان شاخوں سے. جی
0: کیا بات ہے, بہت زبردست آپ نے سنائی. اس میں جو لائن تھی نا وہ الماری والی, ایک الماری والی اور وہ جانے والی, ہاں وہ تو مطلب
9: ایسے دل کے اندر سے درد ابھرتا ہے نا کہ جانے والے جیسے جاتے ہیں ویسے کب
0: واپس آتے ہیں, کیا بات,
9: آنکھیں ویراں ہو جاتی ہیں باتیں کرتی رستوں سے,
0: کیا بات ہے, کیا بات
9: ہے. نیلا بہت, میری امی ابو تو اس دنیا میں نہیں ہے تو میں جب بھی کبھی یہ شاعری میرے ذہن میں یا ان کی یاد جب آئے تو یہ لائنیں میرے ذہن میں آ جاتی ہیں, تو
0: سیریسلی بہت دل کو یہ فیل ہوئی یہ لائن, اس لیے میں نے,
9: کیونکہ ان کی کمی تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سب کے پیرنٹس کو سلامت رکھے اور جن کے نہیں اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے.
0: آمین آمین.
9: تھینک یو,
0: بہت شکریہ, بہت شکریہ, اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ.

0: बड़ा मुश्किल टाइम होते हैं दोस्तों जब आप माइक्रोफोन के इस साइड पे बैठ के ना किसी के इमोशंस जब इस तरह देखते हैं ना, तो ये कैफियत बड़ी मुश्किल होती है एज ए आरजीबी हैंडल करना। अनिल, अल्लाह ताला आपके वालिदैन को उनकी मंजिलें आसान फरमाए, उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। जिसके भी वालिदैन, चूँकि मैंने आज काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया, वो एक कहानी भी सुनाई थी, वो भी लेके मैं अनिल आपसे भी माज़े चाहता हूँ। बाकी भी जो दोस्त अगर मेरी किसी भी बात से, या मैं चूँकि बारहा जिक्र करता हूँ प्रोग्राम का, प्रोग्राम में वालिदैन के हवाले से, मैडम आजमीन, उनकी वालदा की साल डेथ हुई, उन्होंने भी बारहा जो वालिदैन माँ के हवाले से चीज़ जो है वो लिखी, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैं माज़े चाहता हूँ क्योंकि मेरी वजह से ना आपकी दिल आज़ारी होती है। तो समरा राइटर भी हैं जी, ख़ुद माशाल्लाह लिखती भी हैं, उन्होंने भी हमारी लाइन मुकम्मल करके भेजी है। मैं कोशिश करता हूँ अपने टूटे फूटे अंदाज से इसको शामिल करूँ। आपने लिखा है कि मुमकिन है अब सुकून की ज़रा सी जगह बने, मिट जाए फासला तो कोई रास्ता बने। सेकंड लाइन आपने कहा कि मुमकिन है अब सुकून की ज़रा सी जगह बने, तूफान थमे तो कोई नया रास्ता बने। और फिर एक और लाइन है कि मुमकिन है अब सुकून की ज़रा सी जगह बने, इस भीड़ से निकल के कोई हादसा बने। थैंक यू सो मच। और मिट जाए फासला तो कोई रास्ता बने, ये आपकी बेस्ट लाइन थी। और एक तो जो अनीला ने वो अलमारी वाली वो लाइन थी, एक वो जाने वाली, आई लव इट, ये मैं कहीं से ढूंढ के लाजमी पढ़ूंगा। और उससे पहले आमना ने जो लाइन लिख के भेजी थी कि मुमकिन है अब सुकून की ज़रा सी जगह बने, जो रब को मंजूर हो वही फैसला बने। मतलब ये जो लास्ट लाइन है ना, जो रब को मंजूर हो, हम यही कहते हैं ना कि रब की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। वक्त लगता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, और कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं ना, एक सर्टन टाइम में जाके आप ना बस आपका दिल और दिमाग जो है वो एक्सेप्टेंस की जानिब चला जाता है कि बस ठीक है जो है वो है, ना इसको बेहतर किया जा सकता है। चूँकि ज़िंदगी के हज़ारों ऐसे मामलात हैं जो आप सिंगल हैंडेडली, मतलब एक पर्सन, चाहे वो मेल है या फीमेल है, आप ना उनको हैंडल कर सकते हैं, ना उन मामलात को अकेले लेके चल सकते हैं। ये जैसे कहते हैं ना कि हम सफ़र जो होता है वो गाड़ी का पहिया होता है, मतलब आप दोनों मिलके ज़िंदगी के तमाम मामलात चला रहे होते हैं, आप किसी भी रिलेशन में। वल्ला लियो किड़े पास टूर भी। और नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
0: सर प्यारा सा नाम अमित साहब, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत देर से आपको तलाश कर रहा था।
1: नहीं, मैं अब तलाश आप भी कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं, देखे ना।
0: बहुत शुक्रिया अमित साहब। मैंने कल परसों ना, मेरी नज़र से यासिर भाई को एक वीडियो गुजरी थी जिसमें उनका कोई सेगमेंट था इंतखाब के नाम से, तो उसमें उन्होंने आपकी ना शायरी पढ़ी थी, तो मैं ख्वाहिश कर रहा था कि चूंकि पिछले प्रोग्राम में भी आपसे बात नहीं हो सकी थी, तो आप आज हमें, आपने एक ही दिन इस सेगमेंट में कॉल किया, बहुत छोटा सा, क्योंकि उस दिन टाइम ही नहीं था हमारे पास।
1: मैं सुनाता हूँ आपको, जो यासिर साहब ने लगाइए
0: जी जी,
1: उनके इंतखाब का सिलसिला चल रहा है। असल में नासिर साहब हुए, यासिर साहब, हमने बड़ी नशस्त की शायरी
0: सर, ये
1: एक अच्छा एक टाइम था,
0: बड़े लोग हैं सर,
1: बड़े, हाँ हमें सीखने को बड़ा कुछ मिला, और हमने अपने जो हमने लिखा उस पे हमने बड़ी बात वसूल की उसे। बहरहाल ये सिलसिला इसी तरह वो मैं आपको सुनाता हूँ कि ये दिल उनको इनायत कर चुका हूँ। ऐसा ही था ना कुछ कहने का?
0: जी जी सर, ऐसे ही था, ऐसे था, ये दिल उनको इनायत कर चुका हूँ।
1: ये देखे, मैंने रियायत तलब बड़े खूबसूरत इस्तेमाल किया था कि ये दिल उनको इनायत कर चुका हूँ, जो कृपनी थी रियायत कर चुका हूँ। और आपको नजर शेयर कर रहा हूँ, कोई ये रद जगहों से जाके कह दे, कोई ये रद जगहों से जाके कह दे, मैं ख्वाबों की हिमायत कर चुका हूँ। मैं ख्वाबों की हिमायत
0: कर चुका हूँ। हमीद साहब ठीक हो गया, बड़ा अच्छा लगता है। एक वो मेरी लाइन है उसको भी मुकम्मल करते हैं। सुनिए आपने, या आप कॉल ट्राई कर रहे थे?
1: मैं कॉल ट्राई कर रहा था, आपने कुछ अपनी लाइन लिखी?
0: नहीं नहीं सर, मैं किधर, मैं अदना साहब, बिल्कुल मैंने एक लाइन ना, मतलब ایک شاعر کی ہے وہ آپ کو مطلب بتا رہا ہوں آن ایئر, تو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس سے نا منسلک کریں, آپ کیا لکھتے ہیں. پہلی لائن اس طرح ہے کہ ممکن ہے اب سکون کی ذرا سی جگہ بنے, تو اس کا سیکنڈ سینٹینس کوئی ایڈ کر دیں آپ اگر.
1: اس کو شاعری میں کہتے ہیں تری مصرا.
0: کیا کہتے ہیں سر؟
1: تری مصرا.
0: تری مصرا مطلب ایک مصرا.
1: ہاں یا ترا مصرا.
0: ترا مصرا.
1: اچھا آپ ترا مصرے کے لیے نا آپ نے ایک دم بات کہہ دی, تو اس کے لیے ایک دم بات نہیں کی جا سکتی.
0: ہاں وہی میں مجھے ریئلائز ہوا تھا لاسٹ ٹائم بھی, اسی لیے نا جب جیسے یہ سیگمنٹ شروع ہوا نا میں نے پہلے ہی بتا دی تھی کہ جو لوگ اگر کال کرتے ہیں وہ اس کے بارے میں نا کچھ بھی لکھ لیں.
1: آپ ایک کام کریں, جب آپ نیکسٹ شو کریں اس کو آپ لائن بنا لیں,
0: ٹھیک ہے,
1: مشرام لگائیں گے وزن میں لگائیں گے.
0: چلے ڈن,
1: یہ بھی ایسا کر لیں تھوڑی آسانی ہو جائے.
0: ہاں ہاں میں نے
1: اچھی ہے.
0: بالکل, بہت شکریہ سر, جزاک اللہ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سینئر کالر ہیں, اور یاسر بھائی جن کا میں نام لے رہا ہوں وہ بھی سینئر آر جے رہے ہیں, اب وہ مصروف زیادہ ہیں. ناصر محمود خان, سجاد بھائی, علی حسنین بھائی, یہ مطلب ہمارا ڈریم ہوا کرتا تھا ان سب سے, آواز ہی سنی تھی کہ ان سب سے ملاقات ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ان کو یہاں پہ شیشے کے اس پار بیٹھ کے دیکھنا, ان سے ملنا. ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد بھی ہم بیٹھے رہتے تھے کہ یار یہ کیسے بولتے ہیں, ہم باہر بیٹھ کے سن لیں. اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. بہرحال جو میرے پاس یہ لائن موجود تھی اس کو کچھ مکمل اس طرح انہوں نے کیا تھا کہ ممکن ہے اب سکون کی ذرا سی جگہ بنے, کچھ حسرتوں کا دل سے صفایا

बहुत शुक्रिया जी आप तमाम दोस्तों का. आज प्रोग्राम में हमने एक टॉपिक रखा था, एक लाइन आप लोगों को मैंने बताई थी कि सोचा नहीं था ज़िंदगी में कभी के, और काफ़ी उसमें ज़बरदस्त फीडबैक मिला. 4471 पे भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने प्यार मोहब्बत भेजा. इसके अलावा फेसबुक पे लाइव कॉल्स पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. जिन दोस्तों की कॉल्स क्या मैं नहीं कर सका उनके लिए माजरत, जिनके मैसेजेस नहीं पढ़ सका उनसे भी बहुत माजरत जी. और बहुत शुक्रिया जी आप तमाम दोस्तों का. जाने से पहले हमेशा की तरह एक बात की ज़िंदगी में कोशिश ये किया करें कि आपकी वजह से किसी दूसरे शख्स का दिल ना दुखे. अपने असातज़ा इकराम का हमेशा एहतराम करें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, और एक दुआ अल्लाह ताला की ज़ात से ज़रूर किया करें. रब ताला की ज़ात हम सब को इस दुनिया में अपनी ज़ात के सिवा किसी दूसरे का मोहताज ना करें. आमीन. दोस्तों एक दुआ खुसूसी मैं उसकी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए ख़ास दुआ क्या करें कि अल्लाह की ज़ात अपने घर की ज़ियारत करवाए. आमीन. ज़िंदगी शर्त है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी थर्सडे को प्रोग्राम हाउस एट में. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. और जाने से पहले उस्ताद आसिफ मेहदी की आवाज़ में ये मेरे गज़ल जो है मेरे दिल के बहुत करीब है. और आप भी अपनी ज़िंदगी में जिसको चाहते हैं उस पे इम्प्लीमेंट करके देखें कि वो कितना हसीन लगता है आपकी आँखों से. अल्लाह हाफ़िज़.

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: ये जिंदगी भी अजीब है ना साहब, कि एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है।

0: मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती थीं और तुम उल्टे पांव फिर फिर जाते थे।
1: मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजुरून,
0: उनसे सरकशी करते, कहानियों में मशगूल होते और बेहुदा बकवास करते थे।